0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला।

आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की द्वितीय तिथि, तदनुसार 16 जून 2026। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

FM 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में

0: सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग चार महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरु मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य दो पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष के सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं आज का चिंतन। आज के चिंतन का विषय है ईश्वर का सच्चा सेवक।

रात दो घड़ी से ज्यादा बीत चुकी थी। चारों ओर अखंड शांति थी। सिर्फ पहरेदारों और घड़ी घंटालों की आवाज बीच बीच में सुनाई पड़ती थी। पहरेदार जागते रहो की अलख जगा रहे थे तो घड़ी घंटाल समय की सूचना दे रहे थे। अबू बेन अदम गहरी नींद में बेसुध पड़ा था कि वह एक स्वप्न देखने लगा, मानो पूर्ण जागृत हो गया हो चैतन्य। वह देख रहा था एक दिव्य पुरुष को। अखंड तेज टपक रहा था उसके पूरे व्यक्तित्व से। एक प्रभा मंडल भी फैला था उसके चारों ओर। स्वर्ण का वस्त्र, स्वर्णाभूषण और हाथ में सोने की दवात और कलम। वह किसी स्वर्ण पत्र पर कुछ लिख रहा था। अबू बेन अदम की हालत देखने योग्य थी। पहले तो वह उसे अपलक देखता रहा, मूर्तिमत जड़ हो गया, पर उसकी अंतर चेतना कार्य कर रही थी। एक उत्सुकता जन्म ले रही थी, आखिर वह कौन है, यहां क्यों आया है और क्या लिख रहा है। उससे रहा नहीं गया, वह साहस जुटाकर बोल ही पड़ा, क्योंकि इस स्वर्ण अवसर को वह गंवाना नहीं चाहता था। वह उनकी आंखों में आंखें डालता हुआ बोला, कौन है आप, यहां क्यों आए हैं और क्या लिख रहे हैं। दिव्य

दोस्तों, ये आपने सुना लखबीर सिंह लखा की आवाज में गाया ये भक्ति गीत। अब भाई सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत।

दोस्तों भी आपने सुना लखबीर सिंह लक्का की आवाज में गाया ये भक्ति गीत। अब आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अंतिम भक्ति गीत लखबीर सिंह लक्का की आवाज में।

दोस्तों, लखबीर सिंह लखा की आवाज में गाए इसी भक्ति गीत के साथ कार्यक्रम वंदना से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम वंदना FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 6:40 होने को हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित्र मानस कांड की आज की कड़ी।
1: एपिसोड नंबर 2।

रामचरित मानस के प्रारंभिक मंगलाचरण के पश्चात तुलसीदास ने सर्वप्रथम गणपति की वंदना की है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के पश्चात गुरु की वंदना की गई है, जो नर रूप में हरि के प्रतिरूप हैं।

दोस्तों भी आप सुन रहे थे श्री रामचरित्र मानस गान की आज की कड़ी FM 102.1 MHz पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। आइए अब कार्यक्रम विवरण के तहत हम आपको जानकारी दे दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

कुछ देर बाद आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार। प्रातः 7 बजे का समय होगा लोक गीतों के कार्यक्रम लोकरंग का। 7:20 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। 7:30 का समय होगा कार्यक्रम गीत संगीत का। प्रातः 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात एवं 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज सीने हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। 8:30 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का, जिसे प्रसारित किया जाएगा हमारे रांची केंद्र से। 8:45 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

सप्ताह 9 बजे आप सुन सकेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। 11 बजे से आप पुनः सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। संध्या 4:30 का समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का। 5 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार जिन्हें हम रिले करेंगे अपने रांची केंद्र से। 5:02 का समय होगा कार्यक्रम किसान वाणी का और 5:32 पर आप सुन सकेंगे हमारे ग्रामीण भाइयों को संबोधित करता कार्यक्रम खेती बारी। 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार जिसे रिले किया जाएगा हमारे रांची केंद्र से। 6:02 पर आप सुन सकेंगे हमारे युवाओं को संबोधित करता कार्यक्रम युवाणी। 6:30 का समय होगा फिल्म संगीत का और संध्या 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसे हम रिले करेंगे अपने रांची केंद्र से। 7:10 का समय होगा जिले में आज कल का जिसे प्रसारित किया जाएगा रांची केंद्र से। 7:15 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। संध्या 7:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। रात्रि 8 बजे का समय होगा फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी चाहत का। 8:10 से आप सुन सकेंगे वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ @9 जिन्हें हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। रात्रि 10 बजे का समय होगा कार्यक्रम रजनीगंधा का और 10:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। 11 बजे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे, जिन्हें हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। रात्रि 11:10 पर हमारी सभा समाप्त होगी। तो श्रोताओं, ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः सम्बन्धः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्यानन्तरं श्रम प्रवास डिजिटल तन्त्रज्ञान रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र एकादश सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्तवार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बन्धानाम् उन्नतिः सह विश्वासानां प्राथमिकतानां भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीय राष्ट्रस्य प्रथमायां यात्रायां श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ।
1: एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन स्लोवाकिया देशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीय सम्मानं द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय नागरिकेभ्यश्च विशिष्ट सम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीये चरणे G7 शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं सम्प्राप्ष्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन औपचारिक रूपेण तस्य स्वागतं क्रियते। द्विपञ्चाशत्तमं G7 शिखर सम्मेलनं ह्यः एवियन नगरे समारब्धम्, यत्र विश्वस्य प्रमुखानां अर्थव्यवस्थानां नेतारः प्रमुखेषु वैश्विक समाह्वानेषु विचार विनिमयं कुर्वन्ति। राष्ट्रपतिः मैक्रों वर्यः प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय समाह्वानान् निवारणाय संयुक्तरूपेण कार्याचरणस्य विषये कार्यरात्रिभोजस्य आयोजनम् अकरोत्। ततः पूर्वं सः अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प यूके देशस्य प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यादिभिः नेतृभिः सह G7 देशानां नेतृणाम् औपचारिकरूपेण स्वागतं विहितवान्। यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला फोन डेर लेयेन, यूरोपीय परिषदः अध्यक्षः एंटोनियो कोस्टा च शिखर सम्मेलने भागं भजन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः ह्यः फ्रांस देशे मोनाको देशस्य राज्यमन्त्रिणा क्रिस्टोफ मिरमैंड, विदेश कार्य सहकार मन्त्रिणा इजाबेल बेरो आमादेई, वित्त अर्थव्यवस्था मन्त्रिणा फेडरिक कोटालोर्डा इत्येतैः सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीय पटले श्रीगोयलः अवदत् यत् द्वैपाक्षिक व्यापारं सुदृढं कर्तुं नूतनान् निवेशावसरान् अन्वेष्टुं भारत मोनाको देशयोः मध्ये उपवेशनम् आर्थिक सहकारं सुदृढं कर्तुं च केन्द्रितम् आसीत्। संघलोक सेवा आयोगेन UPSC इत्यनेन अस्य वर्षस्य लोकसेवा प्राथमिक परीक्षायाः परिणामाः घोषिताः। UPSC ह्यः सूचितवान् यत् अस्मिन् वर्षे 1,000+ रिक्तस्थानेषु लोकसेवा मुख्यपरीक्षायाः कृते आहत्य 13,000+ अभ्यर्थिनः चिताः सन्ति। परीक्षार्थिनः UPSC इत्यस्य आधिकारिक वेबफलके upsc.gov.in इत्यत्र प्राथमिक परीक्षाफलं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं लोकगीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम लोक रंग। लेकिन उसके पहले कुछ जरूरी संदेश।
3: आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: In my go।
5: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
6: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
7: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
2: लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला लोकगीत सत्येंद्र कुमार मिश्रा और साथियों की आवाज में।
4: In my go, my...

0: नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: दोस्तों, भी आप सुन रहे हैं लोक गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम लोक रंग FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अंतिम लोक गीत सतेंद्र कुमार मिश्रा और साथियों की आवाज में।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम लोकरंग। FM 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता के अंतर्गत भेंट वार्ता। विषय है सर्वाइकल कैंसर के कारण, लक्षण, उपचार। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ चित्रांगदा सिंह। दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर भारतीय महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है। इससे सालाना लगभग 74,000 महिलाएं मौत की शिकार हो जाती हैं, जो विश्व के आंकड़ों का लगभग एक तिहाई है। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बात करेंगे। और इस गंभीर विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच आज मौजूद हैं हजारीबाग की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चित्रांगदा सिंह। तो मैडम, आज के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए।
0: मैडम, सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि ये सर्वाइकल कैंसर, जिसे हम गर्भाशय के मुंह का कैंसर के नाम से भी जानते हैं, ये होता क्या है?
1: सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय के निचले हिस्से, जिसको कि सर्विक्स कहते हैं, में होने वाला एक कैंसर है। ये महिलाओं में पाए जाने वाले कैंसरों में एक प्रमुख कैंसर है, जो ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे कॉमनली भारतीय जनता में पाया जाता है।
0: जैसा कि अभी आपने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर के बाद ये महिलाओं में पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है, तो ये कैंसर किसे होता है? किस आयु वर्ग की महिलाएं इस तरह के कैंसर से पीड़ित होती हैं?
1: सर्वाइकल कैंसर या सीए सर्विक्स जिसे कहते हैं, वो दो उम्र में के लोगों में मिलता है। एक जो 35 से 39 साल के बीच में हो, और एक दूसरा पीक जो 50 से 55 साल के बीच में होता है। इस कैंसर का मुख्य कारण एक वायरस, जिसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं, उसका संक्रमण है। यह वायरस यौन संपर्क में आने के माध्यम से फैलता है। लोगों की इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा प्रणाली की वजह से यह सामान्यतः यह संक्रमण खुद पे खुद ही समाप्त हो जाता है, किंतु अगर यह लंबे समय तक शरीर में रह जाए तो कैंसर का रूप ले सकता है।
0: कौन ऐसी महिलाएं हैं जिनमें सर्वाइकल कैंसर होने की संभावनाएं जो हैं वो सबसे अधिक होती हैं?
1: जिनमें महिलाओं में HPV वायरस का संक्रमण ज्यादा हो, जैसे कि अगर विवाह कम उम्र में हो, अगर यौन संबंध की शुरुआत कम उम्र में हो, एक से अधिक या सेक्सुअल पार्टनर्स होने से, धूम्रपान, कई बार जो हमारे निचले वर्ग की महिलाएं होती है उनमें, या कमजोर प्रतिरक्षा क्षमता वाली जो महिलाएं होती है उनमें यह कैंसर होने की चांसेस ज्यादा है।
0: वो महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होती हैं, तो उनके शरीर में प्रारंभिक लक्षण क्या दिखलाई देते हैं?
1: कई बार शुरुआती दौर में कुछ लक्षण नहीं भी दे सकते हैं। जैसे जैसे समस्या बढ़ती है, उन सारे महिलाओं में मासिक धर्म में अनियमितता या संभोग के

0: बाद रक्तस्राव, मेनोपॉज के बाद दोबारा ब्लीडिंग शुरू होना, कई बार योनि में से असामान्य रूप से सफेद पानी का रिसाव होना, कमर दर्द या पेट के निचले हिस्से में पेल्विक एरियाज में दर्द होने की संभावना रहती है।
1: मैडम, आगे हम ये जानना चाहेंगे कि मेडिकल साइंस में सर्वाइकल कैंसर को लेकर किस प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं, कैसे उसका पता लगाया जाता है?
0: सामान्यतः 35-30 साल की उम्र के बाद पैप स्मियर बोल के एक टेस्ट किया जाता है, जिससे सर्विक्स में किसी भी एबनॉर्मल सेल्स के बारे में पता लगता है। जब हम पैप स्मियर करते हैं तो हम इसी के साथ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वो प्रजातियां जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होते हैं उनका भी पता लगा सकते हैं। तो नियमित जब हम 30 साल के बाद हर 5 साल के बाद पैप स्मियर करते हैं तो हम कैंसर सर्विक्स को स्क्रीन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी के पैप स्मियर में कुछ रिजल्ट्स एबनॉर्मल आते हैं तो उन्हें हम फिर कॉल्पोस्कोपी या फिर बायोप्सी के द्वारा यह पता कर सकते हैं कि उनमें सीएस सर्विक्स या कैंसर सर्विक्स होने की संभावना कितनी है।
1: और अगर हम इसके इलाज की बात करें तो मेडिकल साइंस में सर्वाइकल कैंसर के निदान के लिए क्या इलाज है?
0: सर्वाइकल कैंसर को स्टेज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो कहाँ तक फैला हुआ है, वो किस स्टेज पे है, और उसका ट्रीटमेंट भी स्टेजिंग के हिसाब से। शुरुआती दौर में जिसे स्टेज 1A1, 1A2 या 1B1 को सर्जरी करके ठीक किया जा सकता है। इस सर्जरी में यूट्रस, जिसे बच्चेदानी कहते हैं, और आसपास की जो चीजें हैं जिसे लिम्फ नोड्स, पैरामेट्रियम, उसे निकालने की जरूरत पड़ती है। स्टेजिंग बढ़ने पे सर्जरी ना करके रेडियोथेरेपी देने की जरूरत पड़ती है। तो शुरुआती दौर में सर्जरी और बाद की अवस्था में रेडियोथेरेपी करके कैंसर सर्विक्स को ट्रीट किया जा सकता है।
1: महिलाएं क्या करें जिससे वो सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से अपने आप को बचा सके?
0: ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, तो ये 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को या फिर जिनकी उम्र ज्यादा भी हो उन्हें लगवा लेना चाहिए, तो ये रोकथाम के लिए बहुत कारगर है। इसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़े तो रेगुलर पैप स्मियर कराते रहना चाहिए, जिससे सर्विक्स में किसी भी एबनॉर्मल सेल्स के बारे में हमें पता लगेगा। एबनॉर्मल सेल्स का उपचार कॉल्पोस्कोपी या बायोप्सी करा के कर लेना चाहिए। इससे हमें रेगुलर स्क्रीनिंग करके हम कैंसर सर्विक्स का पता लगा सकते हैं। कैंसर सर्विक्स के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लक्षण शुरू होने और कैंसर सर्विक्स डेवलप करने के बीच में 10 साल का समय लगता है, तो यह एक अकेला कैंसर है जिसको हम स्क्रीनिंग से बचाव कर सकते हैं।
1: कोई महिला सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित है तो इलाज के बाद क्या वो गर्भ धारण कर सकती है या गर्भ धारण में किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है?
0: कैंसर सर्विक्स का जो एज ग्रुप है 35-39 ईयर्स, या जो एक दूसरा एज ग्रुप है 50 एंड बियॉन्ड, तो जो महिलाएं रिप्रोडक्टिव एज में है अगर उनको कैंसर का पता शुरुआती दौर में लगता है तो कंजर्वेटिव सर्जरी करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जहां सर्विक में कैंसर हो सिर्फ उसी हिस्से को निकाला जा सकता है, तो ऐसी महिलाएं एक बार ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद गर्भ धारण कर सकती है। पर हाँ, कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं या उनमें समय से पहले डिलीवरी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो उसके लिए उन्हें रेगुलर चेकअप कराते रहना होगा।
1: तो आम लोगों के बीच ये धारणा है कि कैंसर बहुत ही गंभीर बीमारी होती है, इसमें लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, तो सर्वाइकल कैंसर को लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? यह किस तरह की बीमारी है, क्या यह पूर्णतः इनका इलाज संभव है मेडिकल साइंस में?
0: कैंसर के लिए अगर पूछे तो निश्चय ही ये बहुत गंभीर बीमारी है, जिन पे बीतती है वही जानते हैं। कैंसर सर्विक्स के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि यही एक कैंसर है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। वैक्सीन लेके, रेगुलर टेस्ट करा के, अगर शुरुआती दौर में पता लग जाए सर्जरी करा के इसे ठीक किया जा सकता है। जब कैंसर की ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम हमेशा पूर्णतः इलाज की बात नहीं करते, हम प्रिकॉशंस के या हम कितने दिनों तक कैंसर फ्री रहती है इस बारे में भी बात करते हैं। कैंसर का इलाज बहुत कुछ स्टेजिंग पे डिपेंड करता है। इनिशियल स्टेजेस में पता रहने पे पेशेंट का आउटकम जो है वो डेफिनेटली अच्छा है। लेट स्टेजेस में अगर पता लगे उसका सर्वाइवल रेट डिफरेंट है अगर वो अर्ली स्टेजेस से हो, तो हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि पूर्णतः खत्म कर पाएंगे या पूर्णतः इलाज कर पाएंगे, मगर हाँ, इलाज जरूर होता है और इलाज बहुत कारगर है।
1: और अंत में मैडम, हम आपसे कहना चाहेंगे कि समाज में महिलाएं, बच्चियां सर्वाइकल कैंसर को लेकर जागरूक हों, अपने आप को इस तरह के गंभीर बीमारी से बचा सकें, इसके लिए आप उनके बीच क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सारी महिलाओं को यह संदेश देना चाहूंगी कि कैंसर सर्विक्स ही एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए यदि हम समय पे स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट कराएं तो ये पूर्णतः प्रिवेंट किया जा सकता है। आपके घर में जितनी बच्ची

0: बच्चियां हैं जो 9 से 14 साल के बीच में हों, उन्हें जरूर टीका केंद्र में ले जाएं और एचपीवी का वैक्सीन दिलाएं। सुरक्षित यौन संबंध बनाएं। पैप स्मियर रेगुलरली 30 साल के बाद हर 5 साल के बाद कराते रहें। जब हम जागरूक बनेंगे तभी हम इस कैंसर से लड़ पाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपको किसी भी तरह की परेशानी हो, खासकर अगर आपको पीरियड्स को लेके कोई दिक्कत हो रही हो, अगर है ना आपको बहुत वाइट डिस्चार्ज या सफ़ेद पानी आ रहा हो जिसमें से बदबू आ रही हो, तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और जानें कि आपके लिए उपचार की क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम जागरूक बनेंगे तभी हम इस कैंसर से लड़ पाएंगे।
1: तो मैडम, जिन लक्षणों के बारे में आज के इस कार्यक्रम में आप जो चर्चा की है, अगर वो लक्षण किसी भी महिला में या फिर किसी भी बच्चियों में ये दिखलाई देती है, 9 साल से 15 साल की बच्चियों में, तो उन्हें अवश्य जो है एक बार महिला चिकित्सक से मिलकर अपना इलाज, अपना टेस्ट जो है वो जरूर करवाना चाहिए, ताकि इस तरह की गंभीर बीमारी से वो बच सके।
0: बिल्कुल, कैंसर सर्विक्स से लड़ना हम सब की जिम्मेदारी है। हम जानते हैं कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। वैक्सीन ले सकते हैं, वैक्सीन बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को जाएं, वैक्सीन दिलवाएं, अपना पैप स्मियर करवाएं, तभी हम इस कैंसर से लड़ पाएंगे।
1: तो मैडम, आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ी और महिलाओं में होने वाले दूसरे सबसे बड़े कैंसर सर्वाइकल कैंसर से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप हमारे श्रोताओं के बीच में साझा की, इसके लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप सबको इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता के अंतर्गत भेंट वार्ता का पुनः प्रसारण। विषय था सर्वाइकल कैंसर के कारण, लक्षण और उपचार, और इस विषय पर जानकारी दे रही थी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चित्रांगदा सिंह। FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत संगीत।

कार्यक्रम गीत संगीत सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला गीत बी प्राक की आवाज में।

दोस्तों, भी आपने सुना बेपराग की आवाज में गाया ये खूबसूरत सा गीत। अब आइए सुनते हैं जुबिन नौटियाल और पायल देव की आवाज में कार्यक्रम का अगला गीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

दोस्तों, अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में गाया ये खूबसूरत सा नगमा। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जुबिन नौटियाल की आवाज में।

दोस्तों भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत संगीत FM 102.1 MHz पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात और फिर मॉर्निंग न्यूज एवं 8:30 पर आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम रिले करेंगे अपने रांची केंद्र से।

0: बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज़ जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
3: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों फ्रांस।
2: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय एलएनजी टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
4: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
5: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
6: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
5: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
4: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
7: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति इस समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
9: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ाने शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मॉनसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कर...

0: मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे। To also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains unchanged. Indian ship Disha carrying 62,370 metric tons of LNG cargo safely crosses Strait of Hormuz. 8 people killed after B-52 bomber crashes at US Air Force base in Southern California. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. President of Slovakia, Peter Pellegrini, has conferred Slovakia's highest state honor, the Order of the White Double Cross First Class, upon Prime Minister Narendra Modi. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said that the Prime Minister expressed his heartfelt gratitude to the President, the government and the people of Slovakia for the distinguished honor.
2: As a special gesture, President conferred the highest state decoration of Slovakia, Order of the White Double Cross First Class, upon Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi for his role in an exceptional contribution in building India-Slovakia relationship. Minister dedicated the award to the people of India and Slovakia who have contributed in strengthening this partnership. Prime Minister also met with His Excellency Mr. Richard Rasi, Speaker of the National Council of the Slovak Republic, reaffirming the commitment to strengthen relationship between our two democracies.
1: India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence, following talks between Prime Minister Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Addressing a joint press conference, Mr. Modi said, "Elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future."
3: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: The Prime Minister said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
3: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर किए गए MOU से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को

0: News brings you a special feature, 12 साल, विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के. Today, we focus on Narendra Modi government's zero tolerance policy against terrorism.
1: Last year, on the intervening night of 6th and 7th of May, Operation Sindoor sent a clear message to the world that India does not seek war, but terrorism will not be tolerated. Operation Sindoor drew a new red line that if terrorism is a state policy, it will be met with a direct and forceful response. Targeting strongholds of Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed and Hizbul Mujahideen, India successfully destroyed 9 major terrorist launch pads located in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. More than 100 terrorists were killed in this operation. On 9th and 10th of May, India became the first nation to strike 11 air bases of a nuclear-armed state in a single operation. This resulted in the destruction of 20% of Pakistan Air Force's infrastructure. There was widespread global support, with numerous global leaders extending their support to India. Talking to Akashvani News, Lieutenant General KJS Dhillon, retired, who was the 15th Corps commander in Jammu and Kashmir, praised the intelligence of government agencies during Operation Sindoor.
2: The intelligence which was gathered over the 15 days period, or the gap in between Pahalgam and terror strikes on 6th, 7th May 2025, intelligence was so accurate, acquired by various means, collated, synthesized and then acted upon.
1: Meanwhile, to secure its land borders spanning over 15,000 kilometers across 7 neighboring nations, India today conducts its effective foreign policy guided by the principle of nation first, while simultaneously advancing towards self-reliance in the defense sector. Talking to Akashvani News, Professor Anup Kumar Day from Silchar said open border was a huge issue in Assam and Narendra Modi government has worked steadfastly to address this issue.
3: Pradhan Mantri Narendra Modi ji.
4: Since the Prime Minister Narendra Modi took charge, he highlighted this biggest issue of Assam and today fencing has been completed in most of the areas. Because of that, not only infiltration from there has been stopped, but also the illegal trade that used to happen from there has been cut off.
3: Jo illegal trades hota tha, wo bhi band hua hai.
1: NDA government remains resolute and deeply committed to a policy of zero tolerance against terrorism. With Anand Kumar, Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
0: US President Donald Trump has said a preliminary deal to end the war with Iran has already been signed and suggested that details of the agreement are set to be published pretty soon. Trump said this during his talks with French President Emmanuel Macron at the G7 summit last night. More from our West Asia correspondent.
5: The announcement of a U.S.-Iran peace framework has triggered cautious optimism across West Asia, with regional governments welcoming efforts to end months-long conflict. The agreement, which is due to be formally signed in Switzerland on Friday, includes plans to reopen the Strait of Hormuz and extend a ceasefire while negotiations continue. Oil markets reacted positively, with prices falling on expectations of improved energy supplies. Despite the breakthrough, major challenges remain. The full text of the agreement has not been released and disagreements persist over sanctions relief, Iran's nuclear program and future navigation rules in Strait of Hormuz. Regional tensions also remain high, particularly in Lebanon, where Israel has indicated that it will maintain military positions in certain areas despite the broader diplomatic initiative. The coming days will determine whether the framework can evolve into a durable peace agreement for the region. Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
0: In the FIFA World Cup 2026, tiny Cape Verde, making its historic first appearance at the World Cup, produced an extraordinary performance to secure a 0-0 draw with global heavyweights Spain. Cape Verde's 40-year-old goalkeeper, Vizinha, delivered a heroic performance as his side held Spain to a 0-0 draw. Earlier, Belgium and Egypt also drew 1-1 in their Group G opening match at Seattle Stadium. Egypt came close to securing their first ever World Cup victory but were denied by a quick response from Belgium's substitutes under the intense heat. Saudi Arabia and Uruguay also drew 1-1 in their opening match of Group H in Miami Stadium in the US this morning. Abdullah Al-Amri scored on a rebound in the 41st minute for Saudi Arabia, and Uruguay's Maxi Araujo responded with an equalizer in the 80th minute. And now, For a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
6: Thank you, Sunil. The peace deal between US and Iran is prominently noted on the front pages of dailies. US and Iran reach deal to end war, reopen Hormuz, headlines the Indian Express. US-Iran strike tentative peace deal as Israel refuses land pullback, reads the headline in the Statesman. Prime Minister Modi will lead the main event of the International Day of Yoga 2026 celebrations in Kolkata on June 21, writes the Asian Age. In its editorial piece titled Label Truth, the Tribune argues that FSSAI's action against misleading food labels is necessary, but only a first step. And that is back to you, Sunil.
0: Thank you, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Slovakia confers its highest honor, Order of the White Double Cross First Class, on Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Modi to participate in G7 summit in Avignon, France today to hold bilateral meetings with Prime Ministers of Canada and UK and UAE President. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
7: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्रालय ने झारखंड के लिए अलग एनसीसी निदेशालय स्थापित करने की दी मंजूरी। राज्य में एनसीसी की प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशिक्षण गतिविधियां होंगी सुदृढ़। राज्य सरकार ने वन्य जीवों के हमले में मौत पर आश्रितों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने और राज्य कर्मियों के लिए अग्रिम वेतन योजना शुरू करने का लिया फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के मोराबादी मैदान में झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 का करेंगे शुभारंभ। किसानों को कृषि की नई तकनीक जानने का मिलेगा अवसर। झारखंड के 8 जिलों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की हुई एंट्री। अगले 4-5 दिनों में राज्य के अन्य हिस्सों में भी मॉनसून मजबूती के साथ देगा दस्तक। और जेएससी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे झारखंड टी20 टूर्नामेंट में रांची टाइटंस ने संथाल स्ट्राइकर्स को 7 विकेट से किया पराजित। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्रालय ने झारखंड के लिए अलग एनसीसी निदेशालय स्थापित करने की मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में एनसीसी की प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशिक्षण गतिविधियां अधिक सुदृढ़ होंगी। नए निदेशालय के गठन से थल सैनिक कैंप, नौसैनिक कैंप, वायु सैनिक कैंप और विभिन्न साहसिक गतिविधियों में झारखंड के अधिक से अधिक कैडेटों को भाग लेने और राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड को नशा मुक्त राज्य बनाने के संकल्प के साथ कल रांची से राज्यव्यापी जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नशीले और मादक पदार्थ सेवन से स्वास्थ्य खराब होता है और यह व्यक्ति के साथ परिवार, समाज और राज्य की प्रगति के लिए गंभीर चुनौती है। उन्होंने सही गलत की पहचान के लिए जन जागरूकता पर जोर दिया। श्री सोरेन ने कहा कि युवाओं को नशा से बचाना उनकी प्राथमिकता है।
8: हर चीज का दो पहलू, अच्छा खराब, इसी बाबत ये हम लोगों ने एक मुहिम के रूप में लिया है कि लोग सही और गलत चीजों को पहचाने। मुझे जो लगता है जिसके लिए कानून बनता है आम नागरिकों के लिए, उनको उस कानून के बारे में पता ही नहीं रहता, जाने अनजाने में घटनाएं हो जाती हैं।
7: राज्य सरकार ने कल जनहित, कर्मचारियों की सुविधाओं, सड़क निर्माण, सिंचाई और खनन से जुड़े 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि अब वन्य जीवों के हमले में मौत होने पर सरकार आश्रितों को 10 लाख रुपए मुआवजा देगी। सरकार ने कर्मचारियों के लिए अग्रिम वेतन योजना शुरू करने का भी फैसला किया है।
9: सरकार के कर्मचारियों को क्रेडिट सुविधाएं, बीमा उत्पाद और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किसी भी वित्तीय संस्थान या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एजेंसी से एम्पैनलमेंट किया जाएगा। जंगली जानवरों द्वारा मनुष्य की मृत्यु होने पर जो वर्तमान दर 4 लाख है, उसे बढ़ा करके 10 लाख किया गया है।
7: इसके साथ ही नई नियुक्तियां पे लेवल 2 के तहत करने के साथ साथ सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए 162 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पलामू की अमानत बराज योजना के लिए 947 करोड़ रुपए से अधिक की संशोधित लागत को मंजूरी दी गई। झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए 18 जून को होने वाले चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव में जीत के लिए महागठबंधन और एनडीए बैठक कर रणनीति बना रहे हैं। महागठबंधन के पास चुनावी जीत का आंकड़ा है तो एनडीए भी जीत का दावा कर रहा है। इधर आज शाम मुख्यमंत्री आवास में जेएमएम विधायक दल की बैठक होगी। इससे पूर्व कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू, सांसद डॉ सैयद नसीर हुसैन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक प्रदीप यादव और अजय शर्मा ने मुलाकात की। वहीं कल भाजपा कार्यालय में एनडीए विधायक दल की बैठक में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी शामिल हुए। झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में एसीबी को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कल हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने एसीबी को अन्य अभियुक्तों के संबंध में पारित न्यायिक आदेशों का विवरण प्रस्तुत करने को कहा। साथ ही याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध अब तक एकत्र साक्ष्यों को सील बंद लिफाफे में अदालत को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि ये मामला हजारीबाग जिले में 28 डिसमिल गैर मजरुआ खास जंगल झाड़ श्रेणी की सरकारी भूमि की कथित अवैध खरीद बिक्री से जुड़ा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
10: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
11: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 का शुभारंभ करेंगे। इससे पूर्व कल कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि मेले की तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री ने कहा कि यह मेला किसानों के लिए नई तकनीकों और बाजार की संभावनाओं को जानने का अवसर साबित होगा। सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए प्रयासरत है। इधर किसान मेला सह प्रदर्शनी में साहिबगंज जिले के भी प्रगतिशील किसान भाग ले रहे हैं। कृषि पदाधिकारी प्रमोद एक्का ने कहा कि मेले में आधुनिक तकनीक और कृषि वानिकी से जुड़े नए विकल्पों को देखेंगे।
12: समेकित कृषि प्रणाली पर आधारित कृषि एवं संबंध विभाग के सभी प्रकार के जो भी योजनाएं हैं या उससे संबंधित जो भी मशीनीकरण चीजें हैं वो सारे चीज वहां उनको दिखाया जाएगा ताकि किसान वहां देख के अपने खेतों में उसको अप्लाई कर सके। साथ ही साथ वहां कृषि के उपज भी प्रदर्शित किए जाएंगे और जितने तरह के उपज हैं उन पर कुछ प्रोत्साहन राशि भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इस मेला में हम लोग साहिबगंज जिला से कुल 75 किसानों को भेज रहे हैं।
7: झारखंड के 8 जिलों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून प्रवेश कर चुका है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 4-5 दिनों में राज्य के अन्य जिलों में भी मॉनसून प्रवेश कर जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आज और कल मॉनसून की स्थिति कमजोर रह सकती है, इसके बाद राज्य में मॉनसून की स्थिति मजबूत होगी। झारखंड T20 क्रिकेट लीग 2026 में कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में रांची टाइटंस ने संथाल स्ट्राइकर्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए संथाल स्ट्राइकर्स ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 210 रन बनाए। रांची टाइटंस ने 19 ओवर और 3 गेंदों में 211 रन बनाकर जीत हासिल की। रांची के खेलगांव स्थित रोलर स्केटिंग स्टेडियम में 17 से 21 जून तक 12वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर से 1000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे, जबकि झारखंड के 13 जिलों के 127 खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। झारखंड रोलर स्केटिंग एसोसिएशन के सचिव सुमित शर्मा ने कहा कि यह आयोजन राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान करेगा।
13: रोड और ट्रैक दोनों इवेंट हमारे हैं और इसमें 1000 से अबव बच्चे पार्ट करेंगे। झारखंड के इसमें 127 बच्चे भाग ले रहे हैं, जिसमें 13 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं। अंडर 8 से लेके अंडर 19 तक के बच्चे इसमें खेल रहे हैं। अनीश राज और क्रिश शर्मा दोनों झारखंड के खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने के लिए और इस इवेंट को सक्सेस बनाने के लिए हमारे गेस्ट बन के यहाँ पे आ रहे हैं।
7: अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने अमेरिका ईरान के बीच युद्ध समाप्ति के समझौते की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, ईरान को 28 लाख करोड़ देकर जंग से छूटेंगे ट्रंप। दैनिक जागरण ने लिखा है, जंगली जानवरों के हमले में मौत पर अब 10 लाख मुआवजा। हिंदुस्तान ने झारखंड की 2 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर लिखा है, सियासी घेराबंदी तेज, दोनों पक्षों ने झोंकी ताकत। प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में योग दिवस का मुख्य समारोह कोलकाता में आयोजित होने की खबर को अपने पहले पेज पर जगह दी है। और अंत में मुख्य समाचार। रक्षा मंत्रालय ने झारखंड के लिए अलग एनसीसी निदेशालय स्थापित करने की दी मंजूरी। राज्य में एनसीसी के प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशिक्षण गतिविधियां होंगी सुदृढ़। राज्य सरकार ने वन्य जीवों के हमले में मौत पर आश्रितों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने और राज्य कर्मियों के लिए अग्रिम वेतन योजना शुरू करने का लिया फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के मोराबादी मैदान में झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 का करेंगे शुभारंभ। किसानों को कृषि की नई तकनीक जानने का मिलेगा अवसर। झारखंड के 8 जिलों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की हुई एंट्री, अगले 4-5 दिनों में राज्य के अन्य हिस्सों में भी मॉनसून मजबूती के साथ देगा दस्तक। और जेएससी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे झारखंड T20 टूर्नामेंट में रांची टाइटंस ने संथाल स्ट्राइकर्स को 7 विकेट से किया पराजित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 8:45 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

विक्रम मॉर्निंग मेलोडी सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म दुश्मन से।

दोस्तों अभी आपने सुना उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म दुश्मन से लिया गया ये प्यारा सा गीत। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत कुमार सानू और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में।

वस्तुभाषा भोसले और सुरेश वाडेकर की आवाज में गाए फिल्म सत्या के इसी गाने के साथ कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी से अपने दोस्त संजय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 9 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: चलो हद है, चोरों की तो हद है।

धुरंधर द रिवेंज इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना। इस गाने को गाया था जैस्मीन सैंडलाज ने और इस गाने में रैप किया था रिबेल ने। इस गाने की लिरिक्स लिखी है जैस्मीन सैंडलाज ने और रिबेल। म्यूजिक है शाश्वत सचदेव का।

0: सिद्धार्थ बसरूर और प्रिया सरैया की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना। इस गाने को लिखा था प्रिया सरैया ने, इसके म्यूजिक तैयार किया है सचिन जिगर ने और फिल्म है अ जेंटलमैन।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से

0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना। ओम शांति ओम फिल्म से सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना बयां कर रहा है लाइफ की एक ऐसी फिलॉसफी जो बनाएगी आपके हर दिन को खास। शान और अनुष्का मनचंदाना की आवाज में गोलमाल 3 फिल्म से कुमार के बोल म्यूजिक है प्रीतम का।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गायक, संगीतकार और निर्माता की, जिनके बारे में सलील चौधरी ने कहा था, अगर ईश्वर किसी आवाज में गाते तो वो हेमंत कुमार की आवाज में ही गाते।

0: जी हाँ, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर।
1: देखिए वो काली काली बदलिया, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शो

हेमंत कुमार का जन्म 16 जून 1920 को हुआ था बनारस में। ये जानकर आपको हैरत हो सकती है कि हेमंत कुमार का ताल्लुक बनारस से रहा था। उनके पिता वहां काम किया करते थे। बाद में उनका परिवार कोलकाता चला गया था, लेकिन बनारस से ताल्लुक होने का एक बहुत बड़ा फायदा हेमंत कुमार को किस गाने में मिला, याद है आपको? फिल्म मुनीम जी का ये गाना सुनिए। किस बनारसी अदा के साथ हेमंत कुमार ने इस गाने को गाया है।

हाँ, तो मैं कह रहा था कि हेमंत कुमार का जन्म तो भले बनारस में हुआ था, लेकिन उनका परिवार बाद में चला गया कोलकाता। कोलकाता में हेमंत कुमार को संगीत का शौक लगा और वहां उनकी संगीत की शिक्षा दीक्षा चलने लगी। 12वीं की परीक्षा देने के बाद हेमंत कुमार बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जाधवपुर आ गए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो संगीत की ओर बढ़ गए। हालांकि माता पिता ने इसका घना विरोध किया, लेकिन उन्होंने संगीत की अपनी रुचि को छोड़ा नहीं। बीच में एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने लिखने की तरफ भी अपने कदम बढ़ाए। जानी मानी बांग्ला पत्रिका देश में उन्होंने अपनी कहानी प्रकाशित करवाई। सन 1930 के दशक के आखिर में वो संगीत की दुनिया में चले आए। सन 1935 में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने कोलकाता के आकाशवाणी केंद्र पर अपना पहला बांग्ला गीत रिकॉर्ड करवाया। हेमंत कुमार ने उस्ताद फैयाज खां और फणीभूषण गांगुली से भी संगीत की तालीम ली थी। सन 1937 में हेमंत कुमार का पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड आया कोलंबिया के बैनर तले। इसके बाद हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली गई। सन 1941 हेमंत कुमार ने पहली बार फिल्मों में गाया। ये बांग्ला फिल्म थी निमाई संन्यास और इसके संगीतकार थे हरि प्रसन्न दास। हेमंत कुमार ने अपने पहले हिंदी गीत रिकॉर्ड करवाए फिल्म इरादा में सन 1944 में। इस फिल्म के संगीतकार थे पंडित अमरनाथ और गाने लिखे थे अजीज काश्मीरी ने। हेमंत कुमार रवींद्र संगीत के विशेषज्ञ माने जाते थे। सन 1944 में बांग्ला फिल्म प्रिय बंधावी के लिए उन्होंने रवींद्र संगीत रिकॉर्ड किया था पहली बार। बतौर संगीतकार हेमंत कुमार की पहली फिल्म थी अभियात्री। ये बांग्ला फिल्म सन 1947 में आई थी।

1940 के दशक के मध्य में हेमंत कुमार इप्टा में शामिल हो गए और वो जन नाट्य करने लगे। यहाँ सलील चौधरी भी उनके साथ शामिल थे। सन 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के दौरान जन जागृति का काम किया इप्टा ने, और सन 1947 में हेमंत कुमार ने अपना गैर फिल्मी गीत रिकॉर्ड किया गनेर बंधु, जिसमें संगीत सलील चौधरी का था। हेमंत कुमार इस दौर में बांग्ला फिल्मों में संगीत दे रहे थे। इनमें से कई फिल्मों के निर्देशक हेमेन गुप्ता थे। कुछ समय बाद हेमेन गुप्ता मुंबई फिल्म जगत में पैर जमाने के लिए चले आए और इसके बाद उन्हें मिली फिल्मिस्तान की फिल्म आनंद मठ। फिल्म आनंद मठ का निर्देशन करते समय हेमेन गुप्ता ने कोलकाता से हेमंत कुमार को भी मुंबई बुला लिया। इस तरह से मुंबई में हेमंत कुमार की पहली फिल्म बनी। सन 1952 में आई आनंद मठ।

इसी फिल्म में हेमंत कुमार ने लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया वंदे मातरम। आनंद मठ ने मुंबई में हेमंत कुमार के पैर जमा दिए। इसके बाद उन्होंने फिल्मिस्तान की फिल्म की शर्त

इसी दौरान बतौर प्लेबैक सिंगर हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली जा रही थी। देवानंद की फिल्म जाल में सचिन देव बर्मन ने हेमंत कुमार से ये गाना गवाया।

50 के दशक तक हेमंत कुमार एक प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बन चुके थे। सन 1954 हेमंत कुमार के करियर की नई ऊंचाई फिल्म नागिन। फिल्म नागिन के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए।

सन 1955 में हेमंत कुमार को मिला सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म नागिन के लिए। 1950 के दशक के आखिर में हेमंत कुमार ने अपना बैनर शुरू किया हेमंता बेला प्रोडक्शन।

फंस और इस बैनर के तले उन्होंने बनाई फिल्म नील आकाशेर नीचे। ये फिल्म सन 1959 में आई थी और इसके निर्देशक थे मृणाल सेन। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इसके तकरीबन 10 साल बाद हेमंत कुमार ने एक नया प्रोडक्शन हाउस खोला। इस बार उन्होंने नाम रखा गीतांजलि प्रोडक्शंस। हिंदी सिनेमा के इतिहास की कुछ बेमिसाल फिल्में दी गीतांजलि ने, जैसे 20 साल बाद, कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर और खामोशी, जिसका गुलजार का लिखा ये गीत दिल की गहराई में उतर जाता है।

हेमंत कुमार के गाने सीधे दिल की गहराइयों में उतरते हैं। उनकी आवाज में एक गंभीरता है, दूसरी तरफ उनकी आवाज में एक शोखी भी नजर आती है कुछ खास गानों में। यूं लगता है जैसे कोई दार्शनिक नदी के किनारे अपना सुर छेड़ रहा हो।

आज भी हेमंत कुमार को सुनने वालों की कमी नहीं है। हेमंत दा की आवाज विविध भारती ही नहीं दुनिया भर के रेडियो चैनलों पर गूंजती है और लोग उनकी आवाज को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। हेमंत कुमार बतौर संगीतकार बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं बतौर संगीतकार उनकी कुछ निराली रचनाएं।

0: फिल्म मिस मैरी साल 1957, किशोर कुमार का ये मजाहिया गाना।
1: गाना न आया, बजाना न आया।

0: बनाना ना।
1: 26 सितंबर 1989 69 साल की उम्र में कोलकाता में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने आखिरी सांस ली। रह गई उनकी आवाज, उनका दिया हुआ संगीत और उनकी बनाई हुई फिल्में।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
1: 10 9 8 7

0: हजारीबाग प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन की प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: कार्यक्रम हेलो हजारीबाग सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार जोहार। दोस्तों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने शहर हजारीबाग की खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बता दें कि अपने शहर हजारीबाग में वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी प्रकाश कुमार सिन्हा और सौरभ कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने मामले की जांच कर रही एंटी करप्शन ब्यूरो को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, इधर छड़वा डैम के निकट मैदान में रविवार को सुबह 40 वर्षीय इमरान हसन उर्फ सोनू खान के शव मिलने मामले में मृतक के भाई गजली खान की शिकायत पर पिलावल ओपी में हत्या का केस दर्ज किया गया। इस बाबत पत्नी शबाना परवीन, सास संजीदा, साढ़ू शहजाद खान, असगर खान और जेठ सास को नामजद आरोपी बनाया गया है। दर्ज मामला में ससुराल पक्ष के लोगों पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पिलावल ओपी प्रभारी बिट्टू रजक ने इस मामले को लेकर कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले की सच्चाई सामने आएगी। दोस्तों, हजारीबाग नगर निगम के वार्ड जमादार बीएलओ दीपक कुमार का सोमवार को रांची के मेडिका अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वह बीते 26 मई से अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन के बाद नगर निगम के सफाई कर्मियों और कर्मचारी संगठन में भारी आक्रोश व्याप्त है। कर्मचारियों ने काम के अत्यधिक दबाव और प्रशासनिक लापरवाही को उनकी मौत का कारण बताते हुए निगम प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर 4th दिन से हड़ताल शुरू की जाएगी। कर्मचारियों का आरोप है कि प्रचंड गर्मी के बीच दीपक कुमार पर सफाई व्यवस्था के साथ साथ बेलो और जनगणना जैसे अतिरिक्त कार्यों का दबाव बनाया गया था। दोस्तों,

इधर उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जिले में मॉडल सोलर ग्राम के चयन की प्रक्रिया संबंधी बैठक की गई। योजना का मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सोलर ग्राम का विकास करना, जहां सौर ऊर्जा आधारित सुविधाओं का सुनिश्चित उपयोग किया जा सके। और दोस्तों, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले 90 दिवसीय कानून जागरूकता आउटरीच कार्यक्रम के तहत सोमवार को प्रधान जिला जज ध्रुवचंद मिश्रा सोमवार को हजारीबाग जिला के ओल्ड एज होम पहुंचे, जहां उन्होंने यहां रह रहे सभी बुजुर्गों से मिले और उनका हालचाल जाना। इस दौरान वहां रह रहे लोगों को मिलने वाली सुविधाओं से भी अवगत हुए। सभी को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इस पर चर्चा की। और दोस्तों, वार्षिक मदरसा परीक्षा 2026 को शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए हजारीबाग सदर अनुमंडल प्रशासन ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। इस संबंध में सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार वार्षिक मदरसा परीक्षा 16 जून से 23 जून 2026 तक दो पालियों में आयोजित की जाएगी। और दोस्तों, हजारीबाग की बेटी डॉक्टर तनुप्रिया को कैलिफोर्निया के प्रतिष्ठित सांता क्लारा विश्वविद्यालय से शिक्षा में हाल में डॉक्टरेट की उपाधि अर्जित की। इसके लिए 12 जून 2026 को उन्हें वहां सम्मानित किया गया। आपको बतला दें कि तनुप्रिया ने 12वीं में जीव विज्ञान विषय में जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया था। दोस्तों, कार्यक्रम में हम आगे और भी चर्चाएं करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, भाग्य हम आपको बतला दें कि रवि और खरीफ फसलों के बीच कृषि कार्यों की व्यस्तता के बीच हजारीबाग के किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। केंद्र सरकार के नए निर्देशों के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप संचालकों को खुले गैलन, प्लास्टिक की बोतल या ड्रम में डीजल देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब डीजल लेने के लिए पेसो मतलब पेट्रोलियम और एक्सक्लूसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रमाणित जार लाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस सख्ती के बाद किसानों की परेशानी बढ़ गई है। स्थिति यह है कि किसान डीजल लेने पेट्रोल पंप तो पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। डीजल पंप संचालकों का कहना है कि सुरक्षा मानकों और सरकारी निर्देशों के कारण वे बिना पेसो अप्रूव्ड जार के डीजल देने में असमर्थ हैं। इधर स्थानीय बाजार में ऐसे प्रमाणित जार उपलब्ध नहीं है, जिससे किसानों का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। दोस्तों, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी का पद रिक्त था, जिसके कारण विकास की गति बाधित हो रही थी, जिसके कारण संत कोलंबा कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार पाल को कुलपति प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा ने नियुक्त किया है। इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। और दोस्तों, इधर बड़ा अखाड़ा मठ की भूमि से जुड़ा विवाद मामले में मठ के महंत विजयानंद दास ने DCSP को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान DCSP ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इधर DC ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं SP ने कहा कि महंत की सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने राज्य की कुछ प्रमुख खबरों को। इस क्रम में सबसे पहले हम आपको बतला दें कि झारखंड में राज्य कर्मियों को एक महीने का

0: अग्रिम वेतन मिल सकेगा। राज्यकर्मी उसे 2 से लेकर 60 महीने के अंदर वापस कर सकेंगे। वहीं जंगली जानवर, हाथी, भालू समेत अन्य से होने वाली क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत मनुष्य की मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए की जगह अब 10 लाख रुपए मुआवजे के रूप में मिलेंगे। गंभीर रूप से घायल होने पर 1.5 लाख रुपए की जगह 2 लाख रुपए और आंशिक रूप से घायल होने पर 25,000 की जगह 35,000 रुपए और अपंग होने की जगह पर 3,25,000 की जगह 3,50,000 बतौर मुआवजा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित कैबिनेट की बैठकों में इस फैसले पर मुहर लगाई गई। दोस्तों, साथ ही साथ सामान की क्षति होने पर भी अब मुआवजा मिलेगा। साइकिल, रिक्शा व बर्तन के नुकसान पर 5,000 और बाइक, स्कूटी, 3 पहिया वाहन और फर्नीचर के नुकसान पर 15,000 रुपए मुआवजे के रूप में मिलेंगे। वहीं मुर्गे मुर्गियों के मारे जाने पर प्रति मुर्गा मुर्गी 100 रुपए और अधिकतम 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा स्टॉल फीडिंग वाले भैंस, गाय, बैल की मृत्यु होने पर 50,000 की जगह 60,000, खुले में चरने वाले इन पशुओं की मृत्यु होने पर 25,000 की जगह 30,000 रुपए, बछड़े बाछी की मृत्यु पर मिलने वाले 8,000 और भेड़, बकरा, बकरी व अन्य जानवरों की मृत्यु पर 5,000 की जगह 10,000 रुपया मुआवजा दिया जाएगा। उसी तरह जंगली किसान को अब प्रति हेक्टेयर 32,500 की जगह अब 42,500 रुपए फसलों के नुकसान पर मिलेंगे। वहीं बटाईदार किसान को 21,667 रुपए प्रति हेक्टेयर की जगह 28,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिलेगा। आलू, प्याज, लहसुन, बैगन, टमाटर, लौकी, गोभी, पत्ता गोभी, खीरा, गन्ना और फलों की खेती की क्षति पर किसानों को 1.5 गुना राशि दी जाएगी। और दोस्तों, आपको बतला दें कि अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने महाधिवक्ता रोहितेश राय को अपना इस्तीफा सौंपा। निजी कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया। सचिन कुमार पूर्व महाधिवक्ता राजीव रंजन के कार्यकाल में अपर महाधिवक्ता थे। राजीव रंजन के महाधिवक्ता पद से इस्तीफा देने के बाद सचिन कुमार ने भी इस्तीफा दिया। और दोस्तों, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर राज्य भर में मनरेगा कर्मियों की 96 दिनों से जारी बेमियाद हड़ताल के बीच सोमवार से राज्य स्तरीय महाधरना शुरू हुआ। मुराहाबादी में धरना के पहले 156 दिवंगत मनरेगा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। संघ का कहना है कि 25 मई को हुई वार्ता में कई बिंदुओं पर बनी सहमति पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। और आपको बतला दें कि नशा मुक्त झारखंड बनाने के उद्देश्य से राज्य व्यापी जागरूकता अभियान का सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुभारंभ किया। इसके माध्यम से निषिद्ध मादक पदार्थ के सेवन, तस्करी व इसके दुष्प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने झारखंड मंत्रालय परिसर में जागरूकता प्रचार प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर राज्य के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इन प्रचार प्रसार वाहनों से नशे की लत के खिलाफ जागरूकता फैलाने के साथ साथ इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से बचाना है। तो दोस्तों, आइए आज के इस कार्यक्रम में हम भी जानते हैं नशापान से होने वाली गंभीर समस्याएं कौन कौन सी हैं और उसके लिए क्या समाधान हो सकते हैं।
1: श्रोताओ, मौजूदा समय में नशापान का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है। यूं समझिए कि हर 5 में से एक व्यस्त इसकी चपेट में है। इसका बढ़ता प्रचलन आधुनिक समाज, विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए एक गंभीर और चिंताजनक समस्या बन गया है। जो इसे ग्रसित हैं, उनके शरीर को ये अंदर से खोखला कर देता है। इसके रसायन इतने हानिकारक होते हैं कि ग्रसित व्यक्ति के शरीर में कई गंभीर बीमारियां पैदा कर देते हैं, जिससे प्रभावित व्यक्ति की अंततः मौत तक हो जाती है। व्यक्ति को पास पड़ोस यहाँ तक कि समाज से भी निष्कासित होना पड़ता है और फिर वो तनावपूर्ण जीवन जीने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या है नशापान के कारण, इससे होने वाली गंभीर समस्याएं और इसका समाधान, नशा मुक्ति के लिए सरकार द्वारा क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इसी से संबंधित बातचीत करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है क्लिनॉक्स एंटी ड्रग के सेक्रेटरी मोहम्मद जमील अख्तर को। तो जमील अख्तर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार। पहला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, नशा पान का कारण क्या है, खासकर युवा पीढ़ी हमारी नई नस्लें इसके एडिक्ट कैसे हो रहे हैं?
2: सर, असल होता है क्या सर, नशा नेगेटिव थिंकिंग चीज है
1: जी,
2: उसका खिंचाव नशा का बहुत ज्यादा होता है
1: जी।
2: आज लोग क्या होता है सर, शिक्षा से पीछे है
1: जी,
2: जिसके कारण नशा के तो तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं सर
1: जी,
2: और उसका थोड़ा सा मजा लेने के लिए
1: जी
2: आप अपना जीवन को नष्ट कर रहे हैं।
1: पहली वजह आ रही है कि अशिक्षा, जो कि और उसके बारे में जागरूकता भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है, कुछ ऐसे माहौल में ऐसे संगत में गलती से अगर पड़ गए तो लोगों का खिंचाव उसकी तरफ हो जाता है, जिसका है कि अशिक्षा है। अगर शिक्षित होते, पढ़े लिखे होते तो खुद इस बात को काट सकते, लेकिन न जानने की वजह से वैसे माहौल में पड़ जाते हैं और फिर धीरे धीरे उनको ये लत लग जाती है। नतीजा होता है कि उसका बड़ा प्रभाव, बुरा प्रभाव पड़ता है उसके जीवन पर। और अगर गलती से जो इस पर इसे के आदि हो गए, एडिक्ट हो गए, तो उसके शरीर में ये किस तरह का प्रभाव डालता है?
2: सबसे ज्यादा आपको किडनी पे इफेक्टेड पड़ेगा
1: जी,
2: लंग्स खराब होगा आपका
1: जी,
2: और लीवर से इफेक्टेड तरह तरह का बीमारी होगा आपको
1: जी। मतलब शरीर के अंदर जो मेन ऑर्गेन है, किडनी हो गया, लीवर हो गया, ये इफेक्टेड हो जाता है और उसकी पाचन क्रिया भी गड़बड़ हो जाती है, भूख में उसको कम लगती है,
2: बहुत कम लगी,
1: और आँत
2: सिकुड़ता है
1: जी जी।
2: जैसे आप जो क्लॉट पी रहे हैं
1: जी,
2: उससे आँत आपका सिकुड़ रहा है,
1: आँत सिकुड़ रहा है,
2: आँत सिकुड़ने के कारण आपको भूख नहीं लगेगी
1: जी, और जब भूख नहीं लगेगी तो जाहिर बात है कि फिर आपका स्वास्थ्य जो है कमजोर हो जाएगा और धीरे धीरे आप उसको और भी गिरफ्त में आते चले जाएंगे। ये तो उसका क्या असर होता है शरीर के किन अंगों पर ये प्रभाव पड़ता है ये आपने बताया, और जो पूरे तौर से इस पर ग्रसित हो गए तो अंत में उसका क्या परिणाम होता है?
2: अंत में तो मौत।
1: दूसरी बात ये जानना चाहेंगे, जो नशे के आदि होते हैं समाज पर उसका क्या असर होता है?
2: समाज में नशे के आदि लोग इसका आपूर्ति करने के लिए चोरी करना
1: जी,
2: किसी का सामान छीनना
1: जी,
2: और किसी को मार देना। आए दिन आप देखिए कि हजारीबाग में इतना मर्डर हो रहा है
1: जी जी,
2: तो उसमें 90% केस नशा का ही है
1: जी जी जी,
2: 90% केस नशा का ही, कि नशा के चलते आज इसको गोली मारा जा रहा है, किसी से पैसा छीनताई में उसके साथ घटना का अप्रिय घटना हो जा रहा है सर
1: जी,
2: तो सिर्फ नशा का ही कारण है।
1: ये मतलब हो गया कि जो लोग नशे के आदि हो गए उसको तो ड्रग लेने के लिए उसके लिए पैसा की जरूरत होती है, और पैसा अगर ये नहीं कमा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि जब इसके शरीर में अंदर या ब्रेन में उसका जब खिंचाव होगा, तनाव होगा, तो दवा चाहेगा, और दवा के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो मार्केट में या शहर में या समाज में जो छिनतई हो रहा है, चोरी हो रही है, उसका बड़ा कारण यही है
2: सबसे बड़ा।
1: और ये यूथ जो है, जो हमारी जो युवा नस्लें हैं, वही इसके जिम्मेदार हैं और चपेट में आते हैं, और नतीजा होता है कि सीधे साधे आदमी भी, सीधा साधा घराना भी पर इसका बुरा असर होता है। लूट, चोरी, डकैती, मारपीट, मर्डर तक के भी आपने बताया कि ये कारण, मेन असल कारण यही है। उसको दौलत जमा करना नहीं है, बहुत बड़ा बिल्डिंग और घर नहीं बनाना है, बल्कि नशे के लिए वो पैसा बनाना चाहता है और इस तरह के काम को अंजाम देता है। नशा बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है?
2: सर, जब तक सप्लाई है तब तक डिमांड है
1: जी।
2: अगर सप्लाई का मेन चैन को रोक दिया जाए
1: जी,
2: तो डिमांड आपका बंद होगा सर
1: जी।
2: लेकिन इतने बड़े बड़े लोग सप्लायर हैं, कानून प्रतिदिन अपना काम कर रही है
1: जी जी जी।
2: कानून बहुत मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रहा है, लेकिन इस कानून से भी ज्यादा सातिर ये लोग हैं।
1: मतलब हमारे ही समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो उस तरह की चीजें, उस तरह की दवाएं या ड्रग्स को प्रोवाइड करते हैं और इसके नतीजे में बच्चे जो है, जो युवा पीढ़ियां हैं, उसके चपेट में आते हैं और फिर अपना जीवन जो है, अपनी जिंदगी वो बर्बाद कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि सरकार या कानून, तो आपने बताया अपना काम कर रहा है कानून,
2: बहुत मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं,
1: के साथ काम कर रहा है सरकार की, बहुत सारी कोशिशें इस पर शुरू से चल रही हैं। अभी जैसा कि हम जान रहे हैं कि नशा मुक्त भारत अभियान भी चल रहा है, और जरूरत है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बड़े बड़े ओहदे पर हैं, पोस्ट पर हैं, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, थोड़ा सोशल मदद भी जरूरी है। सामाजिक स्तर पर समाज के जो बड़े लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी इसके लिए
2: जागरूक होना होगा
1: और समझाना होगा। अगली बात जानना चाहेंगे कि कोई इसे अगर छोड़ना चाहे, जो हमारा खास सवाल है, जो युवा इससे पीड़ित हो गए हैं, अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो उनके लिए वो क्या करना होता है?
2: उनके लिए सर हम लोग रिहैब खुल के बैठे हैं
1: जी,
2: आप आइए, हम जहाँ तक होगी हम आपको मदद करेंगे और इससे बाहर आपको निकालेंगे। अगर एक लड़का भी हम इससे बाहर निकालते हैं सर, तो मेरा जीवन उद्धार है,
1: उद्धार हो जाएगा। आपने समाज के ऊपर तो भी बहुत बड़ा उद्धार आपका होगा, और लगेगा कि मेरा दिल आपका खुश होगा, सीना आपका चौड़ा होगा, एक भी इससे आप निकाल पाए तो यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना होगा उनको?
2: यहाँ तक पहुँचने के लिए सर यहाँ आना होगा
1: जी,
2: या अगर ऐसा अगर जरूरत पड़े तो माँ बाप हमको कॉल करें
1: जी,
2: हम उसको ले आएंगे
1: जी। और ये अगली बात जानना चाहेंगे, जैसे युवाओं को आप अपने तक लाने के लिए आपकी ओर से क्या कोशिश होती है?
2: लड़का लोग को यही कोशिश होती है सर कि अगर कुछ को असमर्थ है इलाज के लिए तो मेरे पास आए
1: जी,
2: हम जहाँ तक मेरे से मदद होगा
1: जी,
2: इसे दलदल से निकलने के लिए हम वहाँ तक हेल्प जरूर करेंगे
1: जी। और देखते हैं कि जगह बाय जगह आप लोगों का ये हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ होता है, इससे अगर वो चाहे तो उस नंबर से कॉन्टेक्ट करें और जगह पर आ सकते हैं। मेन है कि उसके अंदर या जो बच्चे या जो यूथ जो है इससे पीड़ित हो गए हैं, उनको अपने अंदर ये
2: जागरूकता लाना होगा,
1: एक हौसला पैदा करना होगा, एक बड़ा सोच पैदा करना होगा, और एक उसको शपथ लेना होगा, अपने आप में एक अहद करना होगा कि हम इसको छोड़ेंगे जब ही उसे ये मुमकिन है। नहीं तो आपकी जो कोशिशें हैं, जो सरकार की कोशिशें हैं, उतनी कारगर नहीं देखेंगे जब तक हम
2: खुद से कोशिश नहीं करेंगे।
1: तो जब जैसे अब तक जैसे कितने लोगों को आपके यहाँ से इसका फायदा मिल पाया है?
2: लगभग करीब 1200 से 1300 लड़का लोग।
1: उसका क्या असर देखते हैं बाद में फिर वो इसके?
2: लगभग 70% लड़का लोग रिकवर
1: कर गए, आप अपने अपने रोजगार से लगे हो, अपने काम में लग गया,
2: जितना जो आपका सबूत है सब सर जो अभी काम कर रहे हैं सर
1: जी,
2: बहुत लड़का लोग काम कर रहे हैं
1: जी,
2: सबका आता है हमेशा पेपर में
1: जी, जिसमें आप सक्सेस हो गए हैं, जिन लड़कों ने इसको छोड़ दिया है उसकी खबरें भी आती हैं, भी आते हैं और सोशल मीडिया वगैरह में उसकी खबरें आती होंगी, और जाहिर बात है कि ये बड़ी खुशी की बात है। अगली बात हम जानना चाहेंगे, नशा पान का समाधान और बचाव क्या हो सकता है?
2: बचाव है क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि जागरूकता
1: जी
2: होना जरूरी है, शिक्षा होना जरूरी है, जिससे हम नशा के प्रति जो लॉसेस होता है, नशा के प्रति जो हमको आज मेरा शरीर लॉस कर रहा है, मेरा परिवार से हम दूर होते चल जा रहे हैं और समाज से दूर होते चल जा रहे हैं, तो इससे जागरूकता की जरूरत है, समाज को इसमें पहल करना चाहिए
1: जी,
2: घर वालों को भी चाहिए कि अपने बच्चे से बहुत प्यार से रहें
1: जी,
2: और उसे हर तरह का कचकच बंद करें
1: जी,
2: तो उसे प्यार से समझाने से सर नशा जरूर डाइवर्ट करेगा, जरूर पॉजिटिव पॉइंट में लड़का आएगा
1: जी। अच्छा, जो ड्रग्स लेने लगते हैं उसको खान पान में भी उसका असर पड़ने लगता है, आपने शुरू में बताया बात कि उसका आंत में सिकुड़न आना शुरू हो जाता है, जिससे वो खाने पीने में कमी करता है, भूख लगनी कम होती है और शरीर उसका डैमेज हो जाता है। जो छोड़ चुका है, जो छोड़ना चाह रहे हैं या जो छोड़ चुके हैं, उनको खाने पीने की तरफ कुछ या उसके लिए ध्यान देना होगा?
2: हाई प्रोटीन का खाने का जरूरत है उसको
1: जी,
2: हाई प्रोटीन का जरूरत पड़ता है जिससे उसका शरीर में तनाव ना हो, खिंचाव न हो
1: जी। अच्छा, जो बच्चे ग्रसित होकर के आपके यहाँ सेंटर में आ जाते हैं तो उनका कितना समय में वो ठीक हो जाते हैं?
2: 3 से 4 महीने
1: में वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसी बीच हमारे दरमियान है कि युवा जो गलती से इसके आदि हो गए थे, लेकिन इन्होंने शपथ लिया, अपने आप में ये फैसला किया कि हम इसको छोड़ेंगे और एक अच्छी जीवन जियेंगे, अच्छा जीवन शैली अपनाएंगे और समाज के लिए एक बेहतर प्रेरणा स्रोत बनेंगे। तो हम जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम पुरुषोत्तम देव मेहता हुआ
1: जी,
3: मैं हजारीबाग का रहने वाला हूँ
1: जी जी।
3: मैं कुछ टाइम पहले अपना फ्रेंड सर्कल की वजह से मैं इस नशा के बीच में फंस गया
1: जी जी,
3: मुझे निकलने में थोड़ा टाइम लग गया बट मैं अभी ठीक हूँ
1: जी। तो आप इसे कितने दिनों से आप इसको लेना छोड़ दिए हैं?
3: मैं भी 1 ईयर क्लीन हूँ, 1 साल तक हो गया मेरा।
1: 1 साल आपका हो गया, तो अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं?
3: बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, पहले से बेटर महसूस कर रहा हूँ।
1: बेटर महसूस कर रहे हैं और अच्छा लग रहा होगा अपने आप में?
3: बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी नशा छोड़ के मैं अपना जिंदगी को अच्छे तरीके से जी रहा हूँ।
1: एक नई जिंदगी, एक खुशहाल जिंदगी आप महसूस कर रहे हैं और समाज के बीच भी आपको उसका उसकी इज्जत मिल रही होगी।
3: बिल्कुल।
1: और जब इसमें आप ग्रसित रहे होंगे या इसके आदि रहे होंगे, तो सब क्या आप महसूस कर रहे थे
3: उस टाइम? मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं अपना लाइफ को अच्छे तरीके से नहीं चला पा रहा हूँ।
1: जी जी।
3: मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ आने लगी।
1: जी।
3: बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। मेरा फैमिली मेरे वजह से परेशान रहने लगा।
1: जी, जी।
3: मैं खुद भी परेशान था उस टाइम में।
1: जी।
3: मुझे चिड़चिड़ाहापन लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी मुझे नशा छोड़ के बहुत अच्छा महसूस कर हो रहा। और
1: तो पुरुषोत्तम जी, आप पहले गलती से ऐसे संगत में चले गए थे जिसकी वजह से आप उसके आदि हो गए और बहुत कुछ झेला आपने, समाज से भी आप निष्कासित हुए, आपका तनावपूर्ण जीवन रहा, लेकिन जब आप छोड़ चुके हैं, आपने कहा कि लगभग 1 साल से मैं छोड़ चुका हूं और अच्छा जीवन जी रहा हूं, बड़ी खुशी महसूस हो रही है। और हम चाहेंगे कि आपके जैसा और भी युवा हैं इसको छोड़ने का फैसला करें, ताकि वो भी खुश रहें और समाज के लिए भी वो बेहतर प्रेरणा बने और देश की उन्नति की भी वो वजह बने और देश को आगे ले। उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो इसको छोड़ना चाह रहे हैं या जो इसमें नहीं आए हैं और आए ही नहीं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
3: बिल्कुल, मैं अभी का यूथ को यही बोलना चाहूंगा कि नशे में जिंदगी नहीं है दोस्त।
1: जी।
3: नशा छोड़ के बहुत अच्छा जिंदगी है।
1: जी।
3: तो उससे निकलिए और अपनी जिंदगी को अच्छे बेहतर तरीके से जी।
1: जी, बिल्कुल आपने अच्छा संदेश दिया यूथ को, और हम चाहेंगे कि हमारे यूथ जो इस संगत में आ गए हैं वो छोड़े, अपने आप में फैसला लें, हिम्मत करें और फिर वो बेहतर जीवन जिए, समाज के लिए एक प्रेरणा अपने।
3: बिल्कुल।
1: प्रशासन जी, आप जुड़े हमारे साथ और अपना अनुभव साझा किया, इसके लिए आपका तो हम धन्यवाद देते हैं।
3: धन्यवाद।
1: हमारे बीच एक और युवा है, क्या नाम है आपका?
4: रेहान रजा।
1: रेहान रजा आपका नाम है। आप ये नशा के जंगल में किस तरह से आ गए थे?
4: दोस्तों के सर्किल में रहते रहते।
1: अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं?
4: बहुत अच्छा फील करते हैं, अभी नशा छोड़ गए।
1: नशा छोड़ के अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं?
4: हम तो यहीं के, दामोडी के।
1: हाँ, यहीं दामोडी के हैं। तो कितने दिनों से आप छोड़ चुके हैं?
4: मेरा लगभग 6 महीने से ऊपर हो गया।
1: 6 महीने से ऊपर हो गया। तो अभी आप नॉर्मल लाइफ आप जी रहे हैं, आप भी खुश हैं, आपके घर वाले भी खुश हैं। तो रेहान साहब, आपने भी अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया और आपके साथ हम भी चाहेंगे कि जो युवा हैं इससे बचें और देश को उन्नति की ओर ले जाएं, क्योंकि देश की जो उन्नति है वो युवाओं के कंधों पर ही है। वो अच्छे रहेंगे, वो स्वस्थ रहेंगे, तो देश और समाज भी स्वस्थ होगा। आपने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जमील साहब, आखिर में आप हम युवाओं को, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इससे इस ओर अग्रसर ना हो?
2: इससे निकलने का जरूरत है सर युवाओं को।
1: जी,
2: अगर इससे नहीं निकलते तो एक पीढ़ी हम लोग का सर ना तो रोजगार मांगने के लायक रहेगा,
1: जी,
2: ना न्याय मांगने के लायक रहेगा,
1: जी,
2: ना शिक्षा का मांगने के लायक रहेगा।
1: जी, जी, जी।
2: इससे एक पीढ़ी खत्म हो जाएगा।
1: जी, जी।
2: और इसको, इसके पीछे अगर नहीं ध्यान दिया जाए सर, इससे नशा से नहीं निकाला जाएगा युवाओं को सर, तो एक पीढ़ी दरस्त हो जाएगी।
1: दूसरी नस्लें जो आएंगी वो भी देख कर वो भी इस ओर आ जाएंगी और नतीजा इसका ये होगा कि मतलब परिणाम बहुत बुरा होगा,
2: बहुत बुरा होगा
1: और उसमें देश को भी नुकसान होगा। तो आप जैसे लोग और हमारे सरकार की तरफ से भी बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, नशा मुक्त भारत अभियान भी चलाया जा रहा है। हम चाहेंगे, आप चाहेंगे, सरकार भी चाह रही है कि देश इससे नशा मुक्त या और समाज हमारा जो नशा मुक्त हो और उन्नति की ओर हमारा देश जाए। आपने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद अब हम बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर और जानते हैं आज के दिन इतिहास में क्या रहा था खास। दोस्तों, 16 जून को इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं, जिसमें साल 1858 में ग्वालियर की लड़ाई और 1906 में पहले फीचर फिल्म स्टूडियो की शुरुआत शामिल है। इस दिन दुनिया में कई महान हस्तियों को खोया और पाया और विज्ञान के क्षेत्र में भी कई ऐतिहासिक घटनाएं मील की पत्थर साबित हुई। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बतला दें आज के दिन घटित कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। तो आज के दिन 1858 में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। आज के दिन 1906 ईस्वी में दुनिया के पहले एनिमेटेड फीचर फिल्म स्टूडियो निकल लोडियन की पिट्सबर्ग में शुरुआत हुई थी और 1963 में आज के दिन रूस की वैलेंटिना तेरेश्कोवा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी और 1999 में आज के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन विजय के तहत टोलोलिंग की महत्वपूर्ण चोटी पर कब्जा किया था। अब आपको बतला दें कि आज के दिन किन प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म हुआ था। दोस्तों, आज के दिन भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले महान क्रांतिकारी और आजाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस का जन्म 1888 को आज के दिन हुआ था।

और दोस्तों, हिंदी और बंगाली सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और पद्म भूषण से सम्मानित मिथुन चक्रवर्ती जी का जन्म भी आज के दिन 1950 को हुआ था। अब आपको बतला दें कि आज के दिन किन प्रमुख व्यक्तियों का निधन जो है हुआ था। तो आज के दिन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सबसे प्रमुख वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का निधन आज के दिन हुआ था। और देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता चितरंजन दास का निधन आज के दिन 1925 को हुआ था। तो दोस्तों, आपने जाना कि 16 जून को आज के दिन कौन कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी। कार्यक्रम में हम आगे बढ़े उसके पहले आइए हम आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर और इस पड़ाव पर हम जानते हैं देश दुनिया से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरें। इस क्रम में आपको बतला दें कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 समारोह के लिए हरिद्वार में गंगा नदी के तट से लेकर हम्पी के प्राचीन खंडहरों और दिल्ली के लाल किले के ऐतिहासिक परिसर सहित 12 प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों को चुना गया है। मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में होगा, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। दोस्तों, इधर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सोमवार को वाणिज्य उड़ानों का संचालन शुरू हो गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू और जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह ने बेंगलुरु के लिए पहली उड़ान को रवाना किया। दोस्तों, बतला दें कि अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक बसों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। देश भर में अब लो फ्लोर बसें ही चलाई जाएंगी। केंद्र सरकार ने नियमावली में बड़ा बदलाव करते हुए शहरों में चलने वाली सभी बसों के फ्लोर की ऊंचाई को घटाकर अधिकतम 400 mm करना अनिवार्य कर दिया है। और दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन तक जारी रहे युद्ध को खत्म करने और होर्मुज को फिर से खोलने पर सहमति बन गई है। दोनों देशों के बीच समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। और नीट का पेपर बेचकर ठगी करने वाले का अहमदाबाद पुलिस ने खुलासा किया है, साथ ही इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो दोस्तों, कार्यक्रम हेलो हजारीबाग में आज बस इतना ही। आज के इस कार्यक्रम से अब अपने दोस्त संजय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

दोस्तों, ये आप सुन रहे थे कार्यक्रम हलवा हजारीबाग FM 102.1 MHz पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 11 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को।

हाल क्या है दिलों का, ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, अनोखी अदा ये था फिल्म का नाम।

जगजीत सिंह की आवाज में गजल अभी आप सुन रहे थे। राजेश रेड्डी ने इसे लिखा था, संगीत दिया था जगजीत सिंह ने, और आईना ये था एल्बम का नाम।

0: लकी अली को अभी आप सुन रहे थे अक्स एल्बम से। ये गीत लिखा लकी अली ने और अभी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग विविध भारती से।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपने आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे अमर अकबर एंथनी फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग और लीजिए सुनिए अब ये गीत बरसात की रात फिल्म से।

0: बरसात की रात से कवाली अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और रोशन का संगीत था।
1: तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम

0: दीवाना एल्बम से आप सुन रहे थे सोनू निगम को। फैज अनवर ने इस गीत को लिखा था और साजिद वाजिद का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

आलिशाज लव नोट, ये एल्बम से आप अभी ये गीत सुन रहे थे। आलिशा की आवाज में और साथ दिया था बाबुल सुप्रियो ने, संदीप चौटा ने संगीत दिया, नितिन रायकवार ने इसे लिखा।

शान और कविता कृष्णमूर्ति को आप सुन रहे थे। इस गीत में दिल चाहता है फिल्म का नाम था। जावेद अख्तर ने इसे लिखा। शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: यही संपन्न होता है।

0: यह है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। फ्रांस के एवियां शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियान पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
1: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा है कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। श्री पर्वतानेनी ने कहा कि वीटो का अधिकार रखने वाले 5 स्थायी सदस्यों, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमरीका के निर्णय लेने के तौर तरीकों में बदलाव की भी आवश्यकता है। ओमान के तट पर हुई एक दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज बताया कि राजदूत ने बचाए गए चालक दल के सदस्यों से उनके प्रस्थान से पहले मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दी और इस कठिन परिस्थिति में उनके धैर्य और दृढ़ता की सराहना की। दूतावास ने विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नागालैंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागरिकों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। स्वगणना की सुविधा 30 जून तक उपलब्ध रहेगी। घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम अगले महीने की 1 जुलाई से 30 जुलाई तक किया जाएगा। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में मामूली तेजी देखी गई। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 76582 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23920 पर था। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

विजय और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। डिस्को डांसर फिल्म का नाम था अनजान ने से लिखा, बप्पी लहरी का संगीत था। और आज इस प्रोग्राम में यादों की महफिल में आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर फिल्माए गीत, उनकी फिल्मों से गीत। आज उनका जन्मदिन है और विविध भारती परिवार की ओर से अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: गुलामी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, गुलजार ने इसे लिखा था। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज है।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

कुमार सानू और सुजाता गोस्वामी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फूल और अंगार फिल्म का नाम था। रानी मलिक ने इसे लिखा और अनु मलिक का संगीत।

फिल्म गोलमाल 3 से ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुदेश भोसले की आवाज में, कुमार ने इसे लिखा था और अमर मोहिते का संगीत था। आप सुन रहे हैं इस वक्त यादों की महफिल विविध भारती से।

बैनी दयाल, श्रेया घोषाल, एआर रहमान की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे युवराज फिल्म से। माफ कीजिए, श्रेया घोषाल की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा था और एआर रहमान का संगीत था।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, प्यार झुकता नहीं, फिल्म का नाम। एसएच बिहारी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

0: फिल्म गुरु से गीत अभी आप सुन रहे थे ए आर रहमान और चिन्मय की आवाजों में गुलजार ने इसे लिखा ए आर रहमान का संगीत था। आज यादों की महफिल में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती अभिनीत
1: बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। प्रोग्राम है सुरीला सफर। मैं हूं अनुराधा, आज आपके सफर में आपके संग। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट किया जाता है, जिसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं और साथ ही साथ उन शब्दों से कौन से गीत आज इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं ये बताना है। तो ये तो आप बखूबी करते हैं और लंबी लिस्ट मुझ तक पहुंच चुकी है। बहुत सारे गीत आ चुके हैं कि कौन कौन से होंगे, और आपको बता दें कि एक गीत की फरमाइश, या यूं कहें कि एक गीत को पहचाना है आपने बहुत अच्छे तरीके से, और हो सकता है उसी गीत से हमारी आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हो। देखते हैं आपकी ये लिस्ट और हमारी लिस्ट गीतों की कितनी मेल खाती है। साथ ही साथ उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, उनके लिए इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं। तो इबारत कुछ इस प्रकार है, कभी कभी यूं ही जिंदगी में मोहब्बत किसी अजनबी हसीना से मिल जाती है और दिल वीरान राहों पर ख्वाबों की रानी बनकर खिल जाता है। तुम्हारी याद में लिखे खतों के पन्नों पर हजारों रंग के नजारे उधर आते हैं जब तुम्हारे दो नयन मुस्कुराते हैं। मेरा दिल का चैन भी लौट आता है, ये जुल्फे रेशमी जाने कैसी खुशबू बिखेर जाती है। तुमने दिल को ऐसे चुरा लिया है कि सांसें भी तुम्हारा नाम गुनगुनाती है। बिगड़ जाए जब कोई बात, तेरा हाथ मेरे हाथ में हो अगर, तो शाम क्या हर रात फिर से सवेरा बन जाए। कतरा कतरा कर चलो हम एक कहानी में ढल जाए। तो इबारत एक बार फिर से आपके सामने पढ़ दी है, और चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ जिसका सबसे ज्यादा जिक्र मैसेजेस में आया है।

पर। सिरी बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा बच जाओ।

0: एक अजनबी हसीन से किशोर कुमार की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अजनबी फिल्म का नाम था, आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और आर डी बर्मन की तर्ज थी। आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं और ये एक ऐसा गाना है जो हर किसी ने लिखा, ये बहुत पॉपुलर, इसीलिए शुरुआत इसी गाने के साथ की गई क्योंकि आपकी जो फरमाइश है सर आंखों पर, और बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस। एक चीज मैं देख रही हूँ कि हमारी जो इबारत है उससे भी काफी मॉडिफिकेशन करके या उससे इंस्पायर होके बहुत सारे इबारत लिखी गई है, कविता लिखी गई है, कुछ पंक्तियां लिखी गई है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। हमारे श्रोतागण एक दूसरे को नमस्कार करते हैं और साथ ही बोलते हैं कि सुरीला सफर कारवां के हम सफर साथियों को नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। साथ ही इन्होंने लिखा है कि प्रेम प्रसंगों की श्रृंखला के इबारतों में आज भी दिल के किसी कोने में छुपी शून्यता को प्रेम की मीठी एहसासों से पूर्ण करने की खूबसूरत कोशिश की गई है। सच है, उम्र की सीमा बंधन को दरकिनार कर दिल जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अनायास ही मोहब्बत की दस्तक दे जाता है। कितनी खूबसूरत बात कही है। हमारे एक और श्रोता है, वो लिख रहे हैं और मुस्कुरा उठे हैं और कह रहे हैं कि हम तो उम्र के उस पड़ाव में हैं जहां अजनबी हसीना तो क्या, अपनी हसीना भी भाव नहीं देती। अगर चाय मांगो तो जवाब नहीं मिलता, खुद से बना लो। ये प्यारी प्यारी मीठी मीठी नोक झोंक भी तो जिंदगी में रंग भरती है, ये भी अलग तरह का रंग है। बिल्कुल। साथ ही एक श्रोता लिखते हैं कि जो वीरान राहों को
1: समाचार

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने नीट की पुनर्परीक्षा को लेकर 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर लगाया बैन। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन का दिया निर्देश। कोल इंडिया की पहली कोल बेड मिथेन परियोजना के तहत झरिया में अगले एक साल में मिथेन गैस का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य। झारखंड हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के समय राज्य के विभिन्न जिलों में पेड़ों की अवैध कटाई मामले में राज्य सरकार से मांगी जांच रिपोर्ट। स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग में रांची के चान्हो स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय को देश भर में पहला स्थान। राष्ट्रीय रैंकिंग में राज्य के 3 स्कूलों ने बनाई जगह। और FIH महिला हॉकी नेशंस कप में भारतीय टीम ने जापान को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने नीट की पुनर्परीक्षा संपन्न होने तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। यह रोक 22 जून तक लागू रहेगी। इधर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा बैठक की। कल एक उच्च स्तरीय बैठक में गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया। श्री मोहन ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने बताया कि 1000 से अधिक रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया है। यूपीएससी ने बताया कि अंक, कट ऑफ अंक और उत्तर सूची अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। भाजपा के मुख्य सचेतक से हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने दावा किया है कि झारखंड से निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत होगी। हजारीबाग में उन्होंने कहा कि नाथवानी 2 बार झारखंड से राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने झारखंड को कई सौगातें दी हैं।
1: परिमल नाथवानी जी के लिए उनके वोटर 81 हैं। सभी पार्टियों से और सभी विधायकों से निर्दलीय प्रत्याशी को वोट मानने का लोकतांत्रिक अधिकार है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब 18 तारीख को वोट होगा और परिणाम आएगा तो परिमल नाथवानी जी विजयी होंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं।
0: कोल इंडिया की पहली कोल बेड मिथेन CBM परियोजना के तहत धनबाद के झरिया में अगले एक साल में मिथेन गैस का व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। इस परियोजना से हजारों करोड़ रुपए के राजस्व के साथ साथ घरेलू रसोई उद्योग और उर्वरक क्षेत्र को स्वच्छ ईंधन मिलेगा। BCCL के CMD मनोज अग्रवाल ने बताया कि मुनिडीह में CBM परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है और अगले एक साल में व्यावसायिक उत्पादन का लक्ष्य है।
2: तो हमारे BCCL के बहुत सारे माइंस, गैसी माइन, कोल माइंस में बेड में जो मिथेन पाया जाता है उस मिथेन को निकाल कर अपने ऊर्जा के स्रोतों में हम ला पाए, इस दिशा में मुनिडीह में हमने लगभग 25 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का भंडार को चिन्हित किया है और गैस का निकलना भी शुरू हो गया है और इसका कमर्शियल यूज पाइपलाइन बिछा करके विद इन 1 ईयर हम लोग इसको शुरू कर लेंगे और इसे लगभग 125 करोड़ पर ईयर का रेवेन्यू की प्राप्ति होगी।
0: झारखंड हाईकोर्ट में लॉकडाउन के दौरान रांची समेत कई जिलों में पेड़ों की अवैध कटाई मामले में राज्य सरकार की जांच रिपोर्ट मांगी है। इस पर प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता ने समय की मांग की। अदालत ने इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह तय की है। गौरतलब है कि रांची, पलामू, गढ़वा, जामताड़ा, चाईबासा आदि जिलों के जंगल से अवैध रूप से हजारों पेड़ काट दिए गए थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में रांची के चान्हो स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय ने 99.20% अंक लाकर देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। इस राष्ट्रीय रैंकिंग में झारखंड के 3 स्कूल शामिल हैं, जिनमें हजारीबाग का बिहारी बालिका हाई स्कूल 21वें और लातेहार का उत्क्रमित मध्य विद्यालय तुरीसात 64वें स्थान पर रहा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हजारीबाग के स्कूल को शौचालय और स्वच्छता प्रबंध और लातेहार के स्कूल को पेयजल और वर्षा जल संचयन में बेहतर कार्य के लिए सराहा है। धनबाद सांसद ढुलू महतो ने कहा है कि करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे गया पुल अंडरपास का निर्माण तय समय से पूरा हो जाएगा। वहीं गोविंदपुर में 329 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे पर बन रहे फ्लाईओवर का काम भी समय पर पूरा होगा। सांसद ने कहा कि दोनों परियोजनाएं क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी।
3: गया पुल चौड़ीकरण को

0: उपलब्ध कराई गई है। इससे वनकर्मियों की पहुंच दूरस्थ वन क्षेत्रों तक आसान होगी। डीएफओ मुकेश कुमार ने कहा कि इससे अवैध कटाई, अतिक्रमण, वन्य जीव तस्करी तथा वन संपदा की चोरी जैसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण में सहायता मिलेगी। रांची नगर निगम ने मॉनसून के दौरान शहर में जल जमाव से निपटने की व्यापक तैयारी की है। निगम ने सर्वेक्षण के बाद शहर के 108 ऐसे स्थानों की पहचान की है जहां बारिश के दौरान पानी जमा होने की संभावना रहती है। मेयर रोशनी खलखो ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए नगर निगम ने 11 आधुनिक डी सिल्टिंग पंप खरीदा है, साथ ही 11 क्विक रेस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है।
1: 11 लोगों की टीम गठित हम लोगों ने किया है, जिसके माध्यम से जहां पर भी वाटर लॉगिंग हो रहा है वहां पर पूरे तैयारी के साथ पहुंच करके पानी कैसे निकाले उसके लिए वो प्रयास करेंगे। भर में जहां जहां वाटर लॉगिंग होगा वहां वहां ये फोर्स पहुंच करके त्वरित कार्रवाई करेगा।
0: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 307 अंकों की बढ़त के साथ 76,571 पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी लगभग 75 अंकों की बढ़त के साथ लगभग 24,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। आज एफएमसीजी और आईटी के शेयर्स में अधिक खरीदारी हो रही है। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,38,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,52,000 रुपए प्रति किलो है। एफआईएच महिला हॉकी नेशंस कप 2025-26 में भारतीय महिला टीम ने जापान को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। भारत के लिए कप्तान सलीमा टेटे और लाल रेमसियामी ने 1-1 गोल किए। 6 अंकों के साथ पूल में शीर्ष पर चल रही भारतीय टीम का अगला मुकाबला 18 जून को उरुग्वे से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र ने नीट की पुनर्परीक्षा को लेकर 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर लगाया बैन। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन का दिया निर्देश। कोल इंडिया की पहली कोल बेड मिथेन परियोजना के तहत झरिया में अगले एक साल में मिथेन गैस का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य। झारखंड हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के समय राज्य के विभिन्न जिलों में पेड़ों की अवैध कटाई मामले में राज्य सरकार से मांगी जांच रिपोर्ट। स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग में रांची के चान्हो स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय को देशभर में मिला पहला स्थान। राष्ट्रीय रैंकिंग में राज्य के 3 स्कूलों ने बनाई जगह। और एफआईएच महिला हॉकी नेशंस कप में भारतीय टीम ने जापान को 2-0, 2-1 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे और बिल्कुल सही जवाब दिया बहुत सारे श्रोताओं ने कि स्वयंवर फिल्म से इस गीत को लिखा लिया गया है और शशि कपूर मौसमी चैटर्जी पर फिल्माया ये गीत बहुत ही खूबसूरत और बहुत सारे सही जवाब मिले हमें इसके लिए। साथ ही साथ खतों की बात जहां चल रही है वहां पर भी बहुत सारे हमें मैसेजेस मिले हैं। पोस्टकार्ड अंतर्देशीय पर पत्र पर नहीं लेकिन व्हाट्सएप पर अगर किसी से बात नहीं हो रही है तो खत के रूप में ही उसे लिख देती हूँ, वो भी पढ़कर समझकर

वैसे ही लिख देते हैं, फुर्सत नहीं है बात करने की, तो मुझे यही अच्छा लगता है। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत हमारी सगाई से पहले और सगाई के बाद के यादगार पलों पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि सगाई से पहले मेरी होने वाली धर्मपत्नी मेरे लिए अजनबी हसीना ही तो थी, जो वास्तव में मेरे दिल के वीरान राहों पर सपनों की रानी बनकर खिल जाती है। अरे वाह, आपने हमारी इबारत का इस्तेमाल करके कुछ शब्दों को चुनकर बहुत ही खूबसूरत मैसेज हम तक पहुंचाया है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि डिजिटल दौर में जहां संदेश एक पल में पहुंच जाते हैं, वहां खत लिखने का सुख कहीं पीछे छूट गया है, लेकिन आज जब मैंने विविध भारती के फरमाइशी कार्यक्रम के लिए अपने हाथों से एक खत लिखा तो लगा जैसे समय कुछ देर के लिए ठहर गया हो। कागज पर उतरते शब्दों के साथ पुरानी यादें भी लौट आई, वो डाकिये का इंतजार, लिफाफे की खुशबू और अपनेपन से भरे अक्षर। क्या बात है, बिल्कुल सही। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक जिम्मेदारी कुछ इस तरह रही कि कभी प्यार में खत लिखने और पैगाम भेजने का समय नहीं मिला। शादी हो गई, श्रीमती जी बन गई और अब उस मुकाम पर है उम्र के कि इसकी नौबत ही नहीं आ रही है। क्या जमाना था, खत के इंतजार में दिन गंवाते थे और आज कुछ सेकेंड में खत मोबाइल पर आ जाता है। बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि आज की इबारत में सबसे खूबसूरत शब्द उन्हें खुशबू लगता है, ये पहले प्यार की खुशबू। जी हाँ, हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि हमारी वाली हसीना तो कहती है चाय बना रहे हो तो हमें भी पिला देना। क्या बात है, क्या बात है। ये प्यार, मिठास, नोकझोंक, यही तो जिंदगी का फलसफा है और यही जिंदगी में रंग भरता है। चलिए हमारे गीतों की लिस्ट पर पहुंचते हैं। जो अगला गीत अभी आपको सुनवाने जा रही हूं वो है कभी कभी फिल्म से। अब ये तो मैंने आपको बता दिया है, अब सवाल ये है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन उन दोनों का प्रोफेशन क्या होता है, वो काम क्या करते हैं, ये आपको हमें बताना है। इस फिल्म में जो कैरेक्टर, जो किरदार वो निभा रहे हैं, वो काम क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या है, वो हमें बताइए।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर। और इस संदेश से पहले जो गीत अभी आपने सुना वो कभी कभी फिल्म से था, लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में और साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, खयाम का संगीत था। और इसके बारे में हमने एक सवाल आपसे पूछा था, सवाल याद है ना? सवाल ये था कि अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जो इस फिल्म में जिस किरदार में हैं उनका प्रोफेशन क्या है, वो काम क्या करते हैं। तो हम तक कुछ मैसेजेस पहुंचे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कवि शायर का काम करते हैं, वो शायर हैं, लिखते हैं, लेखक हैं। और साथ ही एक और श्रोता ने हमारे लिखा है कि प्रोफेशन तो याद नहीं है लेकिन मेरा ऑल टाइम फेवरेट गीत है तो सुनने में ध्यान है। एक और श्रोता हमारे जवाब देते हैं इस सवाल का कि अमिताभ बच्चन कवि थे और शशि कपूर एक अमीर व्यापारी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म कभी कभी में अमिताभ बच्चन एक शायर होते हैं जो शायरी कविताएं लिखते हैं, बाद में वो दूसरे कार्य यानी कि कंस्ट्रक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं और ऋषि कपूर साहब बाद में उन्हीं के कंस्ट्रक्शन में कार्य करते हैं, क्या ये सही है? थोड़ा थोड़ा सही है लेकिन आधा कह सकते हैं कतरा कतरा सही है और कतरा कतरा पूरी तरह से सही नहीं है। तो इस बारे में और आपके संदेशों का इंतजार रहेगा कि दरअसल उन दोनों का प्रोफेशन इस फिल्म में क्या है।

मुझे लिख भेजिए। साथ ही एक और श्रोता है जो हमें लिखते हैं कि खत लिखना जिसमें वो जज्बात, वो प्यार इजहार आजकल के फोन या सामने कहे जाने से नहीं आते हैं। एक एक शब्द पढ़ने से जो सिहरन, जो रोमांच होता है वो कहीं भी नहीं मिलता। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि वैसे तो जिन गीतों को नहीं सोचा था वो अगर बजने लग जाएं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। बिल्कुल सही बात। तो आप मुझे लिख भेजिए कभी कभी में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के किरदारों का क्या प्रोफेशन है, क्या काम वो करते हैं उस फिल्म में। और साथ ही हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत यादों की बारात से अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा था, आर डी बर्मन की तर्ज थी। तो व्यवसाय पर, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के व्यवसाय पर बहुत सारी बातें आई हैं यहाँ पर, बहुत सारे संदेश आए हैं कि उनका क्या प्रोफेशन था, वो क्या काम करते थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी मैं अमिताभ व्यवसायी हैं और शशि कपूर सिविल इंजीनियर। एक और श्रोता लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन उसमें शायर और लेखक बने हैं और शशि कपूर आर्किटेक्ट बने हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि कभी कभी फिल्म में अमिताभ बच्चन एक कवि के रूप में होते हैं, बाद में वो अपने पिताजी का बिजनेस संभालते हैं, कोयले की खदान का काम संभालते हैं और वहीं शशि कपूर इंजीनियर या आर्किटेक्ट होते हैं। अभी भी पूरा जवाब नहीं मिल पाया है, मेरे ख्याल से और मैसेजेस आने देते हैं इस बारे में, क्योंकि ये बड़ा रोचक होता जा रहा है। जी हाँ, पहले वो शायर होते हैं लेकिन बाद में अपने पिताजी का बिजनेस संभालते हैं और सिविल इंजीनियर का काम करते हैं, और साथ ही साथ जो शशि कपूर होते हैं वो आर्किटेक्ट होते हैं, यानी कि वो नक्शे बनाते हैं मकानों के ताकि वो घर बन सके, और अमिताभ बच्चन सिविल इंजीनियर का काम करते हैं जहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि उन नक्शों के अनुसार बिल्डिंग, घर, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को पूरा कर पाएं, ऐसा ही कुछ। पत्रों की बात चली थी तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जब वे पाठशाला में पढ़ते थे तब खत लिखने का बड़ा शौक था, सभी रिश्तेदारों को खूबसूरत खत लिखा करते थे। बाद में उन्होंने एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आए वो, और वहाँ उनकी एक टीचर से दोस्ती हो गई, और उसके बाद बहुत लंबा चौड़ा ये मैसेज है, वहाँ पर भी वो खूबसूरत खत लिखते थे। तो ये जो खत लिखने का सिलसिला है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्रेरणादायक बातें भी लिखते थे, तो ऐसा उनका खतों का सिलसिला चलता रहा। उनके खत आज भी इनके लिए यादगार विरासत की तरह है।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत बसेरा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा और आरडी बर्मन की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खत तो हमने बहुत लिखे हैं पर अब नहीं लिखते, और काफी दिनों के बाद अभी 15 दिन पहले ही मनचाहे गीत के लिए विविध भारती में पत्र लिखा, अभी तक शामिल नहीं हुआ। बिल्कुल शामिल होगा, आप बस खत लिखते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं उस गीत के बारे में, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। इस गीत के स्टार्टिंग में कांच के ग्लास पे जो संगीत इजाद किया गया है आरडी बर्मन द्वारा, वो काबिले तारीफ है, और वो भी अक्सर किचन में कांच के बर्तनों पर ऐसी किसी धुन की तलाश में रहते हैं और बहुत मजा आता है। ये गीत उन्होंने जहन में सोचा था, ऐसा उन्होंने लिखा है। जी हाँ, यादों की बारात जिस सिनेमा हॉल में देखी थी वो सिनेमा हॉल टूटकर मॉल में परिवर्तित हो गया है, और अब तो वक्त अलग है, लेकिन उस वक्त 160 रुपए में फिल्म देखी थी। 160 रुपए का टिकट आया था, इतनी सस्ते में उन्होंने ये फिल्म देखी थी। जी हाँ, वक्त बदलता है बहुत कुछ। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उनकी धर्मपत्नी ने उन्हें कॉल किया है ऑफिस में और कहा है कि ये आप जो मैसेजेस लिख रहे हैं, संदेश लिख रहे हैं, वो मुझ तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि दोनों ही इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, फैमिली मेंबर्स की तरह बन गए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब परिवार के सभी सदस्य इस प्रोग्राम को, विविध भारती को सुनते हैं। जी हाँ, फिलहाल आते हमारे अगले सवाल पर। गीत तो मैं आपको जरूर सुनवाऊंगी, लेकिन अभी जो गीत आपने सुना बसेरा फिल्म से, जहां पर सवेरा हो बसेरा वही है। बसेरा मतलब घर, लेकिन इसका अगर दूसरा मतलब देखा जाए तो जहां आपको सुकून मिलता है, जहां आपका दिल आनंदित हो जाता है और मन बसता हो। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपका मन बसता है? जरूरी नहीं कि वो घर ही हो सकता है, कोई जगह, कोई ऐसी जगह जहां आप जाकर एकदम आनंदित हो जाते हो, या आपको वो सुकून मिलता हो, या कोई ऐसी जगह जहां आप घूम कर आए हो, या कोई पुरानी याद, जहां पर भी आपको लगता है कि वो आपका बसेरा है, मुझे लिख भेजिए। इंतजार रहेगा आपके संदेशों का। फिलहाल ये अगला गीत इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।

मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे। इस गीत में दो रास्ते फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खत लिखने का वो जमाना बड़ा ही खूबसूरत था। किसी के खत का इंतजार ऐसा होता था जैसे कि किसान बेसब्री से बारिश का इंतजार करता हो। वो मनचाहा खत मिलने पर खुशी का ठिकाना नहीं रहता था, मानो हमने बहुत बड़ी फतेह हासिल कर ली हो। काश वो खत लिखने का जमाना दोबारा लौट आए। फिलहाल आप अपने लिए खत लिख सकते हैं, अपने जो करीबी हैं उनके लिए लिख सकते हैं, और विविध भारती तो है ही आपके खतों के इंतजार में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने आखिरी खत कब लिखा ये याद नहीं, लेकिन बहुत सालों पहले पिताजी को खत लिखा था और अभी तक संभाल के रखा है, और पत्नी को लिखे सारे पत्र भी पिछले कई कई सालों से उन्होंने सुरक्षित रखे हुए हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि जब भी वो कोरे कागज पर स्याही बिखेरती हैं तो उन्हें एक अजीब सा सुकून मिलता है, एक ठहराव महसूस होता है। खत लिखते समय भागती हुई दुनिया जैसे रुक जाती है। हर एक शब्द को चुनना और उसे कागज पर उतारना एक ध्यान की तरह महसूस होता है। अपनी उंगलियों से पेन को पकड़कर कागज पर दबाना अंदर के उमड़ते हुए जज्बात को एक आकार देता है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि 11-12 गीतों की लिखी हुई इबारत में से पांचवे नंबर पर ये जो गीत है रेशमी जुल्फें, ये शामिल हुआ है, इन्हें अच्छा लग रहा है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि लाखों पुराने रखे हुए खतों की दराज जब भी खुलती है तो उनकी पीली पड़ चुकी रंगत और खुशबू पुराने दौर में ले जाती है। उन्हें दोबारा पढ़ना बीते वक्त के किसी अजीज शख्स को दोबारा से गले मिलने जैसा लगता है, किसी खास व्यक्ति के गले मिलने जैसा लगता है उन्हें। हाँ जी, बिल्कुल। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान पशु पक्षी के रात्रि को आराम के रहने के स्थान को बसेरा कहते हैं, और एक श्रोता लिखते हैं कि भोपाल की झील के किनारे बसेरा है उनका, जहां उनकी सारी यादें ताजा होती है और उन्हें भोपाल सिटी से बहुत प्रेम है।

येसुदास को आप सुन रहे थे। इस गीत में छोटी सी बात फिल्म का नाम है और साथ ही दिया था आशा भोसले ने इस गीत में। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारा बसेरा बताया है कि जहां जहां उन्हें अच्छा लगता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि जहां पूरे परिवार को एक साथ एक दिल से आत्मिक संतोष और शांति मिलती है वहीं पर बसेरा होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि खत के नाम पर बहुत से वाक्य याद आ रहे हैं पर क्या लिखें और क्या ना लिखें। जी हाँ, फिलहाल इजाजत चाहेंगे आपसे इस प्रोग्राम में मैं अनुराधा, जिसने आज इस सफर में आपका साथ दिया। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, आप बने रहें विविध भारती के संग।

आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं जल और जल प्रदूषण पर। दोस्तों, विकास और तकनीक के इस युग में औद्योगिकीकरण बढ़ा है और शहरीकरण भी खूब हुआ है। वाहनों की तादाद खूब बढ़ी है जिससे जीवाश्म ईंधन का प्रयोग ज्यादा होने लगा है। जंगलों पेड़ों की कटाई चरम पर है। पेड़ों की कटाई के वक्त शायद हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता कि एक दिन काटे गए ये वृक्ष हमसे बदला लेंगे। इनकी कटाई से धरती माँ रुष्ट होंगी और अब धरती का कोप हम लगातार देख रहे हैं। चलिए इस बरस थोड़ी कोशिश करें इन बातों को नियमित रूप से अमल करने की।

दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे विश्व में पानी की कमी हो रही है और साथ ही जल प्रदूषण का खतरा भी सर उठा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2013 को अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष घोषित किया था, जिसके तहत सभी देशों को जल आपूर्ति हो सके इसका प्रयास किया गया। खेती में पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। अब तो बहुत सारे देशों और प्रांतों में ये भी ध्यान रखा जाता है कि ऐसे बीजों का प्रयोग किया जाए जिससे कम जल में ज्यादा उत्पादन किया जा सके। इन सब बातों के मूल में है जल, यानी पानी कीमती है, ये घट रहा है, इसे बचाएं, पानी की हिफाजत करें।

दोस्तों, झीलों, नदियों और समुद्र के पानी लगातार प्रदूषित हो रहे हैं। जल प्रदूषण जल में रहने वाले जीवों, पादपों और संपूर्ण जैविक तंत्र के लिए विनाशकारी है। जल प्रदूषण के कारण क्या है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। नदियों में जानवरों या इंसानों की मृत काया को यूं ही प्रवाहित कर देना, इसके अलावा औद्योगिक कचरा को नदियों, जलाशयों में फेंक देना, इससे बहुत बड़े स्तर पर जल प्रदूषण होता है। ये प्रदूषित जल हमारे घरों में रिसाइकल के बाद पीने के काम आता है। प्रदूषित जल पीना स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है, ये हम सब जानते हैं।

0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री

0: भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
1: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में जी 7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि जी 7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
0: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
1: बिल्कुल जागृति, देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले डिजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
0: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि यह प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों

0: से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
1: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
0: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
3: UNSC reform would be grossly inadequate.
4: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश

0: प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। AIR चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

तेरे घर के सामने, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और एस टी बर्मन की तर्ज थी।

0: ये नजर लौट कर फिर आएगी। आप सुन रहे थे आशा भोसले को इस गीत में, मेरे सनम फिल्म का नाम था। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

गंगा की लहरें, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। चित्रगुप्त ने संगीत दिया था और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी जंगली, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के मोराबादी मैदान में झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने जैविक उत्पादों और कृषि व्यापार को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाएं बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़कर विदेशों तक फल बेच रही हैं। सीएम ने कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्योगों और निर्यातकों को सरकार के इस प्रगतिशील सोच में सहयोगी बनने का आमंत्रण दिया।
1: आज ये कृषि व्यापार मेला जिस तरीके से समय काल बीत रहा है, हमारे कृषक वर्तमान में जो कंपटीशन की व्यवस्था है और आज देश दुनिया में किस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से नए तकनीक के साथ हम अपने किसानों को मजबूत कर पाए, इसका एक छोटा सा रूप आज इस मेले में उतारने का प्रयास सरकार की तरफ से हुआ है। तो आज कई ऐसे समावेशी के साथ हम काम कर सकते हैं जहां अपने किसान को अपने पैरों पर खड़ा होने में मजबूती प्रदान करेगा।
0: राज्य में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। रणनीति के तहत एनडीए ने अपने सभी विधायकों को रांची के एक बड़े होटल में शिफ्ट कर दिया है। मतदान के दिन तक सभी विधायक यहीं रहेंगे, जहां उन्हें वरीयता क्रम के अनुसार वोट डालने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने अपने पलामू दौरे के दूसरे दिन मेदिनी नगर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने भाषा विवाद और पेपर लीक मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। श्री दास ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विकसित भारत का संकल्प दोहराया।
2: सरकार में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर देवघर में नमो एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे 22 जून को इसका शुभारंभ करेंगे। आधुनिक उपकरणों से लैस यह एम्बुलेंस सेवा साल के 365 दिन 24 घंटे पूरी तरह निःशुल्क रहेगी, जिससे स्थानीय मरीजों को त्वरित आपातकालीन चिकित्सा मिल सकेगी। प्रादेशिक समाचार आप

0: आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग के बड़का गांव में बादम कोल खनन परियोजना के बीजीआर कंपनी कार्यालय पर आज सुबह अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। सुबह करीब 5 बजे हुई इस घटना में भीड़ ने परिसर में जमकर तोड़फोड़ की। बड़का गांव थाना प्रभारी दीपक सिंह और एसडीपीओ ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दोषियों की पहचान कर जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग के दारू थाना प्रभारी ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक सराहनीय पहल की है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर वॉल पेंटिंग अभियान चलाकर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। दीवारों पर चित्रों के माध्यम से बाल विवाह रोकने, सड़क सुरक्षा, नशा मुक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया जा रहा है। थाना प्रभारी के अनुसार यह अभियान आम लोगों को जागरूक करने में बेहद प्रभावी साबित हो रहा है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर यात्रियों का पारंपरिक स्वागत हुआ और रक्तदान शिविर, छऊ नृत्य तथा वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। उत्कृष्ट कार्य के लिए महिला कर्मचारियों और सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। एयरपोर्ट निदेशक विनोद कुमार ने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और सुखद अनुभव देने की प्रतिबद्धता जताई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 विश्व कप मुकाबले में 36 रन की पारी खेलते हुए टी20 विश्व कप इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। हरमनप्रीत ने पूर्व कप्तान मिथाली राज के 726 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बस कुछ ही पलों में।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ है
2: आरती श्रीवास्तव।
1: आप सभी को हमारा
2: नमस्कार।
1: नमस्कार, कैसी हो आरती?
2: बिल्कुल ठीक है। बस इस गर्मी में जितने ठीक हो सकते हैं उतने ठीक है।
1: बिल्कुल सही कहा, इस गर्मी में हम जितने अपने आप को अच्छा रख सकते हैं उतना हमें रख लेना चाहिए, वरना तो तबीयत खराब होते देर भी नहीं लगती।
2: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से ना बहुत परेशानियां हो रही हैं, तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अच्छा ध्यान रखिए।
1: हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, अपने पढ़ने का ध्यान रखना है, सोने का, कब सोते हो कब उठते हो,
2: और कोशिश करिए
1: सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। और ऐसे में कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप घर पर रहें। ठीक है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, वो तो है ही, इसके अलावा फालतू बाजार में जो घूमने की हमारी आदत होती है वो हमें थोड़ा बदलनी है।
2: बहुत जरूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकलिए और पूरे चीजों के साथ निकलिए, यानी कि अपने अच्छे से अपना सिर ढक के निकलिए, एक गीला कोई कपड़ा है उसको अपने सर पे रखिए, या इस तरीके की चीजें आप करके, और पानी की बॉटल जरूर लेके जाए, इस तरीके का आप लेके चलिए, तो जिससे कि आपको गर्मी से बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, तबीयत ना खराब हो।
1: और घर पर बैठकर पढ़िए ना, सबसे अच्छी बात है कि दिन हो या रात हो या शाम हो, अगर हमने पढ़ने की आदत डाल ली है ना आरती, तो पढ़ना जो है वो एक बेहद शानदार आदत है। और ये जो किताबें हैं वो हमारे ज्ञान तो खैर बढ़ाती ही है, इसके अलावा हमें नई दुनिया में ले जाती है और हमारा तनाव कम कर देती है और हमारे मन को सुकून देती है।
2: बिल्कुल, और हमारा शब्द भंडार भी बढ़ा देती है। और जितना हम किताबों से जान सकते हैं ना, उतना मोबाइल में देख के या फिर बाहर, इतना ज्यादा इतनी गर्मी है, इतनी परेशानी है, तो वहां बाहर जाके अपनी तबीयत खराब करने से बेहतर है हम घर में रह के थोड़ा अच्छा साहित्य पढ़ें या जो भी हमारा इंटरेस्ट है हम उसको पढ़ें, जिससे कि हमें अच्छा लगेगा।
1: खासतौर से गर्मी को कोसने से अच्छा है कि हम पढ़े, कहानी पढ़ सकते हैं, उपन्यास पढ़ सकते हैं, आत्मकथाएं पढ़े, जीवनी पढ़े,
2: पढ़ के थोड़ा बहुत उसको लिखने की कोशिश करें कि आपने क्या सीखा या क्या आपको उसमें अच्छा लगा, उस चीज को आप थोड़ा सा नोट्स बनाना शुरू करें, देखिए आपकी खुद की एक किताब तैयार हो जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तो हमें कितने मिल गए हैं आजकल, बस उसका उपयोग करना हमें आना चाहिए और हमें सीखना भी चाहिए। तो चलिए बताइए आज क्या क्या कार्यक्रम आप लेकर आई हैं।
2: आज हम लेके आए हैं मानसिक मजबूती आपको किस तरीके से अजय बना देती है। अजय मतलब ये, आप अगर देखिए मन के जीते जीत होती है, अगर आपको आपका मन आपका मजबूत है ना, आप उससे नहीं डिग्र सकते अगर, तो फिर आपको कोई भी हरा नहीं सकता।
1: सबसे बड़ी बात है हमारा मन कितना सशक्त है, अगर मन के हारे हारे, अगर मन हार गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। आप भी बताइए किस तरीके से आप अपने
1: मन को सशक्त बनाते हैं, हमारे श्रोता बता सकते हैं हमारी
2: किस तरह से, अगर कोई आपको कहीं पे ना कहने का मौका आता है तो आप उसको पूरी अपने शक्ति से ना कह पाते हैं या फिर हिचकिचा जाते हैं।
1: और कई बार क्या होता है आपके घर परिवार में भी जो है बहुत सारी बातें होती है पति पत्नी के बीच में, ऐसे में कई बार स्त्रियां जो है मन कच्चा कर लेती हैं कि अरे भाई आज तो पतिदेव ने ऐसे डांट दिया, आज तो सास ने ऐसे कह दिया, ससुर ने ऐसे कह दिया, तो आप अपने मन को कितना मजबूत बनाती हैं और डटकर इन चीजों का, इन समस्याओं का मुकाबला कैसे करती हैं, बताइए अपने जीवन से जुड़े कुछ पहलू।
2: बिल्कुल, और आज हम मुहावरों के दिनों में बात करेंगे, दूर के ढोल सुहावने।
1: ये तो होता है,
2: अक्सर होता है ना हम लोगों की, दूसरे को सामने देख के हम कहते हैं कि अरे ये कितना अच्छा, ये तो कितनी अच्छी जॉब कर रहा है या कितना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम उसके पीछे का संघर्ष नहीं जान पाते कि किस तरह से वो वहां तक पहुंचा।
1: बिल्कुल, उसकी जिंदगी में क्या क्या घटा, कैसे घटा, उसने कैसे उसका मुकाबला किया, इन सब बातों को नहीं जानते हम, केवल जो सामने हमें दिख रहा है वही हमें सच्चा लगता है।
2: जी, तो बिल्कुल उसके बारे में बात करेंगे।
1: ये भी बताएं कि इनकी जिंदगी में दूर के ढोल
2: किस तरीके से चीज को समझते हैं, अपना नजरिया बताएं। और साथ ही हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत, आज हम मेघा मलिक जी के बारे में बात करेंगे।
1: क्या बात है,
2: जो है डिजाइनर पीपल की संस्थापक, और हल्की फुल्की बातें भी कुछ करेंगे ना।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, हल्की फुल्की बातें तो जिंदगी में बहुत जरूरी है,
2: जबकि विषय जो है ना वो हल्की फुल्का नहीं है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस विषय है।
1: आपने कंट्रास्ट कर दिया है, बातें हल्की फुल्की रही
2: है, अक्सर
1: विषय रखा है
2: जाती है
1: घरेलू बजट, बाप रे,
2: जिसपे अक्सर तकरार हो जाती है पूरे घर में, मतलब एक राय कोई नहीं हो पाता इस विषय।
1: बिल्कुल सही कहा, इसके लिए जो पता है जो गृहिणियां है ना वो सबसे ज्यादा परेशान हो जाती है।
2: बिल्कुल, और आज एक महत्वपूर्ण दिवस भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, तो उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे।
1: ठीक है, तो हमारे श्रोता भी लिखे, और अभी हम सुन लेते हैं गीत।
2: गीत जी,

0: हाँ, तो आरती बहुत ही सुंदर कव्वाली अभी हमने हमारी सखियों को सुनाई है। उम्मीद करते हैं इस दोपहरी में उन्हें अच्छा भी लगा होगा।
1: बिल्कुल, थोड़ा सा एक ताजगी आ गई होगी।
0: थोड़ा सा एक्टिव हो गई होंगी ये सुनकर, है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो आज हम बहुत सारे दिवस भी मना रहे हैं, जिसमें एक है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस।
1: जी, तो इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस को हम क्यों जब मनाते हैं इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है।
0: हाँ, हाँ,
1: तो जब कोई व्यक्ति अपने घर परिवार से दूर रहकर काम करता है और अपनी कमाई का एक हिस्सा परिवार को बाहर से भेजता है, तो उसे प्रेक्षण या रेमिटेंस कहा जाता है।
0: हाँ बिल्कुल, ये परिवार को भेजा गया धन केवल आर्थिक सहायता नहीं होता आरती, बल्कि उसमें प्रेम, जिम्मेदारी और परिवार के प्रति समर्पण की भावना शामिल होती है। और हर वर्ष आज के दिन मनाए जाने वाले इस दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यानी IFAD ने की थी।
1: जी, और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई। इसका उद्देश्य दुनिया भर में काम करने वाले जो प्रवासी श्रमिक हैं, वो अपने परिवारों को उनके द्वारा भेजे जाने वाले धन के महत्व को पहचान देना और उनके योगदान को सम्मानित करना था।
0: हाँ, बाद में यूनाइटेड नेशंस ने भी इस पहल को समर्थन दिया और जिससे इसे वैश्विक स्तर पर व्यापक पहचान मिली। ये दिन उन करोड़ों लोगों को सम्मान देने के लिए चुना गया है जो घर से दूर रहकर अपने परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करते हैं।
1: बिल्कुल, और जैसा कि हम जानते ही हैं कि हर दिवस किसी न किसी बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों के योगदान को सम्मान देना, परिवारों और समुदायों के विकास में रेमिटेंस की भूमिका को उजागर करना।
0: हाँ, और सुरक्षित धन प्रेक्षण सेवाओं को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास लक्ष्यों में रेमिटेंस के योगदान को रेखांकित करना भी इसका खास उद्देश्य है। और आज दुनिया भर में करोड़ों प्रवासी श्रमिक नियमित रूप से अपने परिवारों को धन भेजते हैं।
1: जी, और ये धन केवल परिवारों की दैनिक जरूरतों को ही पूरा नहीं करता, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और छोटे व्यवसायों में निवेश का भी आधार बनता है। इसीलिए इस प्रेक्षण को या रेमिटेंस को कई देशों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ भी माना जाता है।
0: बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस हमें ये भी याद दिलाता है आरती कि भेजी गई हर राशि के साथ जुड़ी होती है उम्मीदें, है ना, रिश्ते और बेहतर भविष्य की कामनाएं। देखो, जब हमें कोई धन भेजता है, पैसा भेजता है हमारे जीविकोपार्जन के लिए, हमारी जरूरतों के लिए, तो सोचिए हमारी फीलिंग्स कैसी होती हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारे परिवार में भी जब हम स्टूडेंट लाइफ में बाहर पढ़ने गए और हमारे माता पिता ने हमारे लिए पैसे भेजे, तो कितनी खुशी होती
1: होती कि ना कि अब चलो ये जरूरतें हमारी जो
0: पूरी कर लेंगे, है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो कितने उन लोगों को उसकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं और अपने घर परिवार से दूर रहकर अपनों के सपनों को पूरा करने वाले हर प्रवासी श्रमिक को इतनी मेहनत करके अपने परिवार का जो पोषण कर रहा है उसके प्रति भी हमें सैल्यूट करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं ऐसे लोगों को।
0: बिल्कुल,
1: तो चलते चल के एक सुनते हैं गीत ना।

0: तो आरती महीना तो जून का है।
1: जी हाँ, पसीना भी बहुत आ रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा, और इसी जून के महीने में हमें ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से अपने आप को बचाए रखना है,
1: इस पसीने से भी बचा के रखना है अपने को।
0: तो हमारे श्रोता लिखते हैं, कुछ लोगों ने लिखा भी है, बताओ क्या क्या लिखा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बताइए।
0: ये लिखते हैं कि ये दिन उन मजदूरों के लिए है जो अपने परिवार से दूर रहकर कमाई के लिए बाहर जाते हैं। ये दिन उनके त्याग के प्रति सोचने पर हमें मजबूर करता है कि किस तरह से अपने परिवार से दूर रहकर दुखी हैं, लेकिन फिर भी कमाने के लिए उन्हें अपने परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। और ये दिन उनका सम्मान देने, उनके त्याग के बारे में थोड़ा सा सोचने पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतिवर्ष ये दिन इस दिन मनाया जाता है 16 जून को, और ये दिन विदेशों में काम कर रहे प्रवासियों द्वारा अपने मूल देश में रहने वाले परिवारों को भेजे आने वाली धनराशि यानी कि रेमिटेंस और उनके वित्तीय योगदान को सम्मानिता देने और सम्मानित करने को लेकर समर्पित है। और ये दिन 20 करोड़ से अधिक प्रवासी कामगारों के त्याग और प्रयास को सराहता है जो दूर रहकर भी अपने लगभग 80 करोड़ परिवार के सदस्यों की आजीविका और भविष्य का निर्माण करते हैं। और इसका उद्देश्य जो है वो भेजने की जो रेमिटेंस भेजने की लागत को कम करना और प्रवासियों को बैंकिंग तथा सुरक्षित औपचारिक माध्यमों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है।
0: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि प्रवासियों द्वारा अपने परिवार और मूल देशों के सतत विकास में किए गए महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान को मान्यता देना आज के दिन का उद्देश्य है। और प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन लाखों परिवारों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास और आजीविका का एक मुख्य आधार है। और यह दिवस पहली बार 2015 में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा घोषित किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत अच्छे विचार हमारे श्रोताओं ने साझा किए हैं हमारे साथ। और आरती, और देखा आपने कि जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है अपने परिवारों के लिए मेहनत करते हैं, है ना, मशक्कत करते हैं और उनके लिए धन जुटाते हैं, दूर रहकर भी अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, सोचिए कितना मानसिक रूप से मजबूत हो जाते होंगे वो लोग, और कितना शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत बना के रखते होंगे, है ना।
1: और बहुत जरूरी भी है, अगर हम दिमाग से अपने दिमाग का संतुलन बना के चलेंगे और छोटी छोटी जो परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं उनसे घबराने की बजाय उनका सामना करेंगे तो बिल्कुल भी, क्योंकि ना बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे सामने आती है, क्योंकि भाई जीवन है, उसमें कठिनाइयां तो आपके सामने आएंगी। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हमें अलग चलना है या हमारा जीवन बिल्कुल सुखी क्यों नहीं है, है ना, या उसकी तरह क्यों नहीं, जो सामने वाला जिसको देख के आप कह रहे हैं ना उसके जीवन में भी

0: कठिनाइयां होंगी, अब कोई जरूरी नहीं है आपको पता हो उस चीज़ के बारे में।
1: आपने उसकी डार्क साइड देखी नहीं ना, आपने खाली उसका सामने जो जिस तरह से हंसना बोलना और हमें लगता है कितना सुखी जीवन है, कितना मस्त बंदा है ये, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष है, पीछे के जो दुख है, पीछे की जो कहानियां हैं, वो हम नहीं जान पाते।
0: बिल्कुल, इसी को लेकर छोटी सी कहानी आपको बताऊंगी कि देखिए चील जो होती है ना, कितना बड़ा पक्षी होता है ना, और उस तक पहुंचने की कोई सोचता भी नहीं कोई पक्षी, क्योंकि सब डरते हैं उससे। लेकिन एक पक्षी है जो उसको परेशान करता है, वो है कौआ। वो जर उसको चोच मार कर परेशान करने की कोशिशें करता रहता है, लेकिन वो क्या करता है पता है, वो उस ध्यान नहीं देता उसकी तरफ, क्योंकि वो अपनी एनर्जी है जो है ना वो उस तक उस पर वेस्ट नहीं, उस पर बिल्कुल भी जाया नहीं करता। वो अपनी उड़ान को ऊपर ऊंचा कर देता है, वो इतना ऊंचा उठ जाता है
1: कि कौआ
0: वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। तो वो मतलब उससे जूझा नहीं, उससे उसने कोई बात नहीं करी, उसके ऊपर अपनी
1: डिस्टर्ब नहीं हुआ, अपना संतुलन नहीं बिगाड़ा,
0: नहीं आता किसी को देखे, बस उसने अपनी उड़ान को इतना ऊंचा कर लिया कि वो उस तक पहुंच ही नहीं पाया।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि आपको जो है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो तंग करने वाले, परेशान करने वाले है ना, बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आपको अपना लक्ष्य बनाए रखना चाहिए कि नहीं, आपकी उड़ान चील जैसी होनी चाहिए, कि आपको इतना ऊंचा उड़ना है कि कौवा खुद ब खुद अपनी उड़ान हटा ले, है ना।
0: बिल्कुल, वो हार मान के अपने आप ही हट जाए।
1: ये होना चाहिए और होता भी है। कुछ लोग जो महान बने हैं उन्होंने ऐसे ही तो महानता अर्जित नहीं की ना आरती। तो जीवन में हर नई चुनौतियों को, हर नए संघर्ष को और हर नई परिस्थितियों को जो है वो हमें वो हमारा इंतजार कर रही होती है, और कुछ लोग छोटी सी कठिनाई से, छोटी सी बातों से, छोटे से दुख से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी से बड़ी समस्या का सामना भी मुस्कुराकर कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है केवल परिस्थितियों का नहीं है, बल्कि मानसिक मजबूती का होता है।
0: बिल्कुल, और मानसिक मजबूती व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित रहने, सही निर्णय लेने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये किसी जादू की, ये मतलब किसी जादू की तरह नहीं आती कि एकदम से किसी ने आपको मंत्र पढ़ दिया और आपने एकदम
1: कि आपके पास जादू की छड़ी आई, आपने गोल गोल घुमाया, खुल जा सिम सिम और ताला खुल गया।
0: बिल्कुल, ये ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा, बल्कि अनुभवों, धैर्य और सकारात्मक सोच से विकसित होती है। प्रतिस्पर्धा, तनाव, अपेक्षाएं और तेज रफ्तार जीवन कई बार मन को विचलित कर सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, और मानसिक मजबूती का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति कभी दुखी ना हो या उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। इसका जो मतलब है वो ये, दुख, निराशा और कठिनाइयों के बीच भी हम खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहें। गिरना जो है जीवन का हिस्सा है आरती, लेकिन हर बार उठकर खड़ा होना मानसिक शक्ति की पहचान होती है।
0: बिल्कुल, और अगर हम धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को अपना साथी बना लें, तो कोई भी कठिनाई हमें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। क्योंकि अजय वो नहीं होता जो कभी हारता नहीं, बल्कि वो होता है जो हर हार के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। जी, और एक बात का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए कि जिस भी चीज से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है, वो ही हमारे ऊपर हावी होकर हमें अंदर से कमजोर बनाती है। क्योंकि वो हमारी कमजोरी का हमारा वीक पॉइंट बन जाती है ना, कि और वो अगर किसी को पता भी चल जाए ना,
1: तो उसका फायदा उठाया जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि अपनी कमजोरी मत बताइए किसी को, इसीलिए कहते हैं।
0: तो इतने कमजोर बनिए ही मत, किसी भी कमजोरी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए।
1: बिल्कुल,
0: उसका सामना करिए डट के, तो वो कमजोरी आपकी कमजोरी रहेगी ही नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आरती, कि कोई कितना भी उकसाए, कोई कितनी भी कोशिश क्यों न करे, हमें शांत रहना चाहिए। उकसाने वाला हमारी बुरी प्रतिक्रिया चाहता है और हमें वो बिल्कुल नहीं देनी है, शांत रहना है। और अगर किसी को किसी भी बात के बारे में बताना है तो उसे बहुत विस्तार मत दीजिए, बल्कि जो सच है उतना बताइए, क्योंकि ज्यादा बोलना भी जो है फिर उसमें झूठ मिलाना पड़ता है, झूठ की मिलावट सी लगती है। तो आप दो टुक बात करें, जो सच है वो कह दे, फैक्ट्स जो है, और नहीं तो चुप रहे।
0: बिल्कुल, बहुत ज्यादा आप विस्तार से उसे बताने की कोशिश मत करें,
1: अपनी सफाई देना।
0: हाँ, उसको वही सफाई ज्यादा अपनी। और साथ ही अगर हम किसी बात से सहमत नहीं है तो सीधे ना कहना जरूरी है, उसके लिए बहुत ज्यादा तर्क देने की भी जरूरत नहीं है कि इसलिए उसलिए, है ना। तो सिर्फ ना कहना काफी है, ये हमारे अंदर की मजबूती को दिखाता है। अगर कभी कोई बहस हो जाए या किसी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देनी है तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए।
1: होता क्या है, हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। हाँ, वहीं पर हम गलत हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया हमारे गुस्से की वजह से आ सकती है, या हमारे अंदर जो इमोशंस हो रहे हैं, जो भावनाएं आ रही ना, उसकी वजह से हो सकती है। हम जब ठंडे दिमाग से प्रतिक्रिया देते हैं तो वो बिल्कुल अलग होती है,
1: शांत हो जाते हैं। कई बार तो प्रतिक्रिया देने का मन भी नहीं करता, जब आप शांत रहते हैं, अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं ना आरती, तो लगता है अरे जाने दो ना, क्या पड़ा इन बातों में। और आपने तुरंत प्रतिक्रिया दी नहीं तो चार बातें गलत आपके मुंह से निकली नहीं, क्योंकि उस वक्त आपके भीतर बहुत सारी भावनाएं जो है घूम रही होती हैं और आपको समझ नहीं आता कि आप क्या कहने जा रहे हैं, तो थोड़ा रुककर सही होकर बोलना जो है वो आपकी आंतरिक मजबूती को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी कोई मुश्किल परिस्थिति में हो अपने को बचाव की स्थिति में लाकर घबराने की बजाय हमें चाहिए कि हम बिना घबराए सामने वाले से प्रश्न करें और खुद को मजबूती के साथ प्रस्तुत भी करें।
0: बिल्कुल, क्योंकि जहां हम थोड़ा सा भी पीछे हटने लगते हैं ना, वो एक हिसाब होता है ना कि आप आक्रमण की मुद्रा में रहे हैं ना कि डिफेंस में। जहां हम डिफेंस में अपने को बचाव की स्थिति में ले आते हैं ना, वहीं हम पे लोग हावी होने लगते हैं। तो आप ऐसा स्थिति अपने आपको कभी अपने लिए मत लेकर आइए। तो आप प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए, अगर आप हम पे ऐसा कुछ कह रहे हैं, हमारे लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं, ये क्यों, कैसे, ये जरूर आप पूछिए।
1: बिल्कुल, सवाल पूछने, प्रश्न खड़े करने बहुत जरूरी हैं।
0: बिल्कुल,
1: और उसके बगैर अगर आपने अपने आप को अपना कदम पीछे खींच लिया तो लोग आपको कमजोर समझकर बस वहीं पर आप पर वार भी कर देते हैं।
0: बिल्कुल, फिर हम अगर सही भी होंगे ना तो भी कोई नहीं,
1: गलत माने जाते हैं। इसलिए किसी की बात पर आंख बंद करके एक तो विश्वास नहीं कीजिए, और अपनी बात को मतलब ये सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूँ और सामने वाला क्या सुन रहा है। हमें धोखेबाजी से भी बचाना है और कभी भी अपनी भावनाएं हर किसी के साथ साझा नहीं करनी, क्योंकि हर बार हर कोई हमारी भावनाओं को आदर से नहीं देखता होता। क्या हम इमोशनल होते हैं और हर एक को अपनी बात कह देते हैं।
0: बिल्कुल, और मतलब किसी के ऊपर भी विश्वास मत करिए कि हाँ हमने ये कह दिया कि नहीं नहीं हम आपकी बात को नहीं करेंगे। अगर उसने कभी भी किसी इमोशन में आके कह दिया तो फिर आपकी परेशानी अपनी
1: खड़ी हो, सारी परेशानी खड़ी हो जाती है, फिर आप अपनी सफाई देने लगते हैं। लेकिन इस वक्त हमें सफाई ये देनी है आरती,
0: अंतराल का समय हो गया है,
1: एक छोटा सा अंतराल लेते हैं।

0: तो अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बात क्या चल रही थी?
1: बात हम मानसिक मजबूती की कर रहे हैं तो और उसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो इस हर किसी के सामने अपनी भावनाओं की मुट्ठी को मत खोलिए। और हाँ, जब कोई बहुत तेज आवाज में और गुस्से से बात कर रहा हो तो खुद को शांत और संयत स्वर से बात करने पर वो धीरे धीरे हमारी आवाज के स्तर पर आने लगेगा। अपनी किसी भी सही बात के लिए 10 लोगों की हामी का इंतजार मत करिए।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: क्योंकि ना देखिए, जब हम बहुत तेज आवाज में कोई हमसे बात कर रहा हो ना, तो जब हम अपने बिल्कुल संयत स्वर से धीरे और जैसे हम बोलते हैं उस हिसाब से बात कर रहे होते हैं ना, तो उसको भी लगता है ना कि अरे सब मुझे क्यों देख रहे होंगे कि मैं ही इतनी तेज आवाज में चिल्ला के बात कर रहा हूँ और सामने वाला तो बिल्कुल आवाज में धीरे धीरे से बात कर रहा है। तो धीरे धीरे उसको भी एहसास होगा, वो आपके लेवल पे आना शुरू होगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि वो बिना बात के चीख रहा है या चिल्ला रहा है ना
1: जी।
0: तो और एक बात और है आरती, जब हम सॉरी कहते हैं कई बार देर से आए तो उसकी जगह हम बहुत कुछ कह सकते हैं, यानी सकारात्मक रूप से हम उसे धन्यवाद भी दे सकते हैं,
1: आपने इंतजार किया,
0: आपने हमारा इंतजार किया, है ना।
1: एक थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, एक सकारात्मक पहलू आ जाएगा इस चीज के सामने,
0: है ना।
1: और जैसे कि हमने कहा कि हामी मत भरिए, मतलब अगर आप सही हैं किसी चीज को लेके, आप सही हैं तो आप उसको अप्रूव कराने के लिए
0: 10 लोगों के पास मत जाइए,
1: है ना, कि देखो देखो ये चीज सही है ना, देखो देखो ये चीज सही है ना। कहते ना कि चार लोग क्या कहेंगे, तो आप उन चारों को भूल जाइए।
0: और ऐसा होता है, लोग जो है 10 लोगों के पास जाकर पूछते हैं, है ना,
1: हम सही हैं, हम सही हैं। अगर आप सही हैं तो आप
0: सही हैं,
1: बिल्कुल अपने दिमाग से, अपने आपसे निर्णय लीजिए।
0: आपका अपना निर्णय कोई भी हो सकता है, उसमें आपको डरना किस बात का। अगर आपका निर्णय किसी का नुकसान नहीं कर रहा है तो आपको डर नहीं होना चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है आरती, हम लोग भावुक लोग जो होते हैं ना, मैं भी वैसी ही हूँ कि मैं लोगों के साथ भावनाओं में बहती हूँ। मतलब किसी ने प्यार से बोला तो उसके साथ अरे कितनी अच्छी है ना,
1: जी,
0: कितना अच्छा है। और लोगों को पढ़ना सीखना चाहिए, जो
1: बहुत जरूरी है,
0: हम नहीं सीख पाते हैं, या भावुकता, जैसा मैंने कहा हम भावुकता में बह जाते हैं। तो लोगों को पढ़ना सीखें, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब हम उन्हें ना बोलते हैं।
1: बारीकी से ध्यान दीजिए, जब आप उनको ना बोलते हैं
0: तब कैसे होते हैं,
1: तब उनके चेहरे पे कैसे भाव आते हैं,
0: ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने जब तक हाँ भरी तब तक आप बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही आपकी किसी भी बात पर ना हो गई आप बुरे हो जाते हैं, है ना, आपके बारे में 10 सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है। तो अपने व्यक्तित्व को अजय बनाइए, अपने व्यक्तित्व को अंदर से मजबूत बनाइए।
1: और इसके लिए जरूरी हम दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से सुने, उनको ऑब्जर्व करना सीखें, उनको ध्यान से उनको देखें कि वो कैसे प्रतिक्रिया देते हैं या हमारी किस बात पे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें। और जब भी हमें क्रोध आए या गुस्सा आए तो हमें अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि क्रोध हो या गुस्से में हम बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए।
0: बिल्कुल सही।
1: और बाद में हमें उसका पछतावा भी होता है।
0: हाँ।
1: लेकिन शब्द ऐसे हैं ना, जब निकल जाते हैं तो वापस नहीं आ सकते।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो इस बात का हमें ध्यान रख के बोलना
0: चाहिए, समझ के बोलें, तोल मोल के बोलें। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हर बार हम गणित नहीं संबंधों में लगा पाते और अपना समझ कर कई बार हम बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन ऐसा फिर भी न कहें जो बाद में आपको पछतावा दे।
1: बिल्कुल।
0: और हम सबकी आदत होती है कि अगर कोई हमारी तारीफ कर दे, जैसा कि तुम मेरी अक्सर तारीफ करती हो, आज नहीं की है तुमने तो मैं तुमसे नाराज हो गई हूँ, ऐसे लोग हमसे नाराज हो जाते हैं जब हम उनकी तारीफ नहीं करते हैं, या कर देते हैं तो हमारी उसमें पसंद वाली लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। तो इससे हमारी कमजोरी जो है लोगों के हाथों में आ जाती है,
1: क्योंकि लगता है ना उनको कि जैसे कि मैं अभी आपकी तारीफ करूं और किसी ऐसी बात की तारीफ करूं जो आप नहीं करती हैं, तो आपको अंदर से तो लगेगा कि हाँ ये तो मैं करती नहीं हूँ फिर भी मेरी तारीफ हो रही है, तो लेकिन आपको लगेगा अच्छा लगेगा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए।
0: हाँ,
1: क्योंकि मैं ये चाटुकारिता में आता है,
0: ये चाटुकारिता में आता है। और फिर पता है क्या होता है, हम हर दिन उस तारीफ की उम्मीद करने लगते हैं सामने वाले से, और जिस दिन उसने नहीं की वो इंसान हमारे लिए बुरा हो जाता है। इसलिए चाटुकारिता की श्रेणी में आपको नहीं आना चाहिए।
1: और अपनी खूबी अपनी खामी हर इंसान को पता होती है,
0: बिल्कुल होती है। और मजबूत मन ही वो जादू है जहाँ व्यक्ति हर परिस्थिति में चमकने की क्षमता बनाता है, अपने आप को चमका लेता है कि किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाना है। इसलिए अपनी खूबियां और अपनी खामियां खुद टटोलनी होगी।
1: बिल्कुल। और इसके लिए आप दूसरों पर निर्भर ना रहे कि वो आपकी तारीफ करेंगे।
0: जैसा मैंने आज उम्मीद की थी कि आरती आते ही मेरी तारीफ करने वाली है, पर
1: मैं तारीफ करती हूँ, तारीफ करती हूँ, लेकिन ये चीज उसमें नहीं करती हूँ कि भाई कि आपको चाटुकारिता लगी इस चीज को। मैं एकदम सही तरीके से आपकी जिस चीज की भी तारीफ करती हूँ करती हूँ।
0: तो मैं आगे उम्मीद रखती हूँ,
1: बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद रखिए अच्छे से तारीफ।
0: तो चलिए आप श्रोता उम्मीद कर रहे हैं कि हम एक गीत सुनवा दें।
1: जी

0: हाँ
1: तो अब हम बात करते हैं सखी विशेष के अंतर्गत मेघा मलिक की।
0: अरे वाह, बिल्कुल
1: जी। तो रंगों की दुनिया में सपनों को आकार देने वाली एक सृजनशील व्यक्तित्व का नाम है मेघा मलिक। उन्होंने केवल डिजाइन ही नहीं बनाए बल्कि अपने विचारों को पहचान भी दी, उत्पादों को एक व्यक्तित्व दिया और जो व्यवसाय दिखा रहे थे उनको यादगार ब्रांड्स में बदलने का जादुई काम उन्होंने किया। तो मेघा मलिक भारतीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजाइन उद्योग के एक प्रतिष्ठित उद्यमी हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और उन्होंने 2003 में डिजाइनर पीपल की स्थापना की। विदेशों में अपनी पहचान बना लेने के बाद भारत में डिजाइनर पीपल ने 2012 में अपना आधार स्थापित किया, जो आज भारत की प्रमुख ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों में भी गिनी जाती है। और उनकी शिक्षा की बात करें आरती, तो उन्होंने कला और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त की है
1: जी। और उनके पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में MBA और फाइन आर्ट्स की डिग्री है। कला के प्रति उनकी गहरी रुचि और रचनात्मक सोच ने उन्हें डिजाइन एवं ब्रांडिंग की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मेघा की कंपनी की बात करें तो ये एक पेशेवर क्रिएटिव एजेंसी है जो ब्रांडिंग, पैकेजिंग और प्रिंट और डिजिटल मार्केटिंग के लिए विजुअल कम्युनिकेशन में विशेषज्ञता रखती है।
0: बिल्कुल, और पैकेज डिजाइनिंग, वेब डिजाइन और विकास, ब्रांड विकास जिसमें शामिल है लोगो डिजाइन, स्टेशनरी डिजाइन, कॉरपोरेट डिजाइन और इसके साथ कैटलॉग, बिजनेस कार्ड डिजाइन, साइनेज और वे फाइंडिंग डिजाइन, कस्टम प्रिंटिंग, अन्य सेवाओं में जैसे वाहन रैप डिजाइन, प्रदर्शनी स्टॉल डिजाइन, सोशल मीडिया पेज डिजाइन, कितनी सारी चीजें शामिल है
1: जी। और डिजिटल मार्केटिंग जिसमें शामिल है सामाजिक माध्यम बाजारीकरण, सर्च इंजन अनुकूलन, पीपीसी सेवाएं, इसके अलावा ब्रांड परामर्श, पैकेजिंग परामर्श, उत्पाद डिजाइन परामर्श। मेघा मानती है ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक ऐसी सेवा है जो किसी भी व्यवसाय के लिए अधिकतम ग्राहक लाती है। किसी भी उत्पाद को खरीदने के 70% से अधिक निर्णय स्टोर में ही 5 से 7 सेकंड के भीतर ले लिए जाते हैं। ये कितना सुंदर दिख रहा है वो बस इसी बेस पे उसे ले लिया जाता है।
0: क्या बात है।
1: और इस प्रकार उत्पाद की दिखावट खरीद निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात अच्छी तरह समझते हुए कि किसी भी ब्रांड को प्रतिस्पर्धा के बीच अलग पहचान दिलाने के लिए सही ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग बेहद जरूरी है। ये वो चीजें हैं जो उत्पाद को ग्राहकों का ध्यान और विश्वास आकर्षित करने में मदद करती हैं।
0: और इसलिए चाहे छोटा व्यवसाय हो या बड़ा, अपने उत्पादों और सेवाओं की उपयुक्त ब्रांडिंग और मार्केटिंग की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत में अगर ब्रांडिंग और पैकेजिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मेघा मलिक ने जो है डिजाइनर पीपल की शुरुआत की, और उनका मानना है कि किसी भी उत्पाद की सफलता केवल उसकी गुणवत्ता पर नहीं बल्कि उसकी पहचान, प्रस्तुति और उपभोक्ताओं से जुड़ाव पर भी निर्भर करती है।
1: बिल्कुल, और उनकी इसी सोच ने उन्हें एक ऐसी संस्था बनाने के लिए प्रेरित किया जो छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूत ब्रांड पहचान दिला सके। क्रिएटिव डायरेक्टर और ब्रांड कंसल्टेंट के रूप में मेघा मलिक ने हजारों व्यवसायों को नई पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी एजेंसी ने खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन, उपभोक्ता उत्पादों और अन्य कई क्षेत्रों के ब्रांडों के लिए पैकेजिंग, लोगो, विज्ञापन और डिजिटल रणनीति विकसित की है।
0: हाँ बिल्कुल, और मेघा मलिक का जो नेतृत्व है नवाचार, शोध और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। वो मानती हैं कि प्रभावी ब्रांडिंग केवल आकर्षक डिजाइन नहीं बल्कि उपभोक्ताओं की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझने की कला है, और उनकी कार्यशैली में रचनात्मकता और व्यावसायिक रणनीति का संतुलित समन्वय भी हमें दिखाई देता है।
1: बिल्कुल, उनकी संस्था ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ में काम किया है, और मेघा मलिक को भारत की सफल महिला उद्यमियों में भी स्थान मिला है। उन्होंने ब्रांडिंग और पैकेजिंग के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करते हुए अनेक व्यवसायों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान दिया है।
0: और उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है आरती कि जब कला और प्रबंधन को खूबसूरती से मिलाया जाता है ना, तब वो रचनात्मकता व्यापार की नई ऊंचाइयों को हासिल करती है। तो मेघा मलिक आज उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने जुनून को उद्यमिता में बदलकर समाज उद्योग जगत में एक नई पहचान बनाना चाहती हैं।
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: और बहुत ही अच्छी बात है ये। और आज महिलाएं जो कितनी तेजी से अपना नया पहचान, अपनी नई पहचान बना रही हैं, अपने आप को स्थापित कर रही हैं।
0: बिल्कुल, तभी कहा जाता है देखिए कि दूर के ढोल सुहावने, मतलब अभी जो हम बैठे बैठे यहाँ से कह सकते हैं कि कितने मजे हैं ना मेघा मलिक के, लेकिन उस शानदार जीवन के लिए कितना संघर्ष किया है इस बात को अभी अभी आपने जाना। तो जो अगला विषय हमारा रहेगा वो यही रहेगा कि मुहावरों की जो दुनिया है दूर के ढोल सुहावने, उस पर हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, उस पर बात करें हम।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन थोड़े से एक छोटा सा गीत क्यों ना सुने।
0: अच्छा, आपको गीत की तलब हो ही गई है चाय की तरह
1: जी।
2: जरा नजरों से कह

0: तो दूर के ढोल सुहावने. कई बार ऐसा होता ना कि वो कोई चीज हम खरीदते हैं ना, वो ऐसी देखने में तो इतनी सुंदर लग रही होती है उसमें, जब हम शॉपिंग ऐप पे जाते हैं और जब वो आती है हमारे पास तो एकदम से लगता है कि ये क्या चीज हमारे पास आ गई.
1: हाँ बिल्कुल सही कहा. कई बार हम महिलाएं खासतौर से जो ड्रेस के प्रति बड़ी सावचेत रहती है ना, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय बहुत सुंदर ड्रेस लगती है, लेकिन जैसे ही वो घर पे आती है ना आरती, यकीनन बहुत बार लगता है कि ये क्या ले लिया हमने.
0: बिल्कुल. और फिर वापस करो, ये करो, गुस्सा
1: शुरू हो जाती है.
0: इतना समय आके तो वो आती है ड्रेस.
1: इसलिए दूर के ढोल सुहावने लगना जो है, वो हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति दूर से अच्छी और आकर्षक दिखाई देती है, वो पास जाकर उतनी अच्छी होती नहीं है. उदाहरण जैसे गांव के लोग शहर की चमक दमक देखकर आकर्षित होते हैं, पर शहर की भागदौड़ और महंगाई देखकर पता चलता है, फिर कहते हैं कि दूर के तो ढोली सुहावने.
0: बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने एकदम सही तरीके से इस चीज को बताया है. और एक और मेरे श्रोता है जो कहते हैं कि यदि आप पहाड़ों को दूर से देखते हैं तो बड़े सुंदर दिखाई देंगे, जितना करीब जाओगे उतना ही उबड़ खाबड़ दिखाई देंगे. जैसे चांद को रात में देखते हुए बड़ा ही सुंदर दिखता है, लेकिन साल जब मतलब उस पर जब यान भेजा गया तो उस पर देखा कि उसमें कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कितने कैसा अजीब अजीब सा है वो जगह. तो

0: वही है ना कि दूर के ढोल सुहावने, यहाँ से देखने में कितना सुंदर
1: बहुत सुंदर लगता है। हम उसकी तुलना करते हैं हर एक चेहरे से, चांद की तरह सुंदर चेहरा है ना, चांद जैसा हमारा टुकड़ा।
0: जी जी जी, लेकिन जब से वहाँ पे पहुंचे तब से थोड़ा
1: पता चलता है कि भाई जो है दूर से जो दिखता है वो पास आके पता चलता है कि सच्चाई क्या है। एक श्रोता लिखते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं और नजदीक बजे तो डब डब, एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है जिसका आम आदमी में भी बहुत प्रयोग होता है। इसका अर्थ है कि जो चीजें या परिस्थितियां हमसे दूर होती हैं वे हमें बहुत आकर्षक और अच्छी लगती हैं, लेकिन पास आने पर उनकी असलियत समझ में आती है। कहने का मतलब है कि रिश्ता कैसा भी हो, दोस्ती परिवार, एक दूरी मेंटेन करनी ही चाहिए, तब वो सुंदर लगता है या संभालना अच्छा लगता है। नजदीक जाने पर सुंदरता तो दिखती नहीं, उसकी क्रूरता भी दिखाई देने लग जाती है।
0: तो हमारे एक श्रोता, इन्होंने एक गुजराती मुहावरा भी इसको लेके लिखा है कि दूर थी डूंगरा रलियामणा। जी, यहाँ डूंगरा मतलब पहाड़ या पर्वत और रलियामणा मतलब सुहाना, यानी मतलब दूर से सुनाई दे रही आवाज या दृश्य सुहाने लगते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। तो वही अभी हमने जो
1: कहा कि पहाड़ों को दूर से जब हम देखते हैं, वही एक श्रोता भी लिखते हैं कि कई बार क्या है तो दूर से मधुर आवाज लगती है हमें, पास आने पर वही आवाज कानफोड़ लगने लगती है, अनजानी चीजें हमेशा अधिक आकर्षित लगती हैं, वास्तविकता हमेशा बाहरी रूप से अलग होती है।
0: बिल्कुल।
1: और वही एक श्रोता कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने ही होते हैं, ये हमारी आदत होती है कि दूसरों को देखकर हम आह भरते हैं कि काश हमारी जिंदगी भी दूसरों की तरह आरामदायक होती, पर जब करीब जाकर उनकी असलियत पता चलती है तो लगता है कि भाई हम जैसे हैं
0: वैसे सही है। जी, तो बहुत सी चीजें जो हमें दूर से तो वो लगती, जैसे हमारे श्रोताएं जो लिखती हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं और नजदीक बजे तो, जैसे आपने बताया भी इनके बारे में, तो इन्होंने बताया कि किस तरह से कठिनाई और कमियां हमारे सामने आती हैं उस चीज के लिए लेके, तो बहुत से जो श्रोता है हमारे इसी चीज को लिख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है।
1: बिल्कुल, लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी आरती कि दूर से आरती और मंदाकिनी जैसी सखियां भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन यकीनन पास आने पर भी वो अच्छी लगेगी।
0: ऐसा नहीं है कि आपको निराशा हाथ लगी है, आप बिल्कुल हमसे मिलिए तो हम आपको और बहुत अच्छी तरह से आपसे बात करेंगे,
1: जैसे हम अभी आपको लग रहे हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: हाँ तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से बजट पे तकरार होती है। तो इस पर हमारे श्रोता ने लिखा है, एक श्रोता में लिखते हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि घर के सभी सदस्यों में खास करके पति पत्नी में इस बात पर तकरार होती ही है, परंतु स्वयं मैंने धर्म पत्नी और बच्चों को शुरू में ही बैठा कर समझा दिया था कि बेटियां और बेटे सभी टॉप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे जिनके खर्चे बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई भी अननेसेसरी खर्चे हम में से कोई नहीं करेगा ताकि घर का बजट ना बिगड़े। और माता रानी कृपा रही कि सभी ने माना और आज तक इस बात पर सभी कायम है, तकरार होने की नौबत ही नहीं आई।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप समझदारी से चले, आपके बच्चे भी समझदार निकले कि इस बात पर तकरार नहीं होती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आम मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है घरेलू बजट पर तकरार होना। जब घर चलाने वाले अतिरिक्त पैसे की मांग करें तो कमाने वाले के मुंह से निकलता है, अरे अभी तो इतना पैसा हो जाता था, पर अब क्या कारण है, मतलब इतने पैसे देता था उसमें तो काम निकल आता था। और फिर पता चलता है कि विवाद सामने आ गया। विवाद का मुख्य कारण लगातार बढ़ती महंगाई, रसोई के सामान, दूध गैस के बढ़ते जो दाम है, घर की भौतिक वस्तुएं, फ्लैट, बच्चों की शिक्षा, ईएमआई, ये सभी जो है मध्यम वर्गीय परिवारों के मासिक खर्चों में जो है भारी वृद्धि हुई है। सभी बातों से सीमित आय और बढ़ते खर्चों के बीच तालमेल न बैठने से घर में तनाव और बहस की स्थिति पैदा हो जाती है।
0: जी, और एक श्रोता जो लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत आवश्यक है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं होता तब मतभेद पैदा होने लगते हैं। यदि परिवार के सदस्य मिल बैठकर आय, खर्च और बजट की योजनाएं बनाएं तथा एक दूसरे की जरूरतों को समझें तो अधिकांश समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाएं पूरी करना संभव नहीं होता तो मतभेद पैदा होते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच में क्या होता है, आपस में तनाव।
0: देखिए, आपका एक श्रोता का हम लोगों ने दो बार उसको उनको पढ़ लिया। हाँ। उनको इतना ज्यादा उनका बढ़िया उन्होंने इस चीज को लिखा तरीके से समझा के, क्योंकि बजट की जो चीजें होती है ना वो यही चीजें होती है, हर घर की समस्या ही यही है जो कि मतलब जब भी बजट बनाने बैठते हैं ना तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है,
1: बिल्कुल,
0: है ना, और सबको लगता है हमारी बात पूरी की जाए, हमारी बात पूरी की, और इसी बात पे मतभेद पैदा होने शुरू हो जाते हैं परिवार में।
1: बिल्कुल सही कहा, मतभेद नहीं होने चाहिए, है ना।
0: जी बिल्कुल।

0: तो आरती, अब हम अपने श्रोताओं से ये इल्तिजा करते हैं कि उनकी नजरें इनायत बनी रहे,
1: बिल्कुल बिल्कुल हम पे अपनी कृपा बनाए रखिए।
0: तो भाई अब जो है सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चला है और इस कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: मुख्य समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। बोकारो के आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने आज कोडरमा का दौरा किया। उन्होंने एसपी कुमार शिवाशीष और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर अपराध नियंत्रण के निर्देश दिए। आईजी ने जमीन विवादों के निपटारे के लिए थानों में नियमित थाना दिवस आयोजित करने को कहा। पाकुड़ में जिला परिषद सदस्य और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हंजला शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा क्रिमिनल अपील खारिज होने के बाद कोर्ट ने वारंट जारी किया था। गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र के बनियाडी गांव में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही 6 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पाकुड़ की नगर थाना पुलिस ने कलिकापुर मोहल्ला स्थित एक बंद बीड़ी कारखाने के पीछे छापेमारी कर नशीला पदार्थ ब्राउन शुगर बरामद किया है। पुलिस ने मौके से अवैध मादक पदार्थ के कारोबारी रमजान शेख को 29 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। चतरा की पत्थलगढ़ा थाना पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सिरकोल से मनीष मुंडा नामक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से करीब 13 लाख रुपए मूल्य की 2.5 किलोग्राम से अधिक अफीम और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रांची में मुक्केबाज शिक्षा कुमारी से मुलाकात की। गोड्डा की शिक्षा कुमारी ने राज्य सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी की रांची केंद्र
2: वहीं से शुरू कर रही हैं जहां पिछले सप्ताह छूट गई थीं। वहीदा जी से बातें कर रहे हैं कमल शर्मा।
3: वहीदा जी, गोल्डी साहब का भी जिक्र आया था, फिर वो अधूरा रह गया। गोल्डी साहब का शुमार बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से होता है और उन्होंने बड़ी कामयाब फिल्में बनाई और आपने भी उनके साथ में काम किया। एक निर्देशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में आपने उनमें क्या खूबियां पाए?
4: वो भी काफी इंटेलिजेंट डायरेक्टर थे।
3: कैसा था उनका काम करने का स्टाइल जो था?
4: वेरी इजी टू वर्क विद। गाइड में पहले पहले शुरू शुरू में क्या होता था, अगर डायरेक्टर को कोई सजेशन दे, मेरा एक्सपीरियंस है दूसरे आर्टिस्टों का, आई डोंट नो, तो उतना वो लाइक नहीं करते थे। खासकर वो दिमाग में उस वक्त तो ज्यादा ही था, अभी भी है थोड़ा बहुत, कि लड़की के क्या सजेशन लेना चाहिए, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो गोल्डी में ये बात नहीं थी। तो कभी कभी मैं कहती ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे नहीं ठीक लग रहा है, तो वो हाँ या ना नहीं कहते थे, मगर उस चीज को ले लेते थे। फिर चुपके से उसको करा के मैं कह रही मैंने जो कहा वो ही किया ना आपने, तो कहते हाँ तो सही सजेशन था, इसके लिए मैंने किया, यू नो। सो वो बात बड़ी अच्छी थी और गाइड का ट्रीटमेंट उनका बहुत ही बढ़िया और अच्छा था। खासकर गाइड का एक सीन था जहाँ मैं मुझसे छल किए जाए परफॉर्म करने से पहले बैक स्टेज पता चलता है कि राजू इज बीन अरेस्टेड फॉर फोर्जरी, और उसके या उससे पहले मार्को आते हैं, अपनी किताब प्रिंट हो चुकी है, तो वो राजू को कहते मुझे अंदर जाना है, मिलना है, जाने नहीं देते, तो वो मना करते हैं। अगर मैंने सोचा अगर आज कल आज की फिल्म होती तो ज़रूर एक वहाँ फाइट होनी थी बिटवीन राजू एंड मार्को, जो उसको इतना डिसेंटली और इतना डिग्निफाइड मैनर में उसको ट्रीट किया। वो खाली सिर्फ टाई थोड़ा टाइट करते हैं मार्को की और ठीक करके कोट कहते नहीं आप नहीं मिल सकते, मैं किताब दे दूंगा, आप जाइए। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, छोटा सा सीन था मगर बहुत अच्छा लगा, और उसमें दोनों का यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ही खूबसूरत, ही वाज अ वेरी गुड डायरेक्टर।
3: लेकिन वो जो गाना है मुझसे छल किए जाए, ये तो जरूर हम सुनाना चाहेंगे।

0: वेदा जी, लिविंग लेजेंड में शुमार होता है दिलीप कुमार साहब का, और उनके साथ में भी आपने बहुत काम किया, बहुत एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। खास उससे मुझे यहाँ दिल दिया दर्द दिया याद आ रही है फिल्म, वोदरिंग हाइट्स से मेरे खास से इंस्पायर्ड थी वो फिल्म। दिलीप साहब के बारे में कुछ बताइए।
1: दिलीप साहब के साथ पहली फिल्म थी मेरी दिल दिया दर्द लिया, और फिर उन्होंने मुझे ये किताब दी थी वुदरिंग हाइट्स के, इसको पढ़िए, इससे हमने इंस्पायर करके बना रहे। और मुझसे एक गलती हो गई, जब किताब पढ़ चुकी मैं एक बार सेट पे गई तो दिलीप साहब ने, कोई और असिस्टेंट ने पूछा कैसी लगी आपको ये किताब, वही हद तो हम बना रहे हैं। तो मैंने गलती से कह दिया, जी साहब किताब से और फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। बोले क्या बात कर रही हैं आप, उसी से तो हम आइडिया लेके बना रहे हैं, मतलब इंस्पिरेशन के साथ। मैंने कहा वुदरिंग हाइट्स में कहानी का जोर शो होता है जब कैथरीन मर जाती है, उसके प्यार में जो इनका बुरा हाल होता है। यहाँ तो ये रूपा जी जो है अंत तक चली हैं और मिल भी जाती हैं, इनमें तो कहाँ से। तो बोले नहीं नहीं भैया जी, आप बहुत मीम मेक निकालते हैं, अब नहीं उसी से लेते हैं। तो अब

0: यानी दिलीप साहब को सही लगा कि नहीं लगा, आई डोंट नो, बट ही वाज वेरी नाइस एंड कोऑपरेटिव. और दिलीप साहब की एक बड़ी अच्छी बात थी, अपना शॉट होने के बाद अगर उस वो शॉट में खुद हैं या ना, तो वो दूसरे आर्टिस्ट का देखते रहते थे कि सही हो रहा है कि नहीं. अगर उनको लगता था कि नहीं सही हुआ, तो चुपके से आके कह देते, भाई इसको आप ऐसे ऐसे करे तो नहीं अच्छा होगा, इसको इस तरह करते हैं.
1: आपको कहा?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सबको कहते थे. दिल दिया दलिया, उसके बाद कौन सी थी, आदमी, राम और श्याम, इसमें
1: कोई खास सीन याद आता है जिसमें उन्होंने कहा कि?
0: राम और श्याम में एक लाइट सीन था, तो मैं अपने फादर को जाके कह रही हूँ कि एक आदमी मिला और ऐसे हुआ वैसे हुआ, उस गाड़ी जूम करके जाती, वो होता है, यूं होता है, बोले बोले बोले जा रही हूँ. तो मैंने, हम कोडेकनाल में थे होटल में, मैंने कहा साहब डायलॉग दे दीजिए, सीन दे दीजिए, याद करना, नहीं तो आउटडोर में टाइम वेस्ट होगा. और मुझे बहुत ये लगता था कि यू नो प्रिपेयर्ड होना चाहिए. तो कहने लगे नहीं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं. मैंने कहा क्यों? आपने कहा इतना लंबा सीन है. तो मेरी आदत थी, यू नो, मेरी हाथ बहुत चला के बात करती हूँ और साउंड्स निकालती हूँ, जैसे उन्होंने जो जो आप बोलती हैं उसको मैंने नोट किया है, आपको वही करना है. मगर जिस वक्त मैं क्या बोलती मुझे क्या पता. तो बोले एक रफली देख लीजिए, मैं कल दे दूंगा या नहीं तो आज रात को दूंगा मैं सीन. तो फिर भी मैं बड़ी काफी नर्वस थी कि भाई दे दीजिए, याद करने डाल रहा हूँ. तो मैं कहूँ पढ़ती रही, तो मैंने कहा कि ये क्या है भाई, जूम करके गाड़ी चली गई. तो बोले मैंने आपसे सुना है वो लफ्ज. मैंने कहा कब? तो आपको याद नहीं होगा, हम नोट करते रहते हैं आर्टिस्ट कब क्या से बिहेव करता है, तो इसमें आपको ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है. तो आप अपने खुल के, जैसे आप भूल जाइए कि आप ये कैरेक्टर हैं, थोड़ी देर के लिए आप सोच लीजिए मैं बहीदा ही हूँ, हम कैमरा ऑन कर देंगे, सिर्फ थोड़े जो कनेक्टेड जॉइंट के डायलॉग्स हैं वो याद रखे, बाकी आप ना कीजिए. मैंने कहा अच्छी बात है.
1: आदमी भी एक थोड़ी सी अलग तरह की फिल्म थी, टफ सा करेक्टर है, इसमें भी बड़ा चैलेंजिंग रोल था क्योंकि ट्रायंगल था, लव ट्रायंगल था आदमी का. इसका कोई गाना सुनवा दिया जाए
0: आदमी का? हाँ, वो जो उनके एक्सीडेंट के बाद एक गाना होता है,
1: आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज ना दे, वो
0: समथिंग. हाँ,

0: अपने समकालीन जो आर्टिस्ट रही आपकी, जो समकालीन अभिनेत्रियां रही, उनमें आपको कौन बहुत पसंद थी?
1: मेरे से पहले जो थे, मतलब मेरे से सीनियर, उसमें मुझे गीता बाली जी बहुत अच्छे लगते थे, फिर नरगिस जी, और मीना जी का क्या था, उनके एक जैसे रोल होने लगे थे, एक टाइप की पर्सनालिटी हो गई थी, हालांकि उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस जो थी वो बहुत ही बढ़िया थी, इट वाज वेरी कैरिस्मेटिक, उनको देखो तो दिल करता था, कई नज़र इधर उधर नहीं जाते थे, उन्हीं को देखते रहिए, बड़ी ग्रेट फिल्म आई मीन पर्सनालिटी थी उनकी। उसके बाद हमारे मेरे साथ के वक्त मैं कहूँ साधना बहुत अच्छी थी, और माला सिन्हा, नंदा, ये नहीं कि नंदा मेरी फ्रेंड है मगर उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी थी, बड़ा स्वीट सा चेहरा था।
0: अच्छा, एक क्रिटिक के रूप में कभी अपनी फिल्मों को देखा आपने कि भाई ये सीन ऐसे हो जाना चाहिए था कभी?
1: हाँ, वो तो इसीलिए मैं अपनी फिल्में देखती नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि ओहो इसको, इस सीन को और बेटर, गाइड में खुद मैं इतने नुक्स निकालती हूँ कि ओहो हो ये क्या किया मैंने, इससे तो ऐसे करना चाहिए था, बेहतर होता था सीन। सो फिर मजा ही नहीं आता मुझे, जब तक मैं बिल्कुल बोर होके टीवी लगाऊं, मेरी फिल्म हो तो चलो वक्त गुजारने के लिए देख लेती, मैं कहती अभी जाने दो, हो चुका अभी मैं क्रिटिसाइज करके क्या फायदा, तो वरना मैं उतना एंजॉय नहीं करती अपनी फिल्में।
0: टीवी की अगर बात करें तो उसमें आज का सिनेमा भी मौजूद है घर में ही, और पुरानी फिल्में भी आती हैं, तो नई फिल्में भी आप देखती होंगी, जब आप उन दोनों को कंपेयर करती हैं, उनका कंपैरिजन करती हैं, तो क्या महसूस होता है आपको?
1: नहीं देखिए, लेटली एक दो साल से कुछ बहुत ही अच्छा दौर आया है, जो हर किस्म की फिल्म बन रही है, मेनली शायद ये मल्टीप्लेक्सेस जो शुरू हो गए हैं, एक थिएटर में हर किस्म की फिल्म चल सकती है, चलती है, मगर थोड़े अरसे पहले कुछ ज्यादा ही वायलेंस पे बेस्ड होती थी, और कहानियां रट्टी पट्टी की कि दो भाई हैं बिछड़ गए बचपन में, वो माँ होती है, एक अच्छी नेचुरली माँ तो अच्छी होना चाहिए, फिर जो अच्छा लड़का है माँ के साथ रह जाता है, नो इट वाज वेरी बोरिंग। अभी थोड़ी वैरायटी आ गई है और बोल्ड सब्जेक्ट्स, और आजकल के जो आर्टिस्ट हैं मेल या फीमेल, वो हर किस्म का रोल करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो हमारे जमाने में नहीं होते थे।
0: आपका एक बेटा है, एक बेटी है, क्या नाम है उनके?
1: वो सब बड़े शर्माते हैं, क्यों कहते हैं आप क्यों हमारा वो करते हैं, एक लड़का एक लड़की है बस।
0: वो फिल्में देखते हैं आपकी?
1: मेरी फिल्में इतनी नहीं देखते हैं, कभी देखी नहीं उन्होंने। मेरी लड़की और लड़के ने कनाडा में ग्रेजुएशन किया, अच्छा। टोरंटो में, तो वहाँ मेरी लड़की ने फिल्म स्टडीज की, तो फिर एक बार वापस जो हिंदुस्तान आई तो कहने लगी जो प्यासा में ऐसी है प्यासा में, मैंने कहा बेटा आपने प्यासा कब देखी, आपको तो अच्छी नहीं लगती थी हमारी मेरी फिल्में देखना, तो बोले टोरंटो में देखी। ओ मैंने कहा अच्छा थिएटर में लगी थी प्यासा, तो बोले नहीं कॉलेज में देखी, मैंने कहा कॉलेज में प्यासा कैसे दिखाई गई, तो कहने लगे वहाँ के आर्काइव में प्यासा रखी हुई है। मेरे ख्याल से गुरुदत्त जी की एक दो फिल्में हैं, तो आई फेल्ट वेरी प्राउड कि वाह क्या बात है, तो उसने कहा मैंने प्यासा देखी है। अब वो ख्वाहिश जाहिर कर रही हैं और दोनों बच्चे मेरे कि हम अब आपके साहब बीबी और गुलाम देखना चाहते हैं।
0: तो यहाँ प्यासा का भी जिक्र आया और हाँ। साहब बीबी गुलाम का भी आया है, हाँ। साहब बीबी गुलाम का, तो इन दोनों में से कोई किसी एक फिल्म का ही गाना और हो जाए उसमें।
1: प्यासा का वो है ये दुनिया में, हाँ नहीं जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला,
0: हेमंत कुमार साहब की,
1: हाँ हेमंत कुमार साहब की आवाज, वो बहुत अच्छा था।

0: वैसा जी, दिल दिया दर्द लिया में प्राण साहब का भी एक बहुत ही अलग तरह का रोल था और विलन थे उसमें, और सिनेमा के बहुत ही नामी कलाकार तो हैं ही, उनसे भी जुड़ा कोई संस्मरण हम जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि उनके साथ में भी आपकी कई फिल्में आई, राम और श्याम में भी वो खलनायक
1: थे। बहुत फिल्मों में थे, पत्थर के सनम, राम और श्याम, दिल दिया दर्द लिया, आदमी, तो बहुत इतने बुरे, मतलब यू नो यूज़ टू हेट हिम ऑन द स्क्रीन, मगर उतने जेंटलमैन थे लाइफ में, बहुत ही शरीफ। और उनकी एक अजीब बात थी, उन्होंने मुझे कहा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के, कि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई फल नहीं खाया, वो फल खा नहीं सकते क्योंकि फल की खुशबू से तक उनको मतली आती थी। मैंने कहा अच्छा, ये पहली बार सुना मैंने, ऐसे इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, और जोक्स बहुत क्रैक किया करते थे, इट वॉज अच्छा लगता था।
0: लेकिन उन्होंने कामयाबी का फल अच्छा
1: बिल्कुल
0: चखा। आपकी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मुझे दो तीन फिल्में और बहुत याद आती हैं, रुला भी देती हैं, उसमें एक मास्टरपीस है आपकी एक और फिल्म तीसरी कसम, शैलेंद्र साहब उससे जुड़े हुए थे जिनकी बड़ी दर्दनाक, फिर उसके साथ में जो घटना टचडी हुई उसके साथ में, वो भी राज कपूर साहब आपके उसमें नायक थे और मेरे खास बासु भट्टाचार्य साहब ने उसको डायरेक्ट किया था, उसके बारे में जरूर बताइए, उस फिल्म के बारे में। एक तो उसमें वो पूरी कमाल की वो फिल्म, आज भी उसको जितनी बार देखा जाए ऐसे मन ही नहीं भरता उस फिल्म को।
1: उसकी बड़ी सिंपल कहानी थी, बड़ी सिंपल स्वीट पिक्चर थी, मगर उसकी फिलॉसफी बहुत डीप थी। उनके गानों में भी सिंपल वर्ड्स थे मगर उसकी मीनिंग, उसकी फिलॉसफी में बहुत डेप्थ थी। और आप मानोगे नहीं, आधी से ज़्यादा फिल्म बनी थी बिना, मतलब एक सीन में मैं और राजी हैं तो मैं नहीं हूँ या नहीं तो राजी नहीं है, तो डायरेक्टर ने बड़ी मुश्किल से ये नहीं, क्योंकि वो बहुत देर से आते थे सेट्स पे और वो बहुत मसरूफ थे, अपने संगम बन रही थी उसके बाद, हाँ संगम बन रही थी उस वक्त, वो इतने ज्यादा उसमें जुड़े हुए थे, मसरूफ थे, तो इसको उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी, उन्होंने इसलिए की क्योंकि शैलेंद्र उनके दोस्त थे और वो उसके प्रोड्यूसर थे। बड़ी मुश्किल होती थी मगर देख के फिल्म मुझे खुद ताज्जुब होता था, कैसी बनी फिल्म, क्योंकि कई दफा सीन्स में एक बैक शॉट ले लिया कंबाइंड, उसके बाद मेरे क्लोजअप हो रहे हैं और मेरे से बैक शॉट ले लिया तो उसके बाद राज साहब के क्लोजअप हो रहे हैं, मगर सीन टोटली ऑन द स्क्रीन एक सीन होता था। तो बड़ी वैसे हालात में फिल्म बनी और फिर वो मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल एंट्री थी, उसके लिए हम साथ गए थे मैं और राज जी, और वाकई में मैंने देखा राज जी यूज्ड टू गेट मॉब्ड इन मॉस्को, लिटरली राजू राजू राजू, यू नो बहुत, और जो जो रशियन था वो उनके पूरे गाने, एक क्या 420 और फिल्मों के गाने, आवारा के सब गाते थे।
0: वेदा जी, इस फिल्म में नौटंकी वाली का एक किरदार किया था और म्यूजिक भी उसमें काफी कुछ उसी तरह का था, शंकर जयकिशन साहब का संगीत था। इस फिल्म में क्या आपको संतुष्टि वाली भूमिका निभा करके, तीसरी कसम की अगर मैं बात करूं?
1: हाँ, मुझे अच्छा लगा था क्योंकि वो भी एक डिफरेंट कैरेक्टर था, यू नो, और सिंपल एंड वेरी स्वीट, उससे

0: वो फिल्म कभी भी देखो बोर नहीं लगती है, ना अच्छी लगती है, दिल को छूती है।
1: कुछ चीजें ऐसी कि जैसे सेल्यूलॉइड पर पोएट्री कुछ उसी तरह की वो सही, फिल्म है। उसमें भी गाने बहुत अच्छे थे। एक गाना उस फिल्म का हम सुनाया,
0: सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, हमें तो पैदल ही जाना है।

0: यही सब कुछ चुकाना है सजन रे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।
1: बासु भट्टाचार्य, उन्होंने हालांकि बड़ी ऑफ बीट फिल्में बनाई, समानांतर सिनेमा से भी उनका नाम जोड़ा जाता था, पैरेलल सिनेमा से, और इस फिल्म में उनके साथ में काम करने का मौका मिला आपको। बिमल रॉय साहब के साथ में उनका लंबा एसोसिएशन रहा, उनको कैसा निर्देशक पाया आपने?
2: पहले उनको समझना जरा मुश्किल था, क्योंकि वो नेचुरली उनकी पहली फिल्म थी तो वो बड़े टेंस रहते थे, और फिर अक्सर उनको उनका कैमरामैन के साथ ये नोकझोंक हो जाती थी छटपट। और फिर एक बार राजनी का वहीदा जी ये क्या हो रहा है, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने उनसे कहा तो वो बेचारे नए हैं तो आप उनको बता दीजिए कुछ गलत हो रहा है, तो कहने लगे नहीं मेरा ये प्रिंसिपल है, जब मैं एक्टर बनता हूँ मैं सिर्फ एक्टर रहता हूँ। मैंने कहा मैं मानती हूँ मगर आप इतने पुराने डायरेक्टर हैं, बेचारा वो नया है, उसकी मदद करो, फिर मुझे क्यों कह रहे हैं? तो बोले कोई तो चाहिए ना कंप्लेन करने के लिए। तो मैंने कहा आपको क्या मैं ही मिली जो आप मुझे कंप्लेन क्यों कर रहे हैं, उससे मैं और परेशान हो रही हूँ कि आपको लग रहा है गलत तो है तो क्या करें। तो ऑन द होल जब फाइनली फिल्म बनी तो बहुत अच्छी बनी थी, तो हमने कहा वेल ठीक हो गई, यू नो।
1: वेदा जी, आपने सत्यजीत रे साहब की भी किस फिल्म में काम किया, कौन सी फिल्म थी वो?
2: अभिजान।
1: अभिजान बंगला आपको
2: नहीं, उसमें इतनी ज्यादा शुद्ध बंगाली बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा ये बिहारी लड़की है, टूटी पुटी बंगाली और भोजपुरी जबान बोलती है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। तो मगर जब उसका ऑफर आया मुझे बहुत बेहद खुशी हुई और ताज्जुब भी हुआ।
1: उसके पहले आपने उनकी कोई फिल्म देखी थी सत्यजीत रे साहब?
2: हाँ, पाथर पंचली देखी थी। अच्छा। उसके बाद भी और दो तीन फिल्में देखी थी मैंने, तो आई वॉज रियली वेरी थ्रिल्ड और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और
1: उन्होंने क्या कहा के बारे में? उनको कैसा लगा आपका काम?
2: हाँ, उन्होंने कहा जब हम डिस्कस कर रहे थे सौमित्री चटर्जी और हम, उनके वो फेवरेट एक्टर थे, तो कि इस कैरेक्टर को किसको लिया जाए, क्योंकि कोई

0: प्योर बंगाली की जरूरत नहीं है जो जबान जो बोलती है उसके लिए, तो सबने कोरस में कहा है वही दरहमान। तो मैंने कहा सच? तो बोले आई वॉज रियली थ्रिल्ड। और उनका समझाना और शॉट लेना इतना प्रिसाइज होता था, ना वक्त जाया होता था ना नेगेटिव जाया। वो तो कहते थे भाई मेरा नेगेटिव इतना निकलता है इससे कोई चूड़ियां प्लास्टिक की चूड़ियां भी नहीं बन सकती है, क्योंकि आई कांट अफोर्ड, क्योंकि इतने छोटे बजट पे फिल्म बनती है। हम नहीं कह रीटेक्स इतने सारे 20-25 रीटेक हो रहे हैं या इतने ज्यादा शॉट्स ले लिए उसके बाद निकाल के फेंक दिया। मैं दिमाग में पेपर पे लिख लेता हूँ कि इसकी टाइमिंग इतनी इतना ही होगा शॉट, उससे शायद 3-4 फुट ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा आपको शुरू।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, 4:30:22 हो रहे हैं और यह वक्त है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनने का। आइए सुनते हैं आज की कड़ी।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सप्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
0: और कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
0: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
2: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
0: विनीश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
2: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
0: श्रोताओं, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी आपको बताते हैं, तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें तो, प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोयरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं, जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फुमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं? जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या हैं? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियाँ पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओ, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओ, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आएं, तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरन की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरन कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरन भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरन यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुंगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर दें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
3: साथियों नमस्कार।
4: नमस्कार साथियों,
3: आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
4: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
3: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनविच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है, इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे।

0: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
2: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
3: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
2: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
3: यस।
0: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
0: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
4: सू
2: जी,
4: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
2: जी हाँ।
4: भाई मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
2: जी डॉक्टर साहब।
4: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
2: मैं पूछती हूँ।
1: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
0: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
5: 15, 40
2: क्या?
1: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
5: 13, 12, 11 ओह
2: जॉन्सी,
5: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
0: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
5: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू अब वो बहुत कम हो गए।
2: क्या कम हो गए हैं?
5: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
1: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
2: जॉन्सी, उस दिन क्या सौ थे जब कम हो?

0: गए हैं, तुम क्या गिन रही हो?
1: सिक्स, नाउ इट्स सिक्स, फाइव, फोर।
0: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
1: ओनली फोर।
0: मेरी तरफ देखो
1: सू, ओनली फोर। ओह, अब सिर्फ तीन बचे हैं।
0: क्या तीन बचे हैं? व्हाट्स थ्री डियर?
1: तीन पत्तियां।
0: पत्तियां?
1: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू।
0: हाँ हाँ,
1: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
0: क्या लगता है?
1: यही कि बस अब तीन पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
0: क्या जॉन्सी?
1: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
0: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
1: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
0: हाँ
1: सू, अब सिर्फ तीन पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
0: ओ जॉन्सी।
2: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
3: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
2: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
3: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
2: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
3: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
1: अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
2: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
4: जॉन्सी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
2: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
3: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
1: ओह, आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
2: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया। पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
3: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने सू से कहा,
1: सू मेरी दोस्त।
0: हाँ जॉन्सी।
1: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
2: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
1: सू।
0: हाँ जॉन्सी।
1: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
0: हाँ बिल्कुल,
1: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
0: बिल्कुल जॉन्सी।
1: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
0: पत्ता?
1: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
0: हाँ हाँ, मैंने देखा। मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
1: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
0: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
3: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
3: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
0: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
1: बेहतर।
0: ये लो कॉफी पियो।
1: थैंक यू
0: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
1: क्या हुआ?
0: वो मिस्टर बेरमन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
1: कौन बेरमन? वही बुरे कलाकार?
0: हाँ।
1: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
0: हाँ वही।
1: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
0: हाँ वही मिस्टर बेरमन।
1: ओह गॉड,
0: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
1: क्या?
0: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए पर वो आखिरी पत्ता
1: क्यों नहीं गिरा?
0: हाँ
1: क्यों नहीं गिरा?

0: क्या हो सकता है सू?
1: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
2: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बैरमन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
0: पेंटिंग?
2: हाँ।
0: कैसी पेंटिंग?
2: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बैरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
0: ओह, तो वो पेंटिंग है?
2: हाँ।
0: असली पत्ता नहीं है?
2: नहीं।
0: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
2: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
0: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सो उन्होंने बना दिया।
2: हाँ जॉन्सी,
0: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
2: हाँ, उन्होंने बना दिया।
0: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
2: हाँ
0: मास्टरपीस।
2: हाँ
0: मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
3: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
1: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हों।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।

श्रोता सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोराबादी मैदान में 3 दिवसीय झारखंड कृषि व्यापार मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने मेले के लोगों का लोकार्पण किया और टाना भगत परिवारों को पशु शेड निर्माण के लिए 100% अनुदान राशि सौंपी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन ने रांची स्थित लोक भवन में शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को बताया कि नामको मिलिट्री हॉस्पिटल में 19 जून तक विशेष नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि वर्ष 2003 की SIR मतदाता सूची से मैपिंग पूरी होने के बाद राज्य के 1,63,00,000 मौजूदा मतदाताओं को वर्तमान प्रक्रिया में कोई दस्तावेज जमा नहीं करने होंगे। इन मतदाताओं को केवल प्री फिल्ड गणना फॉर्म और रंगीन फोटो देना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने गुमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के क्रियाकलापों की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि देश की खुशहाली के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने आज जिला स्तरीय नारकोटिक समन्वय समिति की बैठक की। उपायुक्त ने मुख्यमंत्री के निर्देशों का हवाला देते हुए पांकी, मनातू और छतरपुर सहित कई थाना प्रभारियों को मादक पदार्थों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया। रांची कल से 2 बड़े खेल आयोजनों के लिए तैयार है। खेलगांव में कल से द्वितीय दक्षिण एशियाई थ्रो बॉल चैंपियनशिप 2026 का आगाज हो रहा है। इसके साथ ही कल से ही खेलगांव में 5 दिवसीय 12वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप भी शुरू हो रही है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:02 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के आज ही कार्यक्रम किसान वाणी में स्वागत है। साथ ही साथ उमेश के दने से जोहार प्रणाम। और आज कार्यक्रम में हमारे साथ बड़े दिन बाद बनल हथिन भाई यशविंदर भाई। तो यशविंदर भाई तोहरो जोहार प्रणाम।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के हम अपने से जोहार प्रणाम करो ये। और कार्यक्रम में शामिल उमेश भाई तोहरो भी हमारे से जोहार। तो देखा उमेश भाई, हमें ढेर सारा जानकारी लेके आ ली है। और सबसे पहले हम शुरुआत में बातचीत करो ये कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है से संतुलित उर्वरक के काम करो है, पर कहा है कि किसान भाई बहन एकरा ये मृदा कार्ड के किस तरह से लाभ लथिन, कैसे लाभ लथिन, हम इन यहाँ से जानकारी बताओ ये। तो सबसे पहले हाँ
0: सही बात कहला भाई। देखा हम इनके किसान भाई बहन खेती बाड़ी करो थी भाई, मगर का है कि भाई देखा उनकर जब माटी बीमार हो जाए तो माटी बीमार हो जाए और देखा कि जो है से जहरीला हो जाए, उपजाऊ कम हो जाए, जेकर कारण से देखा कि सरकार के एक योजना हो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है माटी के जांच करावे वाला जो है एक कार्ड है। और एकर जो है ना यशविंदर भाई, सरकार जो है से फरवरी 2015 में शुरू कर ले है। और ये देखबा कि एगो पहल हले और एकर उद्देश्य हलो ने कि किसान भाई बहन के उनकर माटी के स्वास्थ्य के जो वैज्ञानिक जानकारी हले कि ओकरा देना, ताकि जो है उनकर माटी जो है वो जरूरत के अनुसार सही सही जो है उपजाऊ हो सके और ओकर जो पैदावार है वो बढ़ा सको है।
1: बिल्कुल, देखा उमेश भाई कहा है कि किसान भाई बहन की बता दे भले चाह रही है कि जे मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, सॉयल हेल्थ कार्ड योजना जो है से भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण पहल है। घर में एकर का है कि मुख्य उद्देश्य कह जा सको कि किसान के खेत के जो मिट्टी है, जो गुणवत्ता है, ओकर पोषक तत्व की स्थिति बिल्कुल बना के रखो है। और एकर में का है कि एक अच्छा साझा जानकारी भी प्रदान करो है, साझा कि भाई किसान भाई बहन के मिट्टी में का पोषक तत्व है कि ना है, उनकर में जो है से नाइट्रोजन है कि ना है, या कौन सा उकर में कमी है,
0: बिल्कुल
1: कार्ड के द्वारा पता चल जाए किसान भाई बहन।
0: देखा सर,
1: दूसरा बात का है कि अगर किसान भाई बहन अगर समय समय पर अपन मिट्टी के जांच अगर खेती बाड़ी के समय करा ले हथिन तो उनकर का है कि जे सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से ही पता चल जाते कि हम अगला फसल में हमारा का लाभ हो या न।
0: देखा यशविंदर भाई तो बहुत बढ़िया बात बतेला। और एकर में का है ना कि जांच के जो बाद है किसान भाई बहन के ये बात पता चलो है देखा कि 12 तरह के जो है उनका जानकारी मिलो है भाई। देखा ओकर में पीएच 1 हो गलो, ऑर्गेनिक हो गलो, कार्बन हो गलो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, मैगजीन और बोरान, ये सब जो है ना एक जांच करल जा है। और देखबा यशविंदर भाई कि ये जो कार्ड है एकरा जो है से 2 साल में एक बार जो है ये जारी करल जा है। और एकर में देखबा ने कि माटी में बदलाव होने वाला जो हो है, जो उनका बदलाव होने वाला जो रिपोर्ट आओ है तो ओकरा जो है से बेस तरीके से जो है बतावल जा है।
1: एकर में कहा है उमेश भाई कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के योजना है, किसान भाई के जो मुख्य बिंदु है बता दे रही है।
0: बिल्कुल,
1: मिट्टी के जांच के समय का है कि ई योजना के तहत जो है से हर 2 से 3 साल में खेत से मिट्टी के नमूना एकत्र करल जा सको है।
0: बिल्कुल सही।
1: और एकत्र करके मिट्टी के जांच करा सको थे। दूसरा बात का है कि जो 12 पैरामीटर जो है प्रयोगशाला में जो है से मिट्टी के परीक्षण खातिर ओकर में मौजूदा जो सही बात बताया कि 12 एकर में प्रमुख पोषक तत्व है, जैसे कहा है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, ये सब तू एक पहले बता चुका है। ओकर बार कहा है कि किसान भाई बहन के अगर और जानकारी लेवे चाहिए या फायदा रथिन तो कार्ड वितरण के समय जो है कि ये जांच के आधार पर किसान भाई बहन के जो है से कार्ड मिलो है और उनकर मिट्टी के पता चल जाए कि किसान भाई बहन जैसे का लाभ मिल सको है। दूसरा बात का है उमेश भाई कि एकर में जो है संतुलित उर्वरक के उपयोग और एकर महत्व के बारे में किसान भाई बहन के जानना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: एकर में कहा है कि संतुलित उर्वरक जो है वो है ओकर अर्थ है कि फसल के जरूरत मिट्टी के वास्तविक और स्थिति जो है वो है ओकर मौसम के ध्यान में रख के जो उर्वरक के सही मात्रा में किसान भाई बहन ओकरा में दे पाओ थी दे सको थी।
0: बिल्कुल सही बात कहला भाई। देखा कि किसान भाई बहन जो थी से संतुलित मात्रा में जो है से उर्वरक की करो थी। और ओकर में का है ना यशविंदर भाई कि किसान भाई बहन के ओकर से लाभ भी हन। और लाभ हन की भाई देखा संतुलित रूप से अगर तू ये करला तो ओकर से का है कि भाई किसान भाई बहन के कई तरह के जो है समस्या हो है भाई, तो ओकरा में जो है से जैसे पोषक तत्व की कमी हो गई तो जैसे तू गोबर डालला चाहे केचुआ खाद डालला तो एकर से का है कि भाई उनका जे उर्वरक की कमी है जो पोषक तत्व की कमी है तो ओकरा हम जे है से पूरा कर सको ये
1: सही बात है।
0: और एकर से का है कि भाई देखा उनका जो है लागत में भी जो है वो कम हो जाए है। और एकर से का है कि भाई जब प्रयोग करो थी खेती में जब उनका जब पोषक तत्व के वृद्धि में जो है गुणवत्ता में वृद्धि हो जाए और उनका जो माटी के संरक्षण करे के जो है जो माटी खराब हो जाए बार बार तो ओकरो से जो है से बचाव हुआ है।
1: एक चीज एक में कहा उमेश भाई कि जो जमीन के जो किसान भाई बचाव करा थी बचाव करे मतलब है कि अगर उनका लगत तो कि भाई किस तरह से बचाव करे।

0: है। हाँ, तो सबसे पहले ध्यान देवे के चाहिए कि अधिक मात्रा में किसान भाई बहन के रासायनिक खाद अंधामूंद जो मारो थीन, अंधाधुंध पूरा चला दिए थीन कि हम फसल के हरा कर देवे, फसल के बढ़वार कर देवे, फसल में हम पैदावार बढ़ा देवे।
1: हाँ,
0: किसान भाई बहन के थोड़ा सा जो है से एक परहेज करे पड़ते है। और एक इस्तेमाल खातिर का है कि बंजर भूमि उनकर पास है, चाहे केसरो जमीन है, तो कम से कम जैविक खाद के इस्तेमाल कर रहे थीन। जैविक खाद से उनकर का है कि जमीन के जो मृदा हो है, जमीन में जो पोषक तत्व हो है, वो बढ़ जाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात कहला भाई। दिनों दिन जे रासायनिक खाद डाल डाल के किसान भाई बहन बीमार कर लेते हो अपन माटी के, तो ओकर से बचावे खातिर और ओकर जे जानकारी हो है देखब कि जे हम जे मृदा स्वास्थ्य कार्ड जे कह लिए जे माटी के जांच कराओ थे उनका जे रिपोर्ट मिलो हन भाई, तो एकरे से जो है उनका समय समय पर करावे के चाहिए। और 2 साल में एक बार जो है ओकरा फिर से कहा कि फिर से नवीनीकरण हो जाए। तो यानी तुहर अगर कार्ड पुरान हो गलो है तो फिर से तू ओकरा नवीनीकरण करा दा, तो जेकर से तुहरा जो है से कार्ड जो है बेहतरी से चलते रहतो। और एक चीज और है सुमंदर भाई देखबा कि जे माटी के जांच करावे के जे ये है ये देखा कि कृषि विज्ञान केंद्र में तू संपर्क कर सको है। ओकर बाद देखबा कि जो है कृषि विभाग में जो है हर जिला में हर प्रखंड में जो है से ऑफिस है, तो वहां भी तू संपर्क कर सको।
0: हाँ, हाँ। ये चीज हम किसान भाई बहन की और हम कह चाहे उमेर भाई कि जैविक खाद के किसान भाई बहन जरूर बढ़ावा देन। ओकर कहा है कि स्वास्थ्य जो है मिट्टी के बिल्कुल अच्छी तरह से रहते है। ओकर में कहा है कि साथे साथ जैविक खाद जैसे गोबर खाद हो गए, कंपोस्ट हो गए, अगर में कहा है कि जमीन में देन बेहतर तरीके से उनका जमीन के भी स्वस्थ बनल रहता है, मिट्टी के स्वस्थ बनल रहता है और पैदा भी सही सलामत होता
1: है। हाँ, सही बात कहला भाई। देखा अब हम इन कार्यक्रम में बन लिए तो किसान भाई बहन से और भी बातचीत कर बन।
0: हाँ,
1: मकिन आवाज सुनो ये कुछ जरूरी संदेश।
0: हाँ।
2: चुका
3: कुतला बोल रहा
2: है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
3: परंतु सब नहीं डाले,
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहा है, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जल्दी खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है।

0: तो देखा इस संदर्भ भाई अभी किसान भाई से बातचीत कर रहे थे कि कैसे हम इनके माटी के जांच कराना है और जे कार्ड है भाई स्वास्थ्य मृदा स्वास्थ्य कार्ड ओकरा जे है योजना के लाभ उठाना है।
1: तो अब हमें बातचीत हमें करबे उम्मीद भाई कि कीट आर जे रोग प्रबंधन है किसान भाई बहन के अब समय आ गया खरीफ फसल के या बहुत सारा फसल लगाओ थी तो
0: हाँ
1: कहीं कहीं उनका जो है से परेशान करो हुए कीट,
0: बिल्कुल
1: तो कीट प्रबंधन से किसान भाई बहन कैसे बचे थी और वो अपन फसल के कैसे बचे थी। तो
0: बिल्कुल
1: सबसे पहले हम बात करबे कि जो कीट आर जे रोग हो वो प्रबंधन खातिर जो है से आधुनिक वैज्ञानिक उपाय भी कर जा सको एक में,
0: बिल्कुल
1: जैसे मुख्य रूप से अगर कहा जा सको कि एकीकृत जे नासी जीव हो वो है प्रबंधन खातिर जो है से ओकरा अपनावल जा सको है। दूसरी
0: बिल्कुल
1: बात कहा है कि पर्यावरण खातिर जो है से नुकसान पहुंचावो जरूर है, एक में कहा है कि एक किसान भाई बहन के सुनिश्चित करना पड़ता है कि भाई हम कीटनाशक दवा दबाए पर का है कि कौन सा रासायनिक खाद से परहेज करिए और
0: हाँ
1: जैविक हम ओकर में कीटनाशक दवा दिए।
0: हाँ
1: दूसरी
0: बिल्कुल
1: बात कहा है कि ये जैविक नियंत्रण जो हुआ है मित्र कीट जो हुआ है
0: हाँ हाँ
1: तो ध्यान दे पड़ता है कि ये मित्र कीट के संरक्षण खातिर लेकर में कहा हम इन उपयोग करिए किसान भाई बहन का उपयोग करते हैं। तो
0: बिल्कुल
1: एक में कहा है कि लेडी बर्ड बीटल जो हुआ है और ट्रेकोगामा जो हुआ है तो जैसे मित्र कीट के हानिकारक कीट से उनका अंडा के नष्ट करते हैं, जैसे जो
0: बिल्कुल
1: कीटनाशक हुआ है ओकर में कहा है कि ये मित्र कीट हो है ओकरा ओकर अंडाणु या ओकर अंडा कहीं पूरा बिल्कुल नष्ट कर दे है, तो हम
0: बिल्कुल
1: इनके जो फसल में होवे ला फायदा है वो नुकसान पहुंच जाए।
0: एक बात और कर सको है देखा ये जो है कीटों के नियंत्रण खातिर ले देखवा कि पॉल जो है फॉल आमी वर्म हो भाई तो ये जो है इमामेक्टिन बेंजोएट के जो है जे दवाई के नाम है तो ओकरा भी प्रयोग कर सको है भाई। और दूसर बात हो कि देखा अभी जो हम इनके किसान भाई बिन साग सब्जी लगे लेथिन जो अभी देखवा कि मकई लगल हो तो हम इनके बड़े किसान भाई बहन थे कि भाई अब गर्मा टमाटर जो है से गर्मा खीरा ककड़ी लगे लेथिन तो ओकरों में जो है से उनका जो है कई तरह के रोग व्याधि लग जा है भाई। तो ओकरो खातिर जो है हम इनके समय पर जो है दवाई के छिड़काव करे पड़तो और समय रहते जो है हम इनके बेस तरीके से ओकरा जो है से बचा के रखे पड़तो।
1: उम्मीद भाई किसान भाई बहन जेथिन से रासायनिक खाद या रासायनिक दवा के जो प्रयोग करो थे तो कहे ना जैविक कीटनाशक का भी प्रयोग कर रहे थे, तो
0: बिल्कुल
1: जैविक कीटनाशक के प्रयोग करे मतलब है कि जो हानिकारक जो रसायन हुए होकर जगह पर अगर नीम के तेल और अगर किसान भाई बहन अगर कलौंज के खली
0: हाँ
1: या
0: हाँ
1: नीम के तेल ये सब के अगर वो इस्तेमाल करो थे तो
0: बिल्कुल
1: उनका ज्यादा फायदा होता है और किसान भाई बहन के कहीं कहीं
0: हाँ
1: जो रासायनिक खाद या रासायनिक दवा के जो प्रयोग कर रहे थे ओकर से निजात मिल सको है।
0: एक बात और कहल चाहे भाई सुंदर भाई देखा मित्र कीट जैसन के तू कहला तो सबसे पहले अगर हम इन पहचान कर लिए ओकरा तो एकर से का हो तो देखा लेडी बर्ड हो गलो बीटल हो गलो परजीवी हो गलो ततैया सिरपीड हो गलो मक्खी ई सब का है ना कि लाभकारी जीव के जो है पहचानल जा सको है और देखा कि जे हानिकारक कीट हो ओकरा जो है से सब खा जाते
1: हाँ हाँ
0: तो इस तरह से हम जो है मित्र कीट के पहचान सको है। और देखा दूसरी बात है कि शत्रु कीट जो है तो शत्रु कीट खाती ले तो का करा कि बीच बीच में डंडा गाड़ दा
1: हाँ हाँ
0: ओकर में जो है बोतल में जो है एगो पीला कलर के आओ हो लेप साटे वाला तो ओकरा साटवा तो तोहरा जो दुश्मन कीट है वो ओकर में जो है
1: या
0: चिपक
1: चिपक जी तो
0: तो एकर से भी जो है हम एगो निवारण के उपाय कर सको ये। तो देखा यशविंदर भाई हम इन तो भाई कार्यक्रम में बनल ही है और भी बातचीत करबे किसान भाई इनके देखा कि अब धर का है कि एगो जानकारी भी लेके लिए भाई अब धर जे गर्मी अब जो है से हम इनके अब लगभग खत्म होने वाला है तो किसान भाई बहन अब बरसाती जो है से भी खेती करते
1: फसल की तैयारी कर ले
0: फसल की तैयारी भी कर लेती तो ओकरे पर जो है एगो जानकारी लेके लही तो जानकारी देवे थथिन
1: जो टमाटर और फूलगोभी के जो खेती किसान भाई बहन तैयारी कर ले थे
0: हाँ
1: वो किसान हथिन शिवदेव कुमार रजक हथिन और जे ग्राम मनाथु के हथिन प्रखंड सिमरिया और ये जे इनकर से बातचीत कर लेते से हथिन उमेश रजक।
0: तो आवाज सुनल जाए जानकारी
2: समय समय पर हम अपने कार्यक्रम में अपने किसान भाइयों को मुलाकात करवाते हैं और कैसे खेती बाड़ी करते हैं क्या तरीका है तरीका अपनाते हैं। यहाँ एक किसान है इन्हीं से जानते हैं कि कैसे खेती बाड़ी करते हैं। इससे पहले जानते हैं इनसे इनका परिचय। आपका शुभ नाम क्या हुआ?
3: मेरा शुभ नाम शिवदेव रजक हुआ। मेरा गाँव मनातू है प्रखंड सिमरिया है चतरा जिला से बिलोंग करते हैं।
2: तो हम जानना चाहेंगे कि आप खेती बाड़ी पिछले कितने सालों से करते आ रहे हैं?
3: हम तो काफी सालों से खेती बाड़ी करते आ रहे, तकरीबन 15-20 साल का तजुर्बा है खेती करने का।
4: अच्छा,
3: गर्मा फसल भी कभी कभी कर लेते हैं। इस बार तो लत्तर सब्जी लगाए थे, कद्दू, कोहरा, करेली, खीरा,
4: हाँ,
3: इसी तरह लगवाए थे।
2: अच्छा, तो अभी क्या स्थिति है लत्तर जो आप साग सब्जी लगाए हुए?
3: थोड़ा सा पानी का प्रॉब्लम से कुछ कुछ तो मर गया है और कुछ कुछ है।
4: अच्छा,
3: जमीन पर और कुछ कुछ बचा हुआ है।
2: अच्छा अच्छा, तो अब गर्मी लगभग समापन की ओर है, तो अब जो बरसात का साग सब्जी जो है, बरसात के लिए तैयारी क्या क्या करेंगे आप?
3: सबसे पहले तो हम लोग फूलगोभी 15-22 है, टमाटर है, बहुत तरह से कुंदन टमाटर है, नवीन टमाटर है, बहुत तरह का बीज है जो सक्सेसफुल जो समझ में आता है वो टमाटर लगाते हैं हम लोग। कम भी लगाते हैं तो 20-25 कट्ठा एक एकड़ में कम से कम तो लगाना चाहिए किसान भाइयों का।
2: अच्छा, तो ये जो आप बता रहे हैं तो इसका तैयारी किस प्रकार से करते हैं? जैसे टमाटर का आप नर्सरी तैयार करते हैं तो उसके लिए क्या क्या तैयारी करना होता है आपको?
3: और सबसे पहला तो हम लोग बेड पे ही प्रैक्टिस किए हैं, अभी आ गया है ट्रे में।
4: अच्छा,
3: ट्रे में अच्छा खासा एक एक दाना करना पड़ता है और वर्मिक कम्पोस्ट एक खाद है, उसको लेके डालते हैं हम लोग।
4: अच्छा,
3: उसके साथ दाना पे बोया जाता है, उसके बाद उगता है टमाटर और जल्दी तैयार हो जाता है। और गोभी जो है, गोभी थोड़ा 10-5 दिन लेट होता है।
4: अच्छा, अच्छा,
3: उसी हिसाब से हम लोग रोपाई करते हैं।
2: अच्छा, जैसे आप शेड बनाए, नर्सरी तैयार किए, जो गाछी आप करते हैं तो कितना दिन में तैयार हो जाता है?
3: टमाटर का गाछी लमसम 15-20-22 दिन तक हम लोग रोप देते हैं।
4: अच्छा,
3: रोपापन हो जाता है और फूल जो है तकरीबन 28-29 दिन।
4: अच्छा,
3: का अंदर हम लोग रोप लेते हैं।
2: अच्छा, जैसे आपका गाछी तैयार हो गया नर्सरी, उसके बाद आप उसको

0: कितने दिन में पास चढ़ाना होता है आपको?
1: लमसम लमसम रोपने के बाद 10 से 15 दिन तक खुरपी कर देते हैं, पास जो चढ़ाते हैं हम लोग मिनिमम गोरी जब टमाटर आ जाता है तब
0: पास आने लगता है,
1: उस टाइम पास चढ़ा देते हैं।
0: अच्छा ये बताइए, जैसे आप रोपाई कर दिए, पास भी चढ़ा दिए, उसके बाद का क्या काम होता है? जैसे खुट्टा गाड़ते हैं या फिर रस्सी बांध के उसको खींचते हैं, क्या तरीका होता है?
1: हाँ खुट्टा गाड़ के पहले तो हम लोग सिंगल सिंगल खुट्टा गाड़ते थे, अभी टाना तार पे कसना स्टार्ट कर दिए हैं। टाना तार डालते हैं,
0: अच्छा
1: मोटा मोटा थोड़ा खुट्टा लेके टाना तार डालते हैं और रस्सी से बांध देते हैं।
0: अच्छा तो कितना कट्ठा में आप जो है टमाटर की खेती करने वाले हैं?
1: लमसम 2 एकड़।
0: अच्छा 2 एकड़ में। और जैसे आप फूलगोभी को बता रहे हैं, फूलगोभी की खेती कितना में करते हैं?
1: फूलगोभी 1 एकड़ प्लस रहता है।
0: अच्छा अच्छा, तो ये बताइए जैसे उसमें जो है पानी पटाने का भी जो है ये होता है, तो किस अंतराल में कितने दिनों में पानी पटाते हैं?
1: पानी रोपते हैं उस टाइम तो जड़ तर तो पानी देना अनिवार्य है, नहीं अगर पानी दे तो मर जाता है पौधा।
0: अच्छा।
1: उसके बाद जड़ लगने के बाद अगर बारिश ना हो तो व्यवस्था करना पड़ता है, पटाना पड़ता है मशीन उशीन लगा के। तो जमीन जिस तरह का हाल या सुखा गया है उस हिसाब से पानी देते हैं।
0: अच्छा एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि रोग वगैरह भी आते हैं?
1: हाँ रोग वगैरह बहुत,
0: तो कौन कौन सा बीमारी आपको परेशान करता है?
1: ज्यादातर तो अगला बार जो फूल में लग गया था पंखी लग गया था।
0: हाँ।
1: वो पंखी का बहुत सारा दवा दिए कीड़ा का, लेकिन वो समझ में नहीं आया।
0: अच्छा
1: कीड़ा का एक है जो पिल्लू हम लोग बोलते हैं, रिमोन यूज करते हैं, वो बहुत अच्छा कीड़ा का दवा है।
0: अच्छा अच्छा,
1: सजेंटा अच्छा, का है।
0: उसका जो है मात्रा क्या रखते हैं जैसे दवा पानी का?
1: दवा पानी का, दवा पानी का 20 लीटर का जो जार्किन है वो हिसाब से ML के हिसाब से हम लोग डालते हैं।
0: अच्छा। और
1: 50 लीटर का अगर रहा दवा तो उस हिसाब से दवा हम लोग 1 ML में एक लीटर पानी में 1 ML दवा देते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: अगर 20 लीटर पानी हो तो 20 ML देते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, तो जैसे फूल झड़न का भी समस्या होने लगता है तो उसके लिए क्या उपाय करें?
1: हाँ फूल झड़न का नया नया रोग जब आ जाता है हम लोग का टमाटर में और वगैरह में, तो जब समझ में नहीं आता है तो जिस दुकान से लेते हैं उस दुकान में जाकर बताने के बाद दवा चेंजिंग होता है।
0: अच्छा अच्छा,
1: अभी नया नया बहुत सारा दवा आ गया है। कुछ कुछ ऐसा भी दवा है कि अगला बार कुछ लोग उल्टा दवा चला दिए थे तो पेड़ मर गया था।
0: तो खेती बाड़ी आप कर रहे हैं तो क्या आपको जो है कहीं से ऋण वगैरह भी लिए हैं? किसान क्रेडिट कार्ड है
1: वैसा? ऋण वगैरह जरूरी पड़ता है तो लेना पड़ता है, हम ऋण लेके ना क्रेडिट है, क्रेडिट कार्ड ने लिए नहीं ऋण, KCC वगैरह नहीं करवाए हैं।
0: हाँ हाँ,
1: तो खुद से हम अपने से करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो जैसे टमाटर आपका तैयार हो जाएगा कितना दिन में टमाटर निकलने लगता है?
1: हाँ टमाटर निकलने का टाइम लमसम लमसम रोपने के बाद टमाटर जब पकना स्टार्ट हो जाता है तो 65-70 दिन।
0: अच्छा।
1: लमसम जैसा अगर थोड़ा सा जड़हन एक लोमन टमाटर आता है उस हिसाब से कोई टमाटर लेट से पकता है कोई जल्दी में पक जाता है।
0: अच्छा,
1: तो मिनिमम अगर लोमन टमाटर हम लोग लगाते हैं तो 70-75 दिन पकना स्टार्ट हो जाता है।
0: अच्छा, तो जैसे आपका टमाटर मान लीजिए पकने लगा, टमाटर बिक्री करने के लिए जाते हैं तो क्या बाजार की व्यवस्था कहाँ होता है? आप बिक्री के लिए आपके पास व्यापारी वर्ग के लोग आ जाते हैं?
1: व्यापारी लोग तो पहुंच जाते हैं, फोन से बात करके पहुंचाते हैं, घर पे ही उठा लेते हैं टमाटर।
0: अच्छा,
1: और अगर कम हो गया टमाटर तो फिर सिल्ला हमारे लोकल मार्केट है वहाँ व्यापारी आते हैं।
0: अच्छा अच्छा, सिल्ला सब्जी मार्केट है, सिमरिया है आपका, हजारीबाग भी सब्जी मार्केट आ जाते हैं, तो इस तरह से जो है आपका बिक्री करने का परेशानी नहीं होता है।
1: नहीं,
0: तो क्या साल भर में आपका क्या आमदनी हो जाता है खेती बाड़ी से?
1: बस चल जाता है, इधर उधर जो खर्च है उससे मैनेज हो जाता है।
0: अच्छा, तो जो आपके किसान जो बात सुन रहे हैं, जो किसान भाई हैं, कई किसान हैं कि जो बाहर चले जाते हैं काम करने अपने जमीन घर में रहते हुए भी, तो क्या संदेश के रूप में उनको बताना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई बाहर जाते हैं कम मजदूरी में खेती बाड़ी छोड़ के जाते हैं?
1: हम तो ये कहेंगे कि अपना जमीन छोड़कर ना जाएं, अपने जमीन में जो तवाद करें और अच्छे से आप प्रैक्टिकल करके अपना खेती करें। अभी बहुत तरह से विधि व्यवस्था बना हुआ है खेती करने का।
0: हाँ।
1: बहुत उन्नत किस्म का आया है सारा चीज, नया नया बीज आया है, नया नया सारा चीज सिस्टम आपको बताया जाएगा, जिस दुकान में आप लीजिएगा किस हिसाब से लगाना है, कितने दिन में दवा देना है।
0: हाँ।
1: सारा कुछ बताएगा दुकान वाले, कुछ कुछ लोग जो जानकारी दुकान है उन लोग बताते हैं।
0: बिल्कुल, तो जो बात सुन रहे हैं जो युवा किसान है, जो महिला किसान है, उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि खेती बाड़ी आज के समय में बहुत जरूरी है?
1: बहुत

0: जरूरी है खेती बाड़ी। अगर नहीं खेती बाड़ी की जगह महंगाई जैसा दौर में चल रहा है, वो तो आसमान छू जाएगा। हम लोग तो मिट्टी से संबंधित हैं, किसान भाई।
1: बिल्कुल। तो शिवदेव रजक जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतना महत्वपूर्ण समय देते हुए इतना बढ़िया जानकारी दी है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक्स सर।
2: तो देखो मेरे भाई, जानकारी दे रही थी कि टमाटर और फूलगोभी के खेती की तैयारी कैसे किसान भाई में करो थी। तो
1: बिल्कुल।
2: जानकारी दे रही थी से हेल्थिन शिवदेव कुमार रजक,
1: हाँ
2: और जो हमने से बातचीत करो थी से हेल्थिन उमेश रजक। तो फिर हम किसान भाई में से एक बार हम कह चाहे कि जो बरसात के मौसम है, बरसाती टमाटर जो बरसाती लगाल खोजो थी,
1: हाँ
2: बरसाती
1: हाँ
2: फूलगोभी लगाल खोजो थी,
1: बिल्कुल।
2: उनका खातिर का है कि मुनाफा कमा सको थी बढ़िया। पर का है कि एक खातिर जरूरी बात यह है कि खेत में जो जल भराव ना होवे के चाहिए, जल जमाव ना होवे के चाहिए।
1: हाँ हाँ
2: काहे कि बारिश के पानी से दोनों फसल के खराबी होवे के ज्यादा खतरा बढ़ जा है।
1: बिल्कुल। देखा, एक खातिर जो है ना, हमें के किसान भाई बहन के जो है पानी का निकासी करना चाहिए। आ देखा कि जो है हमें जो है घरे दन को ये कि पाइप बनाना,
2: हाँ
1: तो पाइप बना के अगर तू कर ला ना, और पाइप में जो है अगर टमाटर रोपाई कर ला, तो तोरा जो डोंग बनेला ओकर भी जो है से ओकर से पानी निकल जितो। और दूसरी बात है कि तू रस्सी बांध के चाहे तार से जो है बांध के अगर कर ला, खूंटा गाड़ के कर ला, तो तोहर टमाटर जो है से बर्बाद हुए से
2: एक में एक
1: बचितो।
2: चीज का है उम्मीद भाई कि
1: हाँ
2: हम मिट्टी के हमें किस्म बता दे ही है।
1: बिल्कुल।
2: किस्म का है कि जब बरसाती टमाटर के समय में लगाल खोजो थीन, तब बरसात के मौसम में जो टमाटर उगाए खातिर जो जल निकासी वाला जो जमीन हो है,
1: हाँ हाँ
2: ओकर में का है कि दोमट, ये चाहे तो बलुई दोमट मिट्टी एकर में सबसे उत्तम है, सबसे अच्छा है। और
1: बिल्कुल।
2: एकर का है कि जो बीज के जो रोपाई है एकर में से ये ऐसा करे चाहे कि जो वर्षा के जो सहनशील हो है, सह सको है एकर में।
1: हाँ
2: जैसे किस्म अगर हम कहा चाहे ओकर किस्म का है टमाटर के,
1: हाँ
2: तब
1: हाँ
2: पूसा रूबी हो है, अरका मेघाली हो है, या
1: बिल्कुल।
2: हाइब्रिड में अगर किस्म के अगर चयन करो थी किसान भाई बहन, तो 20 से 25 दिन एकर में कहा है कि पुराना नर्सरी के रोपाई एकर में
1: हाँ
2: किसान भाई बहन कर सको थी।
1: बिल्कुल।
2: दूसरा बात कहा है कि अगर बेड के लिए एक विधि है से पानी के जमाव से सबसे बचे के अच्छा उपाय का है कि ऊंचा बेड बने थे।
1: हाँ
2: अगर
1: हाँ
2: किसान भाई बहन के पास अगर जमीन अगर भर जाए, जमीन के लेवल में अगर पानी आ जाए,
1: बिल्कुल।
2: तो जमीनवा से ऊपर अगर बेड रोहे टमाटर के जहाँ पौधा उपजे लगे थे, वो पौधा तैयार कर रहे थे, तो ज्यादा बेहतर होता है। एकर में कहा
1: बिल्कुल
2: है कि बेड से बेड की दूरी कम से कम 3 से 4 फीट होवे के चाहे। जैसे अगर एक बेड किसान भाई बहन यहाँ कर लेते हैं,
1: हाँ
2: तो
1: हाँ
2: कम से कम 3 से 4 फीट अगला बेड की दूरी होना चाहिए एकर में।
1: बिल्कुल।
2: और जो है से पौधा से पौधा की दूरी है से कम 1.5 से 2 फीट होनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात कहला भाई। अगर ये सब बात के अगर हम इनके किसान भाई बहन अगर ध्यान देथिन, तो एकर से का होते कि उनका जो टमाटर के जो खेती करते हैं ओकरा में जो है उनका काफी फायदा मिलता। दूसरा बात हो, देखा तो बहुत बढ़िया बात बतेला कि बेड से बेड के दूरी रखतीन। और देखा मल्चिंग और मचान जो है विधि से भी अगर करतीन, तो ओकरो से जो है उनका खरपतवार कम हो है। और एकर में देखबा कि पौधा और देखा लकड़ी के प्लास्टिक जो है ओकरा तार के सहारा से जो है से ओकरा बांध देवा, ताकि जो है फल जमीन पर गीला ना हो तो और सड़तो ना।
2: बिल्कुल सही बात बतेला तू भाई। अब
1: तो
2: एकर
1: देखा
2: में
1: अब जो है यशविंदर भाई कार्यक्रम में जो है अमीन अब बाजार भाव के दिन चलो ही है, और किसान भाई बहन के बाजार भाव सुना हुई है।
2: तो देखा उमेश भाई कि बाजार भाव आज जो है जे लाल आलू जो है से 15 से 20 रुपये प्रति किलो है।
1: हाँ हाँ
2: ओकर बाद कहा कि सफेद आलू जो है से 12 से 15 रुपये प्रति किलो है,
1: बिल्कुल।
2: प्याज 15 रुपये से 20 रुपये प्रति किलो है, फूलगोभी जो है से 50 रुपये से 60 रुपये प्रति किलो है,
1: हाँ
2: और
1: हाँ
2: पत्ता गोभी जो है पत्ता गोभी 30 से 40 रुपये प्रति किलो है, पटल 30 से 40 रुपये प्रति किलो है।
1: बिल्कुल सही बात कहला भाई। किसान भाई बहन के जो है गाजर जो हो से 30 से 40 रुपए प्रति किलो हो, और शिमला मिर्चा 50 से 60 रुपए प्रति किलो, बीन हो 35 से 40 रुपए प्रति किलो, मुराय है 30 से 40 रुपए प्रति किलो, धनिया पत्ता है 80 से 100 रुपए प्रति किलो, और आदि हो 80 से 100 रुपए प्रति किलो। देखा खीरा के बात करिए, खीरा हो 30 से 40 रुपए प्रति किलो, बिलौती है 20 से 30 रुपए प्रति किलो, लाल साग हो 30 से 35 रुपए प्रति किलो, और पालकी साग हो 30 से 35 रुपए प्रति किलो।
2: अब आज के जो अधिकतम तापमान है उमेश भाई से 37 और आज न्यूनतम जो तापमान है 28 डिग्री सेल्सियस है, आज आर्द्रता है, आज जो नमी है वो 43% है।
1: और अगर
2: बात का है कि अगर कल के बात करिए
1: तो कल देखा कल के हो अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम हो 28 डिग्री सेल्सियस।
2: तो अभी हमारे पास समय है और हम किसान भाई बहन के ही बता देवे चाह रही है।

0: कृषि में जो ड्रोन तकनीक हो है ओकर उपयोग किसान भाई बहन कैसे करो थी। तो सबसे एक में कहा है कि कृषि में जो ड्रोन तकनीक हो है एक खातिर कहा है कि उपयोग से खेती के जो पारंपरिक तौर तरीका हुआ है एक बड़ा बदलाव एक में आओ है। एक में कहा है कि इस समय से कहा है कि श्रम और लागत के बचाव है, साथ ही साथ जो है कीटनाशक और जो एक उर्वरक जो सटीक हुआ है छिड़काव करे में जो फसल में पैदावार बढ़ाओ है।
1: बिल्कुल सही बात।
0: बात कहा है अगर मैं एक चीज और कहा है कि जो ड्रोन के जो तकनीक हुआ है उसका प्रमुख उपयोग किसान भाई बहन कैसे करते हैं। तो जैसे कहा है कि दवा और कीटनाशक के जो छिड़काव किसान भाई बहन करो होते हैं तो ड्रोन के जो मदद जो हुआ है से खेत में कुछ समय तक कहा है कि मिनट में जो तरल कीटनाशक हुआ है ओकर में खरपतवार जैसे नाशक हो गए और तरल उर्वरक के समान जो रूप में जो छिड़काव करल जा सको है। तो ओकर खातिर कहा है कि एक खातिर रसायन के जो बर्बादी हुआ है और खासकर किसान के जो जहरीला रसायन के जो संपर्क में आओ है वो फसल के जो नुकसान करो ओकर से बचत हुआ है।
1: बिल्कुल सही बात कहला भाई। देखा किसान भाई बहन के जो ड्रोन तकनीक हो ये काहे के भाई तेजी से बढ़ रहा लो और एकर से काहे के भाई किसान भाई बहन के समय भी बच जाए और दवाई भी जो है बर्बादी न हुए। और एकर में देखबा कि जो फसल के जो पैदावार होने वो जो है से कहा के क्रांतिकारी साबित हो रहा लो। और एकर में देखबा कि ये ड्रोन जो है से दवाई और कीटनाशक के छिड़काव खातिर जो है बहुत बड़ा मदद साबित हो रहा लो। काहे कि भाई 15 से 20 मिनट में तो एक एकड़ खेत में जो है कीटनाशक चाहे दवाई चाहे फिर नैनो यूरिया ये सब के जो है से बेस्ट तरीके से तू छिड़काव कर सको है। दूसर बात है कि तू ड्रोन से जो है अपन जो फसल लगे ले हा मल्टीपैक्टस और थर्मल सेंसर लगल हो ओकर से कहे कि भाई अपन तू फसल के स्वास्थ्य नमी के भी जो है स्तर के तू जांच कर सको है और बीमारी के रियल टाइम जानकारी देते रहो भाई। देखो कि माटी और सिंचाई के जो अगर बात करिए तो मैपिंग द्वारा जो है एकरो गुणवत्ता जो है से पहचान लो है।
0: एक में कहा है कि किसान भाई बहन के अगर लाभ के तरीके से देखल जाएगा तो सेकंड में समय और श्रम दोनों बचो है। जैसे समय भी बचतो मेहनत भी बचतो। ओकर बाद कहा है कि जहाँ जो पारंपरिक खेती करो थी ओकर में कहा है कि कई एकड़ में लगभग जैसे छिड़काव करल जा सको है एकड़ में घंटों में जहाँ दिन भर समय लगो ले किसान भाई बहन के तो दिन भर के एवज में कहा है कि एक घंटा में दिन भर के काम एक घंटा में किसान भाई बहन कर लेते हैं।
1: देखा भाई एकर से कहा है नियसमेंद्र भाई तू रोजगार के रूप में भी एकरा जो है से देख सको है। देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में हम के जो युवा थे वो प्रशिक्षण ले करके ड्रोन पायलट बन सको थी भाई। और देखा कि खुद के ड्रोन जो है से एग्रीकल्चर के जो है जरिए अपन किसान के खेत किसानी में जो है छिड़काव करके अतिरिक्त जो है से अपन आय कमा सको थी। और एकर में कहा है कि ड्रोन तकनीक के बारे में अगर अधिक थोड़ा जानकारी लेना हो तो देखा कि किसान भाई बहन जो है ई टेक्नोलॉजी जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी ओकर प्रशिक्षण ले सको है।
0: तो उम्मीद भाई यह जानकारी के साथ हमें कि किसान वाणी कार्यक्रम से भी जाए के बेरा हो रहा है।
1: हाँ,
0: तो कहे ना हमारा यशमेंद्र के
1: और हमारा उमेश के अनुमति दा
0: जोहार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण भारत सरकार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, 5:34 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बारी।

0: खेती बाड़ी कार्यक्रम सुने रहो सभी किसान भाई बहन के अपने से हम जोहार प्रणाम करो ही है। और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल उमेश भाई तोहरा भी जोहार
1: जोहार प्रणाम है सुंदर भाई, और आज के कार्यक्रम में फिर से एक बार हाजिर है और सभी ग्रामीण भाई बहन के फिर से हमें स्वागत करो ही है। देखा भाई हम इन कार्यक्रम में किसान भाई बहन खतीले ग्रामीण भाई बहन खतीले कई तरह की जानकारी लेकर आओ है भाई, उनका उनका मनोरंजन भी कराओ है और जरूरी संदेश भी सुनाओ है भाई। तो देखा आज हम जो है से बातचीत कर पे अपन ग्रामीण भाई बहन से कि देखा लाह के जो उत्पादन हुआ है और मधुमक्खी पालन ये का है कि भाई एकर से हमें अपन आय के आमदनी बढ़ा सको ही और अपन जे आर्थिक स्थिति हो ओकरा मजबूत कर सको ही भाई।
0: देखा उमेश भाई अगर मैं कहा है कि जो मधुमक्खी पालन जो है तो किसान भाई बहन खातिर जो है से एक बहुत शानदार और एक कम लागत वाला जो है से स्वरोजगार है
1: बिल्कुल
0: और ओकर साधन भी है। एकर में कहा है कि एकरा से सिर्फ शहद और मोम जैसे उत्पाद करा जा सको है। एकर में कि किसान भाई बहन शहद भी ले सको थी यानी मधु भी ले सको थी और एकर में मोम भी तैयार कर सको थी।
1: बिल्कुल
0: साथ ही साथ एकर में कहा है कि फसल के जो है प्रांगण में मिलो है मदद और अगर खास तौर पर कह जा सको कि पैदावार भी बढ़ो है।
1: बिल्कुल सही बात कहला भाई। देखा लाह के खेती करे खातिर जो है से देखा बैर के गाछ हो गलो चाहे परास के गाछ है तो देखा लाह एक तरह से कीड़ा हो भाई, ओकरा नाम है लाह लेकिन वो एक कीड़ा है और कीड़ा के जो है ओकरा परास के पेड़ में जो है ओकरा चढ़ा देवल जा है। ओकर बात का है कि देखा पूरा पेड़ में जो है से वो ओकरा जो है से चढ़ जा है और ओकर जो छिलका है ओकरा छील के ओकर बाद लाह के जो है से सुखाओ थी भाई। और ये देखा कि बैर के गाछ हो गलो चाहे फिर जो परास के कह लियो से परास के गाछ और हम इनके देखबा कि झारखंड प्रदेश में जो हो न लातेहार जिला में कुछ जो है से हजारीबाग जिला में कुछ जो है से बालू माती यानी कि जो है कुछ एरिया में अभी जो है लाह के अधिक खेती करा जा रहा है और धीरे धीरे एकर का है ना कि पूरा जो है से हर किसान भाई बहन अब एकरा जो है धीरे धीरे एकर से प्रेरित होते थे और लाह की खेती करे के अपना रहे थे।
0: एक में कहा जो मधुमक्खी पालन के जो प्रमुख चरण हुआ है उमेश भाई कर में कि शुरुआती स्तर पर कहा जा सके किसान भाई बहन जैसे से आजीविका खातिर जो है से मधुमक्खी पालन शुरू करो थी और एक में एक खातिर बुनियादी बात के जानना भी बहुत जरूरी किसान भाई बहन के हुआ है जिससे कहा है कि जाति के चुनाव जो हुआ है तो हमें के भारत में खास करके व्यवसायिक तौर तरीके पर अगर एक रूप में देखा जाए एपिस और मेलिफेरा और एपिस सेरेना इंडिका जैसे मधुमक्खी के पालन करे से किसान भाई बहन के बहुत लाभ भी हुआ है और ये बहुत अच्छा तरीके से करल जा सको है।
1: बिल्कुल
0: एक में कहा है कि फिर आवश्यक ये उपकरण हो है जिसे बॉक्स हो गया छत्ता वाला सुरक्षात्मक कपड़ा भी हो चाहे जिसे कह जा सको कि दस्ताना और घूंघट जैसे दस्ताना हाथ में पहन सको थी और घूंघट जो है कि कम से कम अगर माथा में जैसे किसान भाई बहन के हम बताओ चाहोगे कि जिस तरह से मोटरसाइकिल चलाओ थी सब तो मोटरसाइकिल में अगर हेलमेट पहनो थी तो ठीक उसी तरह से घूंघट एकर में लगाना बहुत जरूरी है। कहे ना कि हम मधुमक्खी पालन जरूर कर रहे हैं पर कहा कि हमारा डंक भी तो मार सको है।
1: देखा बात है ना कि जे मधुमक्खी पालन करो थी भाई वो सब भी जानो थी कि तू जो है अपन शरीर में अगर पूरा मधु के लगा ला तो तोहरा जो है से मधुमक्खी काटता थून तो तोहरा जो है से अगर विष ना लगतो तो ई जो है से वो सब के एक कहा कि अपन सेक्रेट हुआ है सबके नया पता थी। दूसर बात हो कि देखा अब इधर कहा है कि भाई टाट टिकुल में पूरा सुरगुजा लग जाए गेंदा फूल लग गलो तो ओकर में कहा है कि भाई बक्सा जे तू कहला कि बक्सा लगा के जे किसान भाई बहन करो थी तो ई कहा हो कि व्यवसायिक रूप लेते जा रहे हो धीरे धीरे और मधुमक्खी पालन के जो है आज के बाजार में जो है मधु के काफी मांग भी बढ़ रहा लो। ई देखा कि देखो हर घर में जो है कोशिश करो थी कि हम मधु जो है से खरीदिए और मधु जो है खाए से ओकरा जे ओकर ताकत है ओकर अलग तरह से जो है जरूरत भी है।
0: बिल्कुल सही बात है। एक में कहा है कि और एक चीज हम बता चाहो ये कि जो जगह हो छत के जो ऐसा जगह कर चाहिए घर में जगह पर रखे के चाहिए और जहाँ आसपास फूल पौधा खेत और बगीचा भरपूर होवे के चाहिए घर में मधुमक्खी के रहने खातिर मधुमक्खी के घूमे खातिर कहीं कहीं जगह चाहिए।
1: बिल्कुल तो देखा इसमेंद्र भाई कार्यक्रम में तो बना लिया और भी बातचीत करवे लेकिन आवाज सुनो ये कुछ जरूरी संदेश।
2: आ वृद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: तो देखा सुमेंद्र भाई, अभी हम जो है से जरूरी संदेश सुन लिए, अब जानकारी के देने चलो ये। देखा हम इनके किसान भाई बहन आओ थी भाई, और जे स्वरोजगार की बात करो थी भाई। हाँ, देखा हाँ। बहुत किसान भाई बहन तो कि खेती बाड़ी के साथ साथ शुकर पालन कर ले, तो मछली पालन हो गलो, मुर्गी पालन हो गलो, पशु पालन हो गलो, कई तरह से जो है से खेती बाड़ी के साथ साथ तू कर सको। हाँ, तो आज देखा कि एकरे में जो है हम इन किसान भाई बहन जो है तीसरे भाई शुकर पालन करो थी और मछली पालन, और एकर से देखवा ना कि काफी जो है से वो अपन आमदनी के बढ़ा रहा थी। और हम इनके किसान भाई बहन ऐसा नहीं कि भाई देखा कि दिल्ली तक चल जाती भाई पुरस्कार
0: लगे। हाँ।
1: तो एकरे में जो है आज हती कृष्ण कुमार राय, और उनकर से बातचीत कर लेती अश्विंदर कुमार जी।
0: यहाँ पर शुकर पालन और मछली पालन करते हुए इनका जो है दिल्ली में पुरस्कार मिल रहा है।
1: बिल्कुल, तो देखा कि इनकर जो अनुभव है ओकरा सुनो ही, और किसान भाई बहन के सुनाओ ही।
6: हम आए हुए हैं मधुआ खाप चतरा, और यहाँ एक जो है सफल युवा किसान है कृष्ण कुमार राय। तो आइए जानते हैं इनसे कि किस तरह से इस समेकित प्रणाली की पशुपालन कर रहे हैं, और इनके द्वारा पता ये भी चला है कि ये दिल्ली अवार्ड के लिए भी चयनित किए गए थे। तो कृष्ण जी, आपको इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
7: नमस्कार किसान भाइयों को, मेरा नमस्कार।
6: तो आप समेकित कृषि प्रणाली के माध्यम से आप कार्य कर रहे हैं, तो कैसे कार्य कर रहे हैं?
7: हम यहाँ मछली पालन और शुकर पालन दोनों व्यवसाय को एक साथ ही कर रहे हैं। नीचे हमारा 3 एकड़ का लगभग तालाब है, उसमें मछली पालन होता है, और उसके पिंड पे मेड़ के ऊपर हमारा फार्म बना हुआ है जो पिगरी फार्म चलता है। हाँ, साथ दोनों काम जुड़ा हुआ है। जितना वेस्टेज होता है शुगर का वो सारा मछली पालन में काम होता है, वो उसका शुद्ध खाना बन जाता है। 80% जितना शुगर का चारा जो होता है वो मछली का भोजन बन जाता है। हाँ, तो इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा इनकम होता है हमारा, कि खाना का शुद्ध पैसा हमारा बच जाता है।
6: कृष्ण जी, आप इस किसान बंधु अगर शुरुआत करना चाहेंगे तो आपसे क्या उपदेश लेना चाहेंगे, और आप क्या उपदेश देंगे जो शुरुआत कैसे करें, चाहे वो शुगर पालन हो या मछली पालन?
7: देखिए, बिजनेस से शुगर पालन, मछली पालन व्यवसाय जो है, या कोई भी काम है, धैर्य के साथ निरंतर 4 से 5 साल आदमी को करना होता है। तभी इसमें कुछ रिजल्ट आ पाता है। अब बहुत देखे होंगे कि शुगर पालन, मछली पालन, पोल्ट्री फार्म कुछ भी किया, या दुकान भी कुछ खोलता है, तो 1 साल 2 साल 6 महीना, मैंने 5-6 महीना, साल भर 2 साल होता है, तो उसका मैंने दिमाग में पता नहीं क्या बैठ जाता है, वो सोचता है नाफा नहीं है, नुकसान है। हाँ, इस तरह से मैंने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, धैर्य रख पाता है, जिसके चलते लोग फेल हो जाता है। धैर्य रख के बराबर निरंतर रूप से वैज्ञानिक पद्धति से अपना काम करें। हाँ, तो निश्चित है कि सफल होगा, एकदम निश्चित 110% मानते हैं कि सफल हो जाएगा। इसलिए हम किसान भाई को कहना चाहते हैं कि धैर्य रख के वैज्ञानिक पद्धति से उचित तरीका अपनाकर सिस्टम से अगर काम करें तो लगातार 4 से 5 साल तक कुछ रिजल्ट आ सकता है। 1 साल 6 महीना 2 साल में चाहेगा तो संभव नहीं है।
6: हाँ, तो आप जो तैयारी किए हुए हैं मछली पालन और शुगर पालन का, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मछली को शुगर पालन से क्या लाभ है, शुकर पालन को मछली से क्या लाभ है?
7: शुकर पालन के साथ मछली पालन करने में बहुत ज्यादा लाभ होता है। क्या है कि किसी भी क्षेत्र में खाना का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर शुगर कोई खाना दे रहे हैं तो उसमें मेरा खर्च हो रहा है, उसी खर्च से मेरा मछली को भी खाना मिल जा रहा है, तो एक साथ दो काम हो जा रहा है। तो खाना का किसी भी क्षेत्र में खाना में 80% खर्च होता है, वो खर्च मेरा बच जा रहा है, सिर्फ ट्रीटमेंट का, उसका जीरा बच्चा वगैरह डालते हैं, कुछ दवा वगैरह पड़ता है, उसका खर्च होता है, 20% खर्च होता है, 80% मेरा लागत कम हो जाता है मछली पालन। तो इसलिए किसान भाइयों को इस तरह से करना ही चाहिए, तभी सफल हो पाए।
6: तो अभी जैसे अगर किसान बंधु तालाब नहीं, या तालाब ही चाहे वो सरकारी योजना के माध्यम से हो, या फिर किसान बंधु अपने लागत से तालाब करवाते हैं, तो जब तालाब बनाने का कार्य कर लेते हैं तो उसकी शुरुआती जो दौर होता है मछली पालन का, उसको कैसे शुरू करेंगे किसान बंधु?
7: अभी बहुत योजना चल रहा है फिशरी विभाग से, है या मनरेगा से भी है, जो 100 बाई 200 बाई 200 100 बाई 100 इस टाइप का तालाब बनता है, तो छोटे स्तर पर लोग शुरुआत करें, सीखें, साल दो साल तीन साल उसमें टाइम दे, उनको समझ में आएगा, अनुभव हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं। बिजनेस में तो एक बार सफल कोई होता नहीं है, या किसी क्षेत्र में भी एक बार कोई सफल होता नहीं है।
6: बिल्कुल बिल्कुल,
7: धीरे धीरे ध्यान देंगे, अपना उसमें स्किल बढ़ेगा, स्किल का मेन काम है, स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। नौकरी से बेहतर चीज माना जाता है अगर स्किल आप डेवलपमेंट कर लिए किसी भी क्षेत्र, तो हम मानते हैं कि नौकरी करने से अच्छा है अपना व्यवसाय करिए और उसमें स्किल डेवलपमेंट करिए, लगातार लगे रहिए, निरंतर मेहनत करते रहिए।
6: मछली पालन जो है, जो किसान बंधु शुरुआत करेंगे आपने, तो उसे निरंतर कैसे बढ़ाएंगे, कैसे शुरुआत करेंगे? शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि उनका जीरा कहाँ से लाएंगे, जीरा कहाँ से तैयार करेंगे, फिर तालाब में पानी भरे या ना भरे, उसकी तैयारी कैसे करेंगे?
7: उसके लिए क्या दिक्कत है, हम लोग से संपर्क करें, हम लोग थोड़ा तेजी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सीजन में जीरा उपलब्ध है, अवेलेबल है, हमेशा रहता है। यहाँ चतरा में मिल जाएगा, आपका पीतीस तरफ साइड में मिलता है, बहुत खोरी में मिलता होगा, हर जगह उपलब्ध है जीरा। अगर दिक्कत है तो हम लोग से संपर्क करें,
6: जीरा भी आप लोग उपलब्ध करवाते हैं?
7: हाँ, बहुत जीरा मिलता है, हम लोग उपलब्ध बता देंगे, फलाना जगह मिलता है, वहाँ से जाके इजीली ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात तालाब की तैयारी करने का, तो उसके लिए हम संपर्क करें, हम बताएंगे, फिशरी विभाग है उनसे संपर्क करें, वो लोग बताएंगे, बहुत तरह का व्यवस्था है, ऑनलाइन सर्च करें, ऑनलाइन भी जान सकता है लोग अभी कि कैसे मछली पालन किया जाता है, उससे भी सीख सकता है।
6: अच्छा, अच्छा।
7: उसमें समझ में ना आए तो हम लोग के पास डायरेक्ट लाके लाइव देख सकता है लोग।
6: हाँ।
7: लोग बताएंगे, देखेगा लोग।
6: आपके पास शुक्र पालन जो आप कर रहे हैं, लगभग कितने अभी आपके पास शुक्र हैं?
7: अभी 100 से ऊपर मेरे पास है, जो हम ब्रीडिंग का मेरा फिर सिर्फ काम होता है।
6: हाँ।
7: हमारे पास जिस नस्ल का भी ब्रीडिंग का बच्चा होता है वो हमारे झारखंड में लगभग नहीं मिल पाएगा।
6: अच्छा, अच्छा।
7: टाटा रांची वगैरह हमारे पास साल भर से महीना लोग बेटिंग करके यहाँ से बच्चा ले जाते हैं। हाँ। इस टाइप का मेरा माहौल बना हुआ।
6: अच्छा, जैसे आपके पास संपर्क में रहते हैं कि यहाँ जो छेना होता है,
7: छह छह महीना वेटिंग करके मेरे पास से बच्चा लोग ले जाते हैं।
6: अच्छा, अच्छा।
7: ब्रीडिंग मतलब कोई भी चीज अच्छा क्वालिटी का बनाइएगा तो उसका डिमांड ज्यादा होता है।
6: जी, जी।
7: कोई कंपनी अच्छा सामान बनाता है तो देखते हैं उसका वेटिंग रहता है। मान लीजिए टाटा वो कार निकाला है तो देख, कोई सेरा नाम का कार है।
6: हाँ।
7: तो उसके छह छह महीना साल साल भर वेटिंग है, इसलिए क्वालिटी में काम करिए, क्वालिटी में काम करेंगे तो आप बेहतर रिजल्ट देंगे और अपना भी बेहतर।
6: कौन सा किस्म का है, इसका नस्ल क्या है?
7: मेरे पास तीन अभी नस्ल है, लार्ज व्हाइट, टीएनडी और रशियन चरमुख।
6: अच्छा, अच्छा।
7: लेकिन मुख्य तौर पर यहाँ पर टीएनडी, जिसको सारसू का नाम बदल दिया गया।
6: वातावरण है, वातावरण के अनुसार से किसान बंधु को कौन सा बेहतर पालन करने में बेहतर?
7: यहाँ झारसुक हम लोग पालते हैं और अच्छा। पालना भी चाहिए, क्या है कि लोकल मार्केट में उसका डिमांड बहुत बढ़िया है।
6: अच्छा, अच्छा।
7: पहले इसको टीएनडी के नाम से जाना जाता था, ब्लैक कलर का सुगर होता है और देखने में बहुत सुंदर होता है, तो इसी का पालन करना चाहिए, इसका लोकल मार्केट बहुत अच्छा है।
6: तो जैसे आप जब इसे छेना बेचते हैं तो जब बच्चा देती है उसके बाद कितना दिन आप रखते हैं, फिर उसे आप बेच देते हैं?
7: बच्चा देने के बाद 1.5 से 2 महीना, 2 माह में बच्चा 15 से 16 किलो, 18 किलो, 20 किलो तक कभी कभी हो जाता है। बढ़िया मेंटेन में रखेगा तो 20 किलो तक भी हो जाता है।
6: क्या आप जो भोजन यहाँ देंगे तो वो भोजन जो लाभुक ले जाएंगे खरीद के, क्या इस तरह का भोजन दे पाएंगे या इस तरह का व्यवस्था दे पाएंगे?
7: शुरू में हम लोग सलाह देते हैं किसान भाइयों को कि यहाँ से अगर ले जाएं तो उसको चारा खिलाएं, सुगर का प्रॉपर आप चारा बन के आता है।
6: हाँ।
7: उसको 2 से 3 महीना खिलाएं, उसके बाद धीरे धीरे अपना खाना पर उसको अभ्यास कराएं, और फिर 2-3 महीना बाद जब बड़ा हो जाएगा, 50 केजी से ऊपर हो जाएगा, तो फिर अपना घर का खाना जूठन वगैरह है या माड़ी वगैरह है, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, हरा घास है उसको देके उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
6: तो चारा में क्या देंगे किसान बंधु शुरुआती दौर में?
7: शुरुआती दौर में उसको पता नहीं रहता है तो जो बना हुआ चारा आता है उसी को ले जाए, हमारे पास से ही ले जाए या कहीं से उपलब्ध है तो उससे भी ले ले। यहाँ से ले जाए 2-3 महीना उस चारे को खिलाएं, चारा मेन होता है, अगर इसको प्रोटीन युक्त खाना नहीं देंगे तो बेकार हो जाएगा।
6: हाँ।
7: और फिर आप घाटा का शिकार हो जाएंगे, फिर बोलेंगे सुअर का पालन खराब होता है, बढ़ता नहीं है, बहुत तरह तरह के शिकायत आएगा। इसलिए
6: चारा में क्या देते हैं?
7: चारा में इसका प्रॉपर बना हुआ चारा आता है।
6: अच्छा, अच्छा।
7: अभी आपको दिखाएंगे लैब, हम वो बना हुआ था स्पेशल, हम लोग इस बच्चा को सिर्फ चारा खिलाते हैं, बड़े जानवर के लिए अपने खाना बनाते हैं, सोयाबीन का मात्रा उसमें होता है, मकई दर्रा होता है, चोकर होता है, खुद्दी होता है, उसको मिक्स करके एक मात्रा हम लोग बनाते हैं, लगा के उसको बनाया।
6: उसके बाद जो बड़े शुक्र या शुक्रिया है उसे आप कितने देर में तैयार कर लेते हैं, जो मैंने बहुत बड़ा करके आप रखते भी हैं या फिर उसे बाजार में बेचते हैं?
7: हमारे पास ब्रीडिंग का ही जाता है, बहुत फार्म नए नए खुलते हैं तो लोग ऑर्डर देते हैं कि आपको मेरे को 50 किलो का गिर चाहिए, 20 किलो का चाहिए, 30 किलो का चाहिए, जैसा जिसका ऑर्डर रहता है, कोई बच्चा चाहिए तो उसी टाइप का हम तैयार करके देते हैं। और फैटनिंग का माल तैयार कर सकते हैं आप, 7 से 8 महीना में 100 केजी लगभग हो जाएगा, बढ़िया उसकी देखभाल करेंगे, अच्छा चारा खिलाएंगे तो।
6: अच्छा, अच्छा।
7: और खाना पीना नहीं देंगे ढंग से करेंगे नहीं तो 2 साल में भी नहीं होगा। सीधा बात बता,
6: तो लगभग एक शुक्रिया कितने बच्चे दे देती हैं?
7: हम लोग 8 का एवरेज लेके चलते हैं, लेकिन 10-12 तक हो जाता है, 11-12 तक, लेकिन हम लोग मेन मान के चलते हैं, कभी कोई मादा बच्चा दी तो कुछ चल गया, बहुत कुछ होता है जो सारा सब मर जाता है, ऐसा भी होता है, तो 8 का मात्रा मान के चलते हैं, 8 से 9।
6: तो जो गाभिन के बाद जो आप बच्चा दे देती हैं उससे क्या उसके लिए अलग आवास
8: का? हाँ, उसके लिए प्रसूति गृह अलग बनाए हुए हैं जिसमें गार्ड रेल का क्रीप बॉक्स का सारा व्यवस्था किए हुए हैं। छोटा बच्चा रहता है उसको अलग से खाना देते हैं और बच्चा जब मादा बच्चा देती है तो चपेना बच्चा उसके लिए गार्ड रेल का व्यवस्था किए हुए हैं। मादा का सिस्टम होता है कि दीवार में सट के बच्चा दे तो इसलिए गार्ड रेल लगाया रहता है तो सट के बच्चा देती है तो बाकी खुला आसान रहता है अपना बच्चा घूमते रहता है कोई दिक्कत उसको नहीं।
6: कृष्णा जी आप हमारे किसान बंधु को अपना मोबाइल नंबर बता दें ताकि जो है सो अगर किसी किसान बंधु को जरूरी पड़े तो आपसे संपर्क कर लें।
8: मेरा मोबाइल नंबर 7903429865।
6: फिर उसे आप एक बार रिपीट कर
8: 7903429865।
6: तो कृष्णा जी आप हमारे किसान
8: बंधु एक नंबर और है 8002510276। दोनों नंबर मेरा चालू रहता है किसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं
6: जी
8: और टाइमली करेंगे तो अच्छा रहेगा दस बजे के बाद
6: और शाम 4 या 5। तो कृष्ण जी आप हमारे किसान बंधु को बहुत सुंदर जानकारी दी इसके लिए आपको बहुत बहुत
8: आपको बहुत धन्यवाद और किसान भाइयों को धन्यवाद और धैर्य पूर्वक काम करते रहें काम करें इसको काम बढ़िया है लेकिन लगातार कंटिन्यू 5 साल बनाए रहे तब इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। किसान भाई को मैं ये कहना चाहता हूँ।
6: ठीक
2: बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
1: देखा यशविंदर भाई अभी हमें जो है जरूरी संदेश सुना दिए और देखा कि अब हमें जो है बातचीत के दने चलो ही है और कहे कि भाई देखा हम इनके जे किसान भाई बहन जो पशुपालन करो थे भाई तो ओकर में कहा है कि भाई कई तरह के जो हम इनके खान पान के ध्यान देवे के पड़ो।
0: हाँ हाँ।
1: तो जब खान पान के हमें ध्यान दो भाई तो ओकर से कहे कि भाई हम इनके दूध उत्पादन भी बढ़तो आ तोहर जो पशु है तो वो भी जो है से स्वस्थ रहता तो भाई अब जर देखवा कि गर्मी के मौसम में हम इनके जो पानी के जो है से पशु में देखवा कि पानी के ध्यान रखना हो खान पान के ध्यान रखना हो रख रखाव के ध्यान रखना हो देखवा कि हम इनके आवास के प्रबंधन कैसे करना हो कई तरह के ऐसा जो देखभाल हो जाए भाई जरा बेस्ट तरीके से जो हम इन रखिए देखवा कि पशु में दिनों दिन जो है से तोहरा जो है से दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी होती है।
0: देखिए एकर में कहा है कि जो पशु पालन में संतुलित आहार के बारे में जिससे हमने बातचीत कर ली उम्मीद भाई तो एकर का मतलब है कि ऐसा भोजन से किसान भाई बहन जो पशु रख लेते हैं जेकर में पशु के जो शारीरिक आवश्यकता हो है शरीर में जिसे स्वस्थ हो गए उत्पादन जिसे दूध मांस ये काम जाओ है एकर अनुसार सभी जो है से जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा विटामिन और खनिज ये कहा है कि सही अनुपात में किसान भाई बहन अपन पशु के दथिन एकर में कहा है कि संतुलित आहार खातिर प्रमुख जो हो है एकर में जिसे 3 भाग में बांटल गला है एकर जिसे कहा है कि हरा चारा सूखा चारा और दांत पशु आहार एकर में कहा है कि ये एकर में पाचन क्रिया के जो दुरुस्त रखो है और एकर खातिर एकर में जो नमी और विटामिन जो है एकर में बरसीम जई मकार जवार शामिल एकर में है जेकर हरा चारे बारे बढ़ लिए
1: बिल्कुल
0: सूखा चारा में जैसे हो जाए कि जो पशु के जो ऊर्जा खातिर जैसे फाइबर देवो है जेकर में भूसा पुआल और कड़वी जैसे एकर में आवो है चोकर खली वगैरह
1: हाँ, बिल्कुल देखा कि बरसीम जो है किसान भाई बहन के बरसीम उगलो मकई उगलो इस सब के अगर तो दिला ने अगर ओकरा बढ़िया से काट के अपन चारा में तो देखा कि हम इनके जो पशु हतुन वो जो है से स्वस्थ भी रहता थू और उनका जो है आहार के पूर्ति भी होते
0: बिल्कुल
1: तो देखा भाई हम इन कार्यक्रम बना लिए तो कहे ना सुनो ये
0: हाँ

0: तो देखो भाई, अब गीत नाथ के बाद अब हम जो है कार्यक्रम खेती बारी से अब जाए के भी बिरा हो गले हो,
1: हाँ,
0: तो एक साथ हमारा उमेश के
1: और हमारा यशमेंद्र के
0: अनुमति दा
1: जोहार।
0: जोहार।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बारी, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ज पर। संध्या के 6 बजने को हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से, कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: लोग, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में आयोजित अंगदान और उत्तक दान कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने अंगदान को मानवता और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक बताते हुए इसके प्रति व्यापक जन जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। अमेरिकी कंपनियों ने झारखंड में रणनीतिक महत्व के दुर्लभ और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और खनन में गहरी रुचि दिखाई है। इस सिलसिले में आज रांची में मुख्य सचिव अविनाश कुमार और अमेरिकी काउंसलेट जनरल कैली जाइल डियाज के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मंडल के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। गढ़वा जिले में हड़ताल पर गए सभी मनरेगा कर्मियों को उप विकास आयुक्त प्रेमलता मुर्मू ने 24 घंटे के भीतर कार्यस्थल पर लौटने का निर्देश दिया है। डीडीसी ने बताया कि मार्च से जारी इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण ग्रामीण रोजगार सृजन का लक्ष्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र स्थित गैलेक्सी इनगोट प्लांट में आज दोपहर फर्नेस भट्टी में विस्फोट होने से दो कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए। पुलिस के अनुसार बॉयलर में लीकेज के कारण अचानक यह धमाका हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खूंटी नगर पंचायत के वार्ड संख्या 1 स्थित उर्दू स्कूल में आज एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन नगर पंचायत अध्यक्ष रानी टूटी और उपाध्यक्ष शशांक शेखर ने किया। आज के शिविर में कुल 11 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। राज्य में मानसून का विस्तार तेजी से हो रहा है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने अगले दो दिनों तक इसके कुछ कमजोर रहने के आसार जताए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि प्रशांत महासागर में अलनीनो की सक्रियता से खेती किसानी प्रभावित हो सकती है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, 6:02 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम युववाणी सुन रहे सभी युवा मित्रों को अशोक का नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं का भी एक लंबे अरसे के बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, तो भाई सबसे पहले आपका हाल चाल लेना तो बनता है ना। कहिए भाई, कैसे हैं और कैसी तरह चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई, और किस तरह से आप अपने आने वाले समय का भविष्य निर्धारण कर रहे हैं, और प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आपकी दिलचस्पी है, अगर आप सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं या फिर स्वरोजगार अपनाना चाहते हैं, तो हर कोई भी कार्य को आप करना चाहते हैं, तो जाहिर से बात है कि उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और उसी संदर्भ में आप अपनी दिशा को तैयार करें, तभी जो है सो सफलता आपके कदम चूमेगी। एक रेजुलेशन तो लाइफ का होना ही चाहिए, तभी जो है आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं की। देखिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी सिर्फ कर लेने मात्र से नहीं होता है, आप क्या है कि उसके लिए आपको आवश्यकता है कई सारी चीजों का, तो इसी बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, छात्रों को पाठ्यक्रम की विशालता, तीव्र प्रतिस्पर्धा और समय प्रबंधन जैसी प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनसे पार पाने के लिए नियमित अध्ययन योजना, मॉक टेस्ट अभ्यास और सही अध्ययन सामग्री के चयन जैसे समाधान अपनाना बेहद प्रभावी होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आने वाली ढेर सारी चुनौतियां हैं, तो उन चुनौतियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले। परीक्षाओं का पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत होता है, जिससे अक्सर यह समझ नहीं आता कि क्या पढ़े और क्या छोड़ दे। तो इसका समाधान यही है कि परीक्षा के आधिकारिक सिलेबस को गहराई से समझे और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करके महत्वपूर्ण विषयों की प्राथमिकता दें। अब समय प्रबंधन इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, तो समय प्रबंधन में भी बड़ी चुनौती है। पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय ना मिलना या फिर परीक्षा हॉल में सभी प्रश्नों को हल करने के लिए समय कम पड़ जाना, और इसका समाधान यही है कि एक यथार्थवादी व सटीकता सुधारने के लिए नियमित रूप से ऑनलाइन मॉक टेस्ट दें, जैसे कि हमने पहले ही कहा। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी की भी आवश्यकता है, निरंतरता की कमी। अब निरंतरता में कमी के भी पीछे ढेर सारी चुनौतियां हैं, उसका क्या समाधान होगा इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। कुछ दिन पूरे जोश के साथ पढ़ने के बाद पढ़ाई से ध्यान भटक जाना या फिर बोरियत महसूस होना, यह बहुत बड़ी चुनौती है। अब समाधान यह है कि अपनी दिनचर्या में छोटे और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें, लगातार कई घंटे पढ़ने के बजाय छोटे छोटे ब्रेक लें, जैसे पोमोडोरो तकनीक, ताकि ऊर्जा बड़ी रहे। कुछ छात्रों को हम भी देखते हैं कि सुबह जैसे रूम में बंद हो गए, खाना खाने के लिए निकले, कंटिन्यू पढ़े जा रहे हैं, तो भाई इसमें तो निरस्ता आपको लगेगी ही, मनने लगेगी। छोटे छोटे ब्रेक्स लें, थोड़ा सा कुछ वार्म अप करें, थोड़ा कुछ मनोरंजन का भी बात करें, थोड़ा फैमिली का भी साथ में समय बिताएं और कुछ इधर उधर की बात करें, फिर बातें करें, फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। कंटिन्यू पढ़ने से तो जाहिर सी बात है कि फिर आपका ध्यान भटकेगा और निरस्ता आ जाएगी पढ़ाई में। अब इसमें आवश्यकता है कि सही मार्गदर्शन और अध्ययन सामग्री का स्टडी मटेरियल जो है उसे हम कैसे निर्धारित करें। तो बाजार में मौजूद अनगिनत किताबों और ऑनलाइन संसाधनों के बीच सही और प्रमाणिक सामग्री का चुनाव न कर पाना, ये बड़ी चुनौती है कि हम चुनाव ही नहीं कर पाते हैं कि कौन सा सामग्री हमारे, कौन सी किताबें हमारे लिए अच्छी है, कौन सी किताबें हमारे लिए ठीक नहीं है, कौन सी किताबें पढ़ने से हम ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो ऐसे में जो अच्छे पुराने अध्यापक हैं, जिनसे आप शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं या फिर नहीं भी किया हो, जो रिटायर कर चुके हैं, ऐसे प्रिंसिपल से या प्रधानाध्यापक या फिर किसी भी पोस्ट पर हैं, ये शिक्षाविद से आप सलाह ले सकते हैं, उनसे अपना मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, ये सबसे मेरे ख्याल से बेहतर होगा। टॉपर्स के अनुभव, शिक्षकों की सलाह और प्रमाणित पुस्तकों का ही प्रयोग करें अपनी तैयारी को सटीक दिशा देने के लिए। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर
अन्य प्रमाणिक साक्षी प्लेटफॉर्म की भी मदद ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों की जिन्होंने टॉप किया है इस लेवल पर पहुंचा है, जो सफलता अर्जित कर चुके हैं, किसी प्रकार से आप उनसे संपर्क करें और उनसे जो है सो आप जानने की कोशिश करें कि आखिर उन्होंने ये सफलता कैसे हासिल की, तो वो आपको बहुत सारा गुरु मंत्र जो है सो बताएंगे। आप उनको फॉलो कीजिए, निस्संदेह रूप से आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। परीक्षा का तनाव और नकारात्मक निगेटिविटी से बचिए और परीक्षा में जो तनाव होता है उस तनाव को किसी भी सूरत में अपने ऊपर हावी न होने दें। परीक्षा के नजदीक आने पर असफलता का डर अत्यधिक तनाव और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, अब इसका समाधान के रूप में योग कीजिए, व्यायाम और पर्याप्त नींद को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, सकारात्मक लोगों के संपर्क में रहें और अपनी तैयारी पर भरोसा रखें। और विशिष्ट प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UPSC, SSC या राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप परीक्षा का नाम और अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में आप जानकारी देंगे तो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ढेर सारी योजनाएं और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है आपको गुरु मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है जो हमने दो बातें कही, एक पुराने जो शिक्षाविद हैं, बड़े बड़े जो प्रोफेसर्स लोग हैं उनसे आप मदद लीजिए, और जो टॉप कर चुके हैं, जो सफल हो चुके हैं, सफल प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, उनसे किसी प्रकार से संपर्क करें और हमारे कार्यक्रम को सुनते रहें। हम ऐसे टॉपर्स को भी शामिल करते हैं अपने कार्यक्रम में और कोशिश करते हैं कि उनसे जो है सो आपसे रूबरू करवाएं, बातचीत करवाएं, ताकि उनकी बातचीत को सुनकर भी आपको लाभ पहुंचे। अब बातें तो लंबी हो गई हमारे आपके बीच, अब क्यों ना एक खूबसूरत सा गीत आपको सुनवाते चलें। आइए सुनते हैं गीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: श्रोताओं, युव वाणी कार्यक्रम में एक बार फिर से मैं शो का आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि हमारा यह प्रयास होता है कि हम करियर से संबंधित आपके वो कुछ सलाह दें, कुछ विशेषज्ञों से आपकी बातचीत कराएं, जो टॉपर्स हैं उनसे आपकी बातचीत करवाएं, ताकि आपका उचित मार्गदर्शन आपको मिले हमारे कार्यक्रम के माध्यम से। आप तो प्रयास करेंगे ही। अब चूंकि ये आपका कार्यक्रम है, तो आपके भी सुख दुख का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारे कार्यक्रम का ये कर्तव्य बनता है। ताकि इसी बात को ध्यान में रखकर परीक्षाओं की तैयारी हेतु समय तालिका का क्या महत्व होना चाहिए, इस विषय पर हम एक भेंटवार्ता आपको सुनवा रहे हैं। आइए इसे सुनते हैं। जैसा कि अभी हमने इसकी चर्चा भी की, तो इस भेंटवार्ता को सुनते हैं, उसके बाद आगे बातचीत करेंगे। आइए सुने।
1: आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वरीय शिक्षिका श्रीमती विम्मी प्रियदर्शनी जी से,

0: आप विद्यार्थियों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: जी हाँ, आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि विद्यार्थी के जीवन में समय प्रबंधन बहुत महत्व रखता है। अगर विद्यार्थी अपने जीवन में समय का प्रबंधन नहीं करते हैं तो वो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं
0: जी।
1: और समय का प्रबंधन के लिए उन्हें सुबह सोकर उठने से लेकर के रात के सोने समय तक के लिए एक समय तालिका बना लेनी चाहिए, कितने बजे तक में वह कितना काम कर सकते हैं। इस तरह से अगर वह अपना तालिका बनाए और उसमें वह अपने लिए पढ़ाई के लिए कितने समय होने चाहिए, सफाई स्वच्छता के लिए कितने समय देने चाहिए तथा अपने रिक्रिएशन मनोरंजन के लिए और समाज की सेवा के लिए कितने समय देने चाहिए, इस तरह से वह सारे समय का प्रबंधन करें, सारे समय को बांट दें और समय का प्रबंधन करें तो वो एक सफल विद्यार्थी हो सकते हैं।
0: जी पिमी जी, उचित समय पर यदि कोई विद्यार्थी अपना कार्य करते हैं तो हमेशा फलदायी होता है, इसके बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे छात्राओं?
1: जी हाँ, ये भी कहना बिल्कुल सही है कि उचित समय पर ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब चिड़िया चुग गई खेत तब क्या होगा।
0: जी जी,
1: तो इसलिए समय रहते ही हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। हर एक समय, हर एक पल बीतता जा रहा है जिसका हमें बोध नहीं होता है, हमें इसका ज्ञान नहीं होता है कि हम हर एक क्षण, एक पल, एक समय खो रहे हैं। और हमें चाहिए कि हर एक समय को हम सदुपयोग करें। सदुपयोग समझना बहुत जरूरी है कि सदुपयोग, समय का सदुपयोग क्या होता है।
0: बहुत जरूरी है।
1: समय का सदुपयोग में सिर्फ किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है। किताब की ज्ञान तो जरूरी है, वह तो किताब की ज्ञान से तो सिर्फ उन्हें अच्छे अंक मिलते हैं। किताब के ज्ञान के साथ साथ हम उन्हें अपने व्यवहारिकता में कैसे ला सकते हैं, हम उन चीजों को, जो चीज हम किताबों से सीखते हैं उनको हम व्यवहारिकता में कैसे अपने जीवन में उपयोग करें, अगर हम इस तरीके से सीखेंगे तब हम एक सफल विद्यार्थी हो सकते हैं।
0: जी, जो व्यक्ति उचित समय पर अपना कार्य नहीं करते हैं भीमी जी, उनकी सफलता संदिग्ध ही रहती है, इस बारे में आप क्या कहेंगी?
1: हाँ, ये सही है कहना कि उचित समय पर तैयारी नहीं करने पर सफलता संदिग्ध रहती है। उचित समय कौन सा समय है जिसे हम उचित समय कहेंगे?
0: जी, ये जानना बहुत जरूरी है।
1: ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा समय है जो उचित समय है। कोई कहता है शाम का समय हमारे लिए उचित समय है, कोई कहता है हमारे लिए रात का समय उचित समय है। नहीं, हमारे लिए उचित समय जो अभी वर्तमान का समय है वही हमारे लिए उचित समय है, और इस वर्तमान समय को ही हमें अपने काम में लगाना चाहिए। हमें अपनी अध्ययन के लिए और अध्ययन से प्राप्त किए हुए ज्ञान को व्यावहारिकता में लाने के लिए हमें लगाना चाहिए, तभी हम एक सफल विद्यार्थी बन सकते हैं, अन्यथा हमारी सफलता भी संदिग्ध ही रहेगी।
0: जी, सफलता के लिए लक्ष्य तय करना भी जरूरी है ताकि हम अपनी मंजिल तक सही समय पर पहुंच जाएं। इस संबंध में भी आप थोड़ी जानकारी दे दें विद्यार्थियों को।
1: सफलता के लिए सही समय पर हमें अपना लक्ष्य तय कर लेना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी मोबाइल से जुड़े हुए हैं, सभी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, चारों ओर हजारों तरह के अवसर दिखाई देते हैं, लेकिन हमें अपने लिए अवसर वही ढूंढना है जो अवसर हमारे लिए उचित है, और हमें उचित अवसर का उपयोग करना चाहिए, तभी हम सफल विद्यार्थी बन सकते हैं। लक्ष्य का तय नहीं करने से हम मार्ग से भटक सकते हैं, हमें कभी ये मार्ग कभी वो मार्ग अलग अलग रास्ते दिखाई देंगे, लेकिन हमें एक ही मार्ग पर चलना चाहिए जो हमारा लक्ष्य हो, उसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमें मेहनत करते रहना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं।
0: जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पीमी जी, आजकल ऐसा देखने को मिल रहा है कि विद्यार्थी जो हैं वो शिक्षा से विमुख होते जा रहे हैं, तो एक विद्यार्थी को जीवन में सफल होने

0: के लिए किन किन बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इस बारे में आपको सलाह दें।
1: विद्यार्थी हमारे आज के दौर में सही बात है कि आज के दौर में वो शिक्षा से विमुख होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने कई तरह की चीजें परोसी जा रही है। इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कई तरह की चीजें परोसी जा रही हैं, और वो जो चीजें उन्हें परोसी जा रही हैं, जो उन्हें बहुत लालायित कर देती हैं, और वह अबोध बालक होते हैं जिन्हें उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वह गलत रास्ते की ओर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और शिक्षा की तरफ उनका ध्यान कम हो जाता है। उन्हें लगता है शिक्षा तो सभी ले रहे हैं, लेकिन मनोरंजन करने का यही एक समय है, और वह अपने माता पिता से छिप करके, अपने शिक्षक गणों से छिप करके, वह अपने मनोरंजन के लिए ज्यादा समय देते हैं, या फिर अपने किसी हॉबी के लिए ज्यादा समय दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्हें चाहिए शिक्षा पहले है, सबसे जरूरी है कि हम आधार किसे बनाएं। आधार अगर हमारा ना होगा तो हम उसके ऊपर महल नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए आधार हमें सबसे पहले बनाना है। आधार बनाने का मतलब है सबसे पहले हमें शिक्षा लेनी होगी। शिक्षा अगर हमने ले लिया तो फिर हम आगे उसके ऊपर कई तरह की इमारत खड़े कर सकते हैं
0: जी।
1: इसलिए ये जरूरी है कि पहले शिक्षा ले, उसके बाद ही किसी दूसरे लक्ष्य की ओर अपना ध्यान भटकाएं।
0: जी मिमी जी, कुछ और सवाल है जिससे मैं पूछना चाहूंगी। शिक्षा के संदर्भ में समय का क्या महत्व है, इस बारे में आप कुछ जानकारी दें।
1: शिक्षा के संबंध में समय का बहुत महत्व है। अगर यूं कहें तो हर एक मामले में समय का महत्व होता है, लेकिन शिक्षा के मामले में समय का बहुत महत्व होता है, इसलिए क्योंकि शिक्षा का जो समय है वह सीमित समय है।
0: जी बिल्कुल,
1: एक सीमित समय तक ही हम शिक्षा लेते हैं, उसके बाद हम अपने जीवन निर्वाह के कार्य में लग जाते हैं और अलग अलग कार्यों में हमारा ध्यान चला जाता है, हम दूसरे कार्य करने में व्यस्त हो जाते हैं। और आज के दौर में शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बगैर शिक्षा के हम किसी भी क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। आज लोग अच्छे से अच्छे अंक लेकर के आ रहे हैं, अच्छे से अच्छे अंक के साथ अपने प्रगति को दिखा रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि इसके साथ समय को सही प्रबंधन करें, समय का सही प्रबंधन करें और समय के साथ वो अपना तैयारी करें, तालमेल बिठा करके चलें, उसमें तभी वह सफल विद्यार्थी बन सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, शिक्षा के संदर्भ में समय का बहुत महत्व है, इस बात को विद्यार्थियों को समझना होगा, है ना, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों को इस संदर्भ में क्या आत्म मंथन की आवश्यकता है?
1: हाँ, यह बिल्कुल जरूरी है। आज के दौर में हर एक विद्यार्थी को आत्म मंथन की आवश्यकता है।
2: श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, विषय था सफलता के लिए समय प्रबंधन का महत्व, और जिस टॉपिक पे हमने आज चर्चा की, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, चुनौतियां और समाधान, इस विषय में समय प्रबंधन भी एक टॉपिक था जिसके बारे में हमने चर्चा किया, और इसी से संबंधित हमने आपको ये भेंटवार्ता भी सुनवाया। एक शिक्षिका थी दिल्ली पब्लिक स्कूल की, निमी कुमारी इनका नाम था, और इनसे बातचीत कर रही थी रानी सहाय। उम्मीद है कि हम इस बातचीत को सुनकर आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे। अब देखिए, समय युवानी कार्यक्रम का बिल्कुल समाप्त हो चुका है, और बस इतना कहने का समय है कि अनुमति दीजिए आज के इस कार्यक्रम से कुछ संदेशों के बाद, कुछ संदेशों के साथ छोड़े जा रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे साथ बने रहिए, आगे भी ढेर सारे कार्यक्रम है। नमस्कार।
3: आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। 6:32 हो चुके हैं। अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत बस कुछ ही पलों में।

कार्यक्रम फिल्म संगीत सुन रहे सभी श्रोताओं को अशोक का नमस्कार आदाब। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं नागिन फिल्म के इस खूबसूरत संगीत के साथ, जिसे गाया मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी के लिखे बोलो को संगीत से संवारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से अपने दोस्त अशोक के साथ। श्रोताओं, संदेश से पूर्व हमने जिस फिल्म का आपको गीत सुनवाया वो फिल्म थी नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे, और मोहम्मद रफी साहब की आवाज थी। अब आइए गौतम गोविंदा फिल्म का एक बड़ा ही प्यारा सा गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। किशोर साहब की आवाज है इस गीत में। बिल्कुल

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। 6:55 हो चुके हैं। अगला प्रसारण हमारे रांची केंद्र 100 का, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल के आज के अंकों। तो थोड़ी देर में अगला प्रसारण हमारे रांची केंद्र से, कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित
3: कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
4: भाइयों एवं बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
3: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
4: भाइयों एवं बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
3: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में किया झारखंड कृषि व्यापार मेला का उद्घाटन। जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने और कृषि निर्यात में वैश्विक पहचान बनाने का दिया संदेश। राज्य में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव का काउंटडाउन शुरू। मिशन 28 के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन ने 23 की चुनावी रणनीति। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दी एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी। राज्य के 1,63,00,000 मौजूदा मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने से मिली छूट। राज्य के क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक में अमरीकी कंपनियों ने दिखाई निवेश की रुचि। प्रोजेक्ट भवन में मुख्य सचिव के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक। और रांची में कल से थ्रो बॉल और स्केटिंग का महाकुंभ। दक्षिण एशियाई चैंपियनशिप और 12वीं नेशनल रैंकिंग के लिए रांची में जुटेंगे 5 देशों के खिलाड़ी और देश भर से 1,000 स्केटर्स। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोराबादी मैदान में 3 दिवसीय झारखंड कृषि व्यापार मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने मेले के लोगो का लोकार्पण किया और टाना भगत परिवारों को पशु शेड निर्माण के लिए 100% अनुदान राशि सौंपी। मुख्यमंत्री ने जैविक खेती तथा आधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर दिया।
1: हम लोगों ने पिछले कार्यकाल में ही बिरसा हरित ग्राम योजना प्रारंभ किया, जहां किसान अपने खेतों में बंजर भूमि में फलदार वृक्ष लगाने का, और आज उसका फल मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर सिमडेगा की वो महिलाएं जो बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़ी हुई हैं, आज वो अपना आम इंग्लैंड में भेजने का काम कर रही है। आप सभी किसान भाइयों से एक ही चीज निवेदन करूंगा कि आपने इन फसलों में कोई जहरीला पदार्थ का उपयोग ना करें, वो शारीरिक रूप से काफी नुकसानदेह होता है।
0: राज्य में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। रणनीति के तहत एनडीए ने अपने सभी विधायकों को रांची के 1 5-सितारा होटल में शिफ्ट कर दिया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने कहा कि सभी विधायक एकजुट हैं।
2: पार्टी के विधायक पार्टी लाइन से हट के कभी कुछ नहीं सोचता है। खाली जो लाइन प्रत्याशी को समर्थन देने का परिमल नाथवानी जी को, सभी पूरी तरीके से एकजुट होकर के उस निर्णय के साथ खड़े हैं। अभी तो आना होगा, फिर आगे देखा जाएगा।
0: इधर इंडिया गठबंधन ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज और कल रांची में मुख्यमंत्री आवास पर गठबंधन के सभी विधायकों और प्रमुख नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बीच राज्य के मंत्री इरफान अंसारी ने दावा किया है कि इस चुनाव में गठबंधन की जीत निश्चित है।
3: प्रणव झा जी, हम लोग जीतेंगे, कहीं कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। देखिए, ये बंगाल नहीं है, झारखंड है, और यहाँ इस बार लोग अस्मिता के साथ, झारखंड की मान मर्यादा के साथ वोट करने जा रहे हैं।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन ने रांची स्थित लोक भवन में शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को बताया कि नामकुम मिलिट्री हॉस्पिटल में 19 जून तक विशेष नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और आम नागरिकों को निःशुल्क नेत्र जाँच की सुविधा मिल रही है। राज्यपाल ने इस लोक कल्याणकारी पहल की सराहना की। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि वर्ष 2003 की एसआईआर सूची से मैपिंग पूरी होने के बाद राज्य के 1,63,00,000 मौजूदा मतदाताओं को कोई दस्तावेज नहीं देने होंगे। इन मतदाताओं को केवल प्री फिल्ड गणना फॉर्म और रंगीन फोटो जमा करना होगा। प्रवासियों के लिए बुक ए कॉल की सुविधा दी गई है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नई तकनीक से समाचार इस विराम के बाद।
4: खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
5: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं, महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
7: भाइयों एवं बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
6: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
8: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
9: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने गुमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के क्रियाकलापों की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि देश की खुशहाली के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है।
10: 1 रुपया यदि भेजते हैं तो लाभ के 15 पैसा पहुँचते थे, 85 पैसा बिचौलिया। वही चीज को एक बड़ा पारदर्शिता ये भारत में लाया प्रधानमंत्री, ताकि कोई बिचौलिया किसी ऐसा तत्व का कोई हाथ ना लगे, 100% लाभुक के बीच में पहुँचे।
0: अमेरिकी कंपनियों ने झारखंड में दुर्लभ और रणनीतिक खनिजों के खनन में गहरी रुचि दिखाई है। इस संबंध में आज रांची में मुख्य सचिव अविनाश कुमार और अमेरिकी काउंसलेट जनरल के प्रतिनिधिमंडल के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई। मुख्य सचिव ने कंपनियों को लिथियम और टाइटेनियम जैसे खनिजों के अन्वेषण में निवेश के लिए आमंत्रित किया। राज्य में मानसून का विस्तार तेजी से हो रहा है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 2 दिनों तक इसके कुछ कमजोर रहने के आसार जताए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि प्रशांत महासागर में अलनीनो की सक्रियता से खेती किसानी प्रभावित हो सकती है। हालांकि मानसून धनबाद, बोकारो और कोल्हान प्रमंडल को पूरी तरह कवर कर चुका है। विभाग ने कल रांची और रामगढ़ सहित अधिकांश जिलों में वज्रपात और तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी रांची कल से 2 बड़े खेल आयोजनों के साथ खेल मानचित्र पर चमकने के लिए तैयार है। खेल गांव में कल से द्वितीय दक्षिण एशियाई थ्रो बॉल चैंपियनशिप 2026 का आगाज हो रहा है, जिसमें भारत, नेपाल और श्रीलंका सहित 5 देशों के 150 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। झारखंड की अरुणा यादव भारतीय महिला टीम की

0: कमान संभाल रही हैं। इसके साथ ही कल से ही खेलगांव में 5 दिवसीय 12वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप भी शुरू हो रही है। इसमें देश भर के 1000 से अधिक स्केटर्स अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में किया झारखंड कृषि व्यापार मेला का उद्घाटन। जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने और कृषि निर्यात में वैश्विक पहचान बनाने का दिया संदेश। राज्य में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव का काउंटडाउन शुरू। मिशन 28 के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन ने 23 की चुनावी रणनीति। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दी एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी। राज्य के 1,63,00,000 मौजूदा मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने से मिली छूट। राज्य के क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक में अमेरिकी कंपनियों ने दिखाई निवेश की रुचि। प्रोजेक्ट भवन में मुख्य सचिव के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक। और रांची में कल से थ्रो बॉल और स्केटिंग का महाकुंभ। दक्षिण एशियाई चैंपियनशिप और 12वीं नेशनल रैंकिंग के लिए रांची में जुटेंगे 5 देशों के खिलाड़ी और देश भर से 1000 स्केटर्स। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पाकुड़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे पाकुड़ संवाददाता।
1: पाकुड़ जिले की पुलिस विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के साथ साथ मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने एवं इस कारोबार में शामिल लोगों की धरपकड़ की जबरदस्त कार्रवाई कर रही है। इस पर बात की पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने।
2: छापामारी की गई तो वहाँ एक चाय की दुकान में जो है ये 21 पुड़िया मिली है ब्राउन शुगर की और गांजा की 26 पुड़िया मिली है। दो आदमी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जो दुकान वाला है वो भी गिरफ्तार हुआ है और एक खरीदार था वहाँ, उसे भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और इसमें पुलिस जो है बैक लिंकेज पे काम कर रही है, तो कुछ और भी नाम आए हैं जिन पर पुलिस छापामारी कर रही है, जल्द ही वो लोग भी गिरफ्तार हो जाएंगे।
1: शहरी क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स वसूली को लेकर नगर परिषद द्वारा मकान मालिकों को विशेष छूट का लाभ मुहैया कराया जा रहा है। वैसे मकान मालिक जो 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा कर रहे हैं उन्हें 5-15% की छूट दी जा रही है। इस पर बात की नगर परिषद के प्रशासक अमरेंद्र कुमार चौधरी ने।
3: आप सभी शहरवासियों से मेरी अपील है कि अभी 30 जून तक अगर आप होल्डिंग टैक्स जमा करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स, तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें से 5% सभी नागरिकों के लिए है, 5% एक्स्ट्रा मिलेगा विकलांग है, सीनियर सिटीजन है, लेडीज है और आर्मी है या ट्रांसजेंडर है। उसके अलावा अगर यहाँ पे हमारे ऑफिस में जो जन सुविधा केंद्र है वहाँ अगर जमा करते हैं तो 2.5% और मिलेगा, और अगर वो ऑनलाइन जमा करते हैं तो उनको 5% एक्स्ट्रा रिबेट मिलेगा। तो इस तरह से टोटल 15% रिबेट मिल रहा है।
1: पड़ोसी देश बांग्लादेश में फैले खसरा के प्रभाव से पाकुड़ को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को जागरूक करने के साथ साथ प्रभावित क्षेत्रों में रैपिड रेस्पॉन्स टीम कैंप लगाकर बच्चों को विटामिन ए पिला रहा है। इस पर बात की जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एस के झा ने।
4: हर सप्ताह में खसरा का कुछ आउटब्रेक्स का रिपोर्ट हम लोगों के पास आया हुआ था, और तो हमारे यहाँ जो है सिविल सर्जन महोदय के निर्देशानुसार रैपिड रिस्पॉन्स टीम जो है उस पर एक्शन लेते हुए जो भी एरिया प्रभावित एरिया था वहाँ स्पेशल हम लोगों का कैंप किया गया। कैंप के थ्रू जो है जितने भी प्रभावित बच्चे साथ ही साथ उसके जो संपर्क में आने वाले बच्चे सबको बचाव हेतु विटामिन ए का सोल्यूशन पिला दिया गया है, और जितने भी और हमारे ब्लॉक

0: बात है पाकुड़ जिला में सब जगह एक्टिव सर्च चला और कहीं से रिपोर्ट नहीं आया। हिरनपुर में एक गांव से आया था रिपोर्ट, वहां भी जो बच्चे प्रभावित थे सारे जगह बचा हुआ था, विटामिन ए का घोल सारे बच्चे को पिला दिया गया है। चूंकि खसरा एक अत्यंत संक्रामक बीमारी है तो हमारी जो अगल बगल आस पड़ोस के जो स्टेट है जैसे बंगाल है, साथ ही साथ जो नेबर कंट्री है बांग्लादेश, तो ये माइग्रेट होने का बहुत ही ज्यादा चांसेस रहता है। चूंकि ये एक दूसरे से कंटामिनेट होने से छींकने से खांसने से संक्रमण जो फैलता है, अतः हम लोग की जो टीम है पूरे पाकुड़ जिला की स्वास्थ्य टीम अलर्ट मोड पे है और नजर हम लोग बनाए हुए हैं। किसी तरह का आउटब्रेक अभी नहीं है, पूरे जिला जो है हमारे खसरे का जो नियंत्रण है पूरी तरह का और रिपोर्ट कहीं से नहीं आ रहा है।
1: पाकुड़ जिले के लोगों को समय पर आय निवास जाति प्रमाण पत्र मुहैया कराने को लेकर उपायुक्त मेघा भारद्वाज के निर्देश पर पंचायतवार 3 दिवसीय विशेष शिविर लगाया गया है। आयोजित शिविरों में आवेदनों का निष्पादन भी अंचलाधिकारी सहित राजस्व कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़।
2: अभी आप सुन रहे थे पाकुड़ जिले की ताज़ा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: अभी आप सुन आजकल
1: आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं 7:17 और 21 सेकेंड हुआ चाहते हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। लीजिए प्रस्तुत है एक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम झनकार। सबसे पहले झनकार कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं उस महान कलाकार को जो हमारे बीच अभी भी हैं और अभी राजनीति में सक्रिय हैं और एक्टिंग के बादशाह, नृत्य के बादशाह, सर्वगुण संपन्न मिथुन दादा के आगाज कर रहे हैं मिथुन साहब की फिल्म डिस्को डांसर के इस खूबसूरत गीत के साथ। आज है मिथुन साहब का जन्मदिन, ये गीत उन्हें डेडिकेट करते हैं और जन्मदिन की ढेर सारी मुबारकबाद भी देते हैं। दादा ने एक से बढ़कर एक फिल्म के जरिए भारतीय सिनेमा को एक नया आयाम दिया है और लोग उनके बहुमूल्य योगदान को स्वर्णिम युग की तरह देखते हैं बॉलीवुड की दुनिया में।

श्रोता, आप सुन रहे थे कार्यक्रम झनकार। और आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आपको जिन फिल्मों के गीत सुने उनके नाम इस प्रकार हैं: डिस्को डांसर, थ्री इडियट्स और 36 चाइना टाउन। आवाजें बप्पी लहरी, सोनू निगम और श्रेया घोषाल और हिमेश रेशमिया और अलका याग्निक की थी। और इसी गीत के साथ हम आज का झनकार कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम झनकार। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में है।

श्रोताओं, आइए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में हम आपको जानकारी दे दें। 7:30 पर, यानी अब से थोड़ी देर बाद 7:32 हो चुका है, बस कार्यक्रम शुरू होगा सदाबहार फिल्म संगीत का ऑल टाइम हिट्स। 8:00 से लेकर 8:10 तक आप सुन सकते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। आपकी चाहत अभी इन दिनों आपकी चाहत का समय थोड़ा बहुत ही कम है, क्योंकि 8:10 से 8:45 तक विशेष श्रृंखला हमारे चल रहा है। विषय है वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण, तो इस पर ये कार्यक्रम को आप सुनना ना भूलिएगा। और 8:45 पर समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगा। 9:00 News@9 भी हम रिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। और स्पॉटलाइट्स कार्यक्रम आप सुनते ही हैं दिल्ली केंद्र से। बुधवार प्रसारण सेवा का कार्यक्रम 9:30 से 10:00 तक रिले किए जाएंगे हमारे मुंबई केंद्र से। फिल्म संगीत का सदाबहार कार्यक्रम रजनीकांथा आप सुन सकते हैं 10:00 और 10:30 पर होगा कार्यक्रम आज के फनकार। 11:00 हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचारों के साथ होगा हमारे आज के कार्यक्रम का समापन। तो ये थी छोटी सी जानकारी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। चलिए

फ्रेशन ऑल टाइम हिट्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। मैं हूं आपका दोस्त अशोक। श्रोताओं, अब तक आपने जिन फिल्मों के नाम के गाने सुने उनके नाम इस प्रकार हैं, आगले लग जा, लावारिस। और अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ है, फिल्म का नाम है निगाहें।

मेरा पन्ना जी श्रोताओं, इसी फिल्म के गीत के साथ जिसे गाया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। और पर्दे पर कौन थे आपको याद ही होगा। जी हां, पर्दे पर अपने देवानंद साहब और जीनत अमान। तो इसी गीत के साथ आज का ऑल टाइम हिट्स का सफर यहीं पे खत्म होता है। अनुमति दीजिए अशोक को, नमस्कार। आकाशवाणी का यह हजारी बाग केंद्र है, फिर 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजने को है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी चाहत।

0: कार्यक्रम आपकी चाह सुन रहे तमाम संगीत प्रेमी श्रोताओं का शुभकाम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। आज का समय हमारा जो है केवल 10 मिनटों का है, इसलिए हम कुछ श्रोताओं के खतों को शामिल कर पाएंगे, केवल 2 गीत सुनवा पाएंगे। इस गीत को सुनवाने के लिए ये जो पहला गाना जो हमने लिया है आराधना फिल्म से किशोर साहब की किशोर कुमार की आवाज है और शानदार संगीत दिया था सचिन दा ने, सचिन देव बर्मन ने। इस गीत को सुनवाने के लिए आप सभी ने हमें खत भेजे हैं, आप शिवाजी चौक राजीव छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव ने, और आप हैं अमरपुर पोंडरा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। आइए सुनते हैं।
1: रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा

और कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश। इस गीत को सुनाने के लिए आप सबों ने खत भेजे हैं। रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हमारी यशोदा हैं, हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जतैग बीरक और मीका तीरक। और ये छत्तीसगढ़ बाटा पड़ा दातेरंगी से हमारी यशोदा हैं, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झवेंद्र कुमार वर्मा। चलिए कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए और आज के इस कार्यक्रम से अब अपने दोस्त अशोक को अनुमति दीजिए। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए, आपकी चाहत को सुनने के लिए। जिन श्रोताओं के खत आज शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें निराश ना हो, चूंकि कार्यक्रम का समय बेहद सीमित था। अगले कार्यक्रम में उनके खत जरूर शामिल किए जाएंगे। नमस्ते।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी चाहत आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा, जहां से आप सुन सकेंगे विशेष श्रृंखला के अंतर्गत वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। तो कृपया इस कार्यक्रम के लिए थोड़ी सी कीजिए प्रतीक्षा।

जीभ की तपस्या, झलकी आपने सुनी। लेखिका डॉक्टर कुमारी, इसका निर्देशन किया स्वतंत्र कुमार ओझा ने। आकाशवाणी इंदौर की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
4: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
3: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
4: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
3: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
4: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
3: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की पहली पेशकश ये जवानी है दीवानी फिल्म से टोची रहना और रेखा भारद्वाज के स्वरों में अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत की धुन बनाई है प्रीतम ने।

0: कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गावा हो या फिर अलवर हो, वहाँ के जो हमारे कॉरपोरेशन से उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है, व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है।
1: जी, प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक। इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती हैं उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे, अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर चलती है, रीसाइकल, रीयूज एंड रीप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो

0: और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं। नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है, उसके प्रति अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
1: शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह के पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने एनडीसी टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में केप टाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहां पर नया और अच्छा नवाचार हुआ, और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। और अभी तो जो इरना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की, वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है जिसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं। और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
1: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है, और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8 करोड़ 10 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें, तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं, कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
0: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए जी। और नेचर का ये नियम होता है कि जहाँ प्योरेस्ट नेचर होती है वहां पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सरवाइव करते हैं जी। नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है, तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टीमेशन हम लोगों ने कराया है, लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं, भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है, और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता, उसका भी हमने वापस से रीइंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026 12 साल में देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है, जो हमारी

0: इंजर्ड स्पीशीज हैं, चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो. पहली बार डॉल्फिन का एस्टीमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टीमेशन किया है. उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं. लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं, उनके जो राइट्स हैं, उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं. मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है. ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं.
1: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है. तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है. हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था. उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया, और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है. तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे, और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये?
0: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है, जहां ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है, उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा. हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है, और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है. और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है. और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया. सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसने अभी एक पिछले तीन चार साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं, उस पर उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है, और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं. मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहां पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है, और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था. तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं. और जो अमृत सरोवर, तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नजदीक है. अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी, जो बड़ी झीलें भी हैं, उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं. और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई.
1: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं. तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं. बेशक ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
0: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूं कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है
1: जी.
0: और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है. अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे. पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए. और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था, तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था और जिसको हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है. एक हमारी माँ का, जिसने हमें जन्म दिया, और दूसरा धरती माँ का, जिसने हमारा भरण पोषण किया. और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहां पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं. देखिए, आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं, लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती. आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता है ना, पक्षियों को छांव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया।

0: हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना, लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है पक्षियों के लिए, और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है, और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी, और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
1: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
0: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो
1: जी,
0: पानी नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे
1: जी?
0: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है, गेहूं से आटा बनता है, लेकिन वो तो नेचर से आता है। तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा
1: जी।
0: आप एक बात बताइए
1: जी,
0: कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहां से आती है
1: जी?
0: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है
1: जी?
0: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे? कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन
1: जी,
0: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफ स्टाइल, और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे की विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है
1: जी। हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की, तो जब भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की, यानी कि नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया खुद के लिए, सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
0: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है ये नेट जीरो के है
1: जी।
0: जो ग्रीन सिटीज की बात है ये नेट जीरो की है। जो मेट्रो का विस्तार है ये नेट जीरो के लिए है। जो ईवी का विस्तार है वो नेट जीरो के लिए है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नई एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है वो नेट जीरो के लिए है। जो बायोफ्यूल अलायंस कर रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बड़ा है, तो वो नेट जीरो के लिए है।
1: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री का, कॉरपोरेट जगत का कितना इंपॉर्टेंट आप एक रोल देखते हैं?
0: अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉरपोरेट को लगाया है, उनके जो ESG है वो भी है। कॉरपोरेट जगत में बात होती है, भारत में कॉरपोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जाए, अपनी इंडस्ट्री को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है
1: जी।
0: तो ये हरा भरा ग्रह छोड़ के जाए
1: जी,
0: वरना एक दिन, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी कभी जीवन था।
1: क्योंकि आपने बच्चों की बात की, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: पहला तो एक फिर माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पे ज्यादा से ज्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पे अपनाएं, तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
1: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अभी आप सुन रहे थे वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण पर एक विशेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

आइए अब हम आपको आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9:00 का वक्त होगा न्यूज 8:09 का। 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार। पर आप सुनेंगे मनी टॉक। 9:45 पर कार्यक्रम मंथन। दोनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। दस बजे आप सुनेंगे शिक्षा पर आधारित लोक गीत, कार्यक्रम गूंजे झारखंड में, प्रस्तुति प्रदीप कुमार की। 10:30 पे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, हम बात करते हैं हमारे जीवन के बारे में। खुशी हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत और अनमोल भावना है, जो हमारे मन को सुकून और संतुष्टि देती है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाजार से खरीदा जा सके, बल्कि यह हमारे भीतर से ही पैदा होती है। अक्सर लोग सोचते हैं बहुत सारा पैसा, बड़ा घर या महंगी गाड़ियां होने से ही खुशी मिलती है, लेकिन असलियत में खुशी का संबंध बाहरी भौतिक चीजों से

नहीं बल्कि हमारे मन की स्थिति और संतोष से है। जब हम अंदर से शांत और संतुष्ट महसूस करते हैं वही असली खुशी होती है। महान दार्शनिकों के अनुसार खुशी तब मिलती है जब हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारे कर्म एक समान होते हैं।

और हम अपने जीवन में अगर रक्तदान करते हैं तो मरीजों की भी जान बचती है, बल्कि नियमित रक्तदान से दाता का अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और हृदय संबंधी बीमारियों का जोखिम भी कम होता है।

रक्तदान एक पुनीत कार्य है जो किसी जरूरतमंद की जान बचा सकती है। एक सुरक्षित और सफल रक्तदान के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आप पात्रता के मापदंडों को समझें, सही आहार लें और दान के बाद उचित देखभाल करें।

0: तभी हम एक खुशहाल इंसान बन सकते हैं।
1: 20 से अधिक देशों के 400 से अधिक शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे। भारत की पहली और एकमात्र तलवारबाज ओलंपिक खिलाड़ी सीए भवानी देवी की अगुवाई में 12 महिला और 12 पुरुष खिलाड़ियों वाली

0: gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमरीका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियाम में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में

0: अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियॉन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए, भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: द टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की पहली जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल

0: ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जांच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देशभर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार जेसीएम के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियॉन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for this Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gorkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement to boost cooperation on greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in a high-level working session at the ongoing G7 summit in Evian, France today. The session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity brought together leaders of the G7 nations, partner countries and senior representatives from the World Bank and the African Development Bank. The meeting began shortly after French President Emmanuel Macron formally welcomed Prime Minister Modi and other participating leaders. Following a group photograph, PM Modi shared the picture on social media, stating that India and the G7 countries

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गायक, संगीतकार और निर्माता की, जिनके बारे में सलील चौधरी ने कहा था, अगर ईश्वर किसी आवाज में गाते तो वो हेमंत कुमार की आवाज में ही गाते।

0: देखी।
1: जी हाँ, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर।
0: देखिए वो काली काली बदलिया, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोक

0: आई।
1: हेमंत कुमार का जन्म 16 जून 1920 को हुआ था बनारस में। ये जानकर आपको हैरत हो सकती है कि हेमंत कुमार का ताल्लुक बनारस से रहा था। उनके पिता वहां काम किया करते थे। बाद में उनका परिवार कोलकाता चला गया था, लेकिन बनारस से ताल्लुक होने का एक बहुत बड़ा फायदा हेमंत कुमार को किस गाने में मिला, याद है आपको? फिल्म मुनीम जी का ये गाना सुनिए। किस बनारसी अदा के साथ हेमंत कुमार ने इस गाने को गाया है।

हाँ, तो मैं कह रहा था कि हेमंत कुमार का जन्म तो भले बनारस में हुआ था, लेकिन उनका परिवार बाद में चला गया कोलकाता। कोलकाता में हेमंत कुमार को संगीत का शौक लगा और वहां उनकी संगीत की शिक्षा दीक्षा चलने लगी। 12वीं की परीक्षा देने के बाद हेमंत कुमार बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जाधवपुर आ गए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो संगीत की ओर बढ़ गए। हालांकि माता पिता ने इसका घना विरोध किया, लेकिन उन्होंने संगीत की अपनी रुचि को छोड़ा नहीं। बीच में एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने लिखने की तरफ भी अपने कदम बढ़ाए। जानी मानी बांग्ला पत्रिका देश में उन्होंने अपनी कहानी प्रकाशित करवाई। सन 1930 के दशक के आखिर में वो संगीत की दुनिया में चले आए। सन 1935 में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने कोलकाता के आकाशवाणी केंद्र पर अपना पहला बांग्ला गीत रिकॉर्ड करवाया। हेमंत कुमार ने उस्ताद फैयाज खां और फणीभूषण गांगुली से भी संगीत की तालीम ली थी। सन 1937 में हेमंत कुमार का पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड आया कोलंबिया के बैनर तले। इसके बाद हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली गई। सन 1941 हेमंत कुमार ने पहली बार फिल्मों में गाया। ये बांग्ला फिल्म थी निमाई संन्यास और इसके संगीतकार थे हरि प्रसन्न दास। हेमंत कुमार ने अपने पहले हिंदी गीत रिकॉर्ड करवाए फिल्म इरादा में सन 1944 में। इस फिल्म के संगीतकार थे पंडित अमरनाथ और गाने लिखे थे अजीज काश्मीरी ने। हेमंत कुमार रवींद्र संगीत के विशेषज्ञ माने जाते थे। सन 1944 में बांग्ला फिल्म प्रिय बंधावी के लिए उन्होंने रवींद्र संगीत रिकॉर्ड किया था पहली बार। बतौर संगीतकार हेमंत कुमार की पहली फिल्म थी अभियात्री। ये बांग्ला फिल्म सन 1947 में आई थी।

1940 के दशक के मध्य में हेमंत कुमार इप्टा में शामिल हो गए और वो जन नाट्य करने लगे। यहाँ सलील चौधरी भी उनके साथ शामिल थे। सन 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के दौरान जन जागृति का काम किया इप्टा ने, और सन 1947 में हेमंत कुमार ने अपना गैर फिल्मी गीत रिकॉर्ड किया गनेर बंधु, जिसमें संगीत सलील चौधरी का था। हेमंत कुमार इस दौर में बांग्ला फिल्मों में संगीत दे रहे थे। इनमें से कई फिल्मों के निर्देशक हेमेन गुप्ता थे। कुछ समय बाद हेमेन गुप्ता मुंबई फिल्म जगत में पैर जमाने के लिए चले आए और इसके बाद उन्हें मिली फिल्मिस्तान की फिल्म आनंद मठ। फिल्म आनंद मठ का निर्देशन करते समय हेमेन गुप्ता ने कोलकाता से हेमंत कुमार को भी मुंबई बुला लिया। इस तरह से मुंबई में हेमंत कुमार की पहली फिल्म बनी सन 1952 में आई आनंद मठ।

इसी फिल्म में हेमंत कुमार ने लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया वंदे मातरम। आनंद मठ ने मुंबई में हेमंत कुमार के पैर जमा दिए। इसके बाद उन्होंने फिल्मिस्तान की फिल्म की

इसी दौरान बतौर प्लेबैक सिंगर हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली जा रही थी। देवानंद की फिल्म जाल में सचिन देव बर्मन ने हेमंत कुमार से ये गाना गवाया।

इसके बाद आई घर नंबर 44, फिर देवानंद के लिए हेमंत कुमार ने ये शरारती गीत गाया फिल्म 16 साल के लिए।

0: कुछ ऐसा।
1: 50 के दशक तक हेमंत कुमार एक प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बन चुके थे। सन 1954 हेमंत कुमार के करियर की नई ऊंचाई फिल्म नागिन। फिल्म नागिन के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए।

सन 1955 में हेमंत कुमार को मिला सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म नागिन के लिए। 1950 के दशक के आखिर में हेमंत कुमार ने अपना बैनर शुरू किया हेमंता बेला प्रोडक्शंस, और इस बैनर के तले उन्होंने बनाई फिल्म नील आकाशेर नीचे। ये फिल्म सन 1959 में आई थी और इसके निर्देशक थे मृणाल सेन। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इसके तकरीबन 10 साल बाद हेमंत कुमार ने एक नया प्रोडक्शन हाउस खोला। इस बार उन्होंने नाम रखा गीतांजलि प्रोडक्शंस। हिंदी सिनेमा के इतिहास की कुछ बेमिसाल फिल्में दी गीतांजलि ने, जैसे 20 साल बाद, कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर और खामोशी, जिसका गुलजार का लिखा ये गीत दिल की गहराई में उतर जाता है।

हेमंत कुमार के गाने सीधे दिल की गहराइयों में उतरते हैं। उनकी आवाज में एक गंभीरता है, दूसरी तरफ उनकी आवाज में एक शोखी भी नजर आती है कुछ खास गानों में। यूं लगता है जैसे कोई दार्शनिक नदी के किनारे अपना सुर छेड़ रहा हो।

आज भी हेमंत कुमार को सुनने वालों की कमी नहीं है। हेमंत दा की आवाज विविध भारती ही नहीं दुनिया भर के रेडियो चैनलों पर गूंजती है और लोग उनकी आवाज को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। हेमंत कुमार बतौर संगीतकार बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं बतौर संगीतकार उनकी कुछ निराली रचनाएं।

0: फिल्म मिस मैरी साल 1957, किशोर कुमार का ये मजाहिया गाना।
1: गाना न आया, बजाना न आया, दिल

0: बनाना।
1: 26 सितंबर 1989, 69 साल की उम्र में कोलकाता में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने आखिरी सांस ली। रह गई उनकी आवाज, उनका दिया हुआ संगीत और उनकी बनाई हुई फिल्में।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

श्रोता सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है कार्यक्रम रजनीगंधा का। तो बस कार्यक्रम रजनीगंधा के साथ उपस्थित हो रहे हैं कुछ ही पलों में।

कार्यक्रम रजनीगंधा सुन रहे सभी संगीत प्रेमी श्रोताओं को अशोक का नमस्कार। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है जीवन पर। जी हाँ, हमारे ये जीवन अनमोल है और इस जीवन का हमें पूरी तरह से कद्र करनी चाहिए, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है। और ये जीवन बड़ी मुद्दतों के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद हमें मिलता है, तो इस जीवन का जितना भी जिए जी भर के जिए और हंसते मुस्कुराते जिए। जीवन के दो पहलू होते हैं, सुख और दुख। दुख में घबराना नहीं है और सुख में बहुत ज्यादा इतराना भी नहीं है। जी हाँ, जीवन चेतना का एक प्रवाह और अनुभव करने की क्षमता है। जैविक दृष्टिकोण से यह सांसों का चलना और ऊर्जा का उपयोग है, लेकिन दार्शनिक रूप से यह प्रेम, संघर्ष, सीखने और उद्देश्य की तलाश की एक निरंतर यात्रा है। जीवन को अगर

परिभाषित किया जाए तो इसकी उपलब्धियों को हम कई अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं, मगर हम आपसे बातें भी करते रहेंगे और जीवन पर आधारित गीतों को सुनवाते भी रहेंगे। आइए एक गीत सुनते हैं, उसके बाद बातों के इस सिलसिले को जारी रखेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए FM 102.1 MHz पर आकाशवाणी हजारीबाग के साथ और न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से।

दोस्तों, हमारे ये जो जीवन है वो चलने का ही काफी एक नाम है। जीवन चलने का नाम, ये गीत भी है। और इस हमारे ये जीवन जब हम चलना शुरू करते हैं तो यह एक यात्रा के जैसा है, और यात्रा में सुख दुख का अनुभव तो होता ही है। आइए एक और गीत सुनते हैं।

कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुन रहे हैं अपने दोस्त अशोक के साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जीवन के बारे में। जीवन मात्र जन्म लेने और सांस लेने का नाम नहीं, यह भावनाओं, चेतना और अनुभवों को समझने का भी एक उपाय है। आचार्य प्रशांत के अनुसार जैविक क्रियाएं तो एक यंत्र और रोबोट भी कर सकता है, परंतु जीवन का असली अर्थ आत्म जागरूकता और उसकी असली समझ में है।

0: लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्कस की तारीख में आज की रात एक यादगार रात होगी, क्योंकि बरसों के बाद आज फिर आपके सामने आ रहा है आपका प्यारा हंसता गाता जोकर राजू। मैं नहीं जानता पिछले 20 वर्षों में वो कहां था, उसने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, ये तो बेचारा राजू जानता है या उसका दिल जानता है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं वो जहां भी था, जिस हाल में भी था, सुखी था, दुखी था, खुशहाल था, मुफलिस था, बीमार था, वो लोगों में खुशी बांट रहा था। और ये वो दौलत है जो जितनी लुटाई जाए उतनी ही बढ़ती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, राजू का कहना है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी तमाशा है, लेकिन मैं कहता हूं कि राजू का तमाशा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तमाशा नहीं, ये जिंदगी है।
1: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह उछल कूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
0: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

तो दोस्तों, अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि जीवन एक कोरा कैनवस है। जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य, जीवन शैली, वह सफल और सार्थक जीवन का राज दरअसल क्या है, जिसे आप और हम अपने संकल्पों, संघर्षों और खुशियों के रंग से भरते हैं, इसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं है, बल्कि यह हर पल अनुभव करने और सीखने की एक अनमोल प्रक्रिया है। तो अंत में हम यही कहेंगे कि जीवन हमारा, जैसा कि हमने आरंभ में ही कहा कि जीवन हमारा अनमोल है, सुख और दुख दोनों पहलू इसके हैं, और जीवन चलते रहने का नाम है। चलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुख दुख का सामना डट कर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। कार्यक्रम से अनुमति चाहेंगे, इजाजत दीजिए अशोक को, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम रचनी गंथा, आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, 10:30 हो चुके हैं, थोड़ी ही देर में एक कार्यक्रम होगा आज के फनकार।

कार्यक्रम आज के फनकार सुन रहे तमाम संगीत प्रेमी श्रोताओं को अशोक का नमस्कार। श्रोताओं, आज का फनकार कार्यक्रम समर्पित है उस दिग्गज फनकार के नाम जिसने भारतीय सिनेमा में 1940 से 80 के दशक के बीच अमिट छाप छोड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग के गायक और सुप्रसिद्ध संगीतकार हेमंत दा यानी हेमंत कुमार के बारे में। आज उनका जन्मदिन है, 16 जून 2020 को उनका जन्म हुआ था। भारतीय सिनेमा के एक दिग्गज गायक, संगीतकार और फिल्म निर्माता थे। अपनी मखमली, शांत और रूहानी आवाज के लिए उन्होंने भारतीय सिनेमा में अपनी अमिट छाप छोड़ी। हिंदी और बंगाली संगीत में भी, हिंदी के अलावा बंगाली संगीत में भी अमिट छाप छोड़ी। आज दादा को याद करेंगे उनके खूबसूरत गीतों के साथ। आइए शुरू करते हैं उस गीत के साथ जिसका संगीत भी उन्होंने तैयार किया था, और ये हमारे भारत देश के लिए गर्व की बात है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम के बारे में।

दोस्तों, हेमंत कुमार का मूल नाम हेमंत कुमार मुखोपाध्याय था। बाद में उनका परिवार कोलकाता, जो कि उसमें कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, आ गया, जहां उनकी परवरिश हुई। उन्होंने जादवपुर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन संगीत के प्रति उनके गहरे लगाव के कारण उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और महज 13 साल की उम्र से रेडियो पर उन्होंने शुरुआत किया। 1933 में ऑल इंडिया रेडियो के लिए अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था। 1940 के दशक में वे बंगाल में रविंद्र संगीत के सबसे बेहतरीन गायकों में से एक बन गए और हिंदी सिनेमा में उन्होंने नागिन, जागृति, 20 साल बाद जैसी फिल्मों में शानदार संगीत देकर और अपनी जादुई आवाज से कई सदाबहार गीत गाए। अगर ये कहा जाए कि इनकी आवाज में ईश्वरीय और दैविक शक्ति थी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

हेमंत दा जो थे, दादा फिल्मकार भी थे, फिल्में बनाते भी थे, प्रोडक्शन हाउस भी था इनका। प्रोडक्शन हाउस से इन्होंने शुरू किया, जिसके बैनर तले उन्होंने 20 साल बाद 1962 में कोहरा, 1964 में अरखामोशी, 1969 में जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई। और उनके गाए और संगीतबद्ध किए गीत जैसे तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है, कहीं दीप जले कहीं दिल, आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। हेमंत कुमार को उनके जीवन के लिए कई फिल्म फेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। हालांकि अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण उन्होंने भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले नागरिक सम्मान पद्मश्री और पद्म भूषण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 26 सितंबर 1989 को ढाका यानी बांग्लादेश में एक सम्मान समारोह में शामिल होने के बाद कोलकाता लौटने पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे इस दुनिया से रुखसत हो गए। भारतीय संगीत उद्योग में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी आवाज की तुलना अक्सर बहती हुई गंगा से की जाती है और इसी के याद में हमने वो गीत गंगा है कहाँ से हमने आपको सुनाया था। चलिए कुछ और गीतों के साथ इस महान फिल्मकार को याद करते हैं।

दोस्तों, हेमंत दादा के गीतों को जब हम सुनते हैं तो ये दिल की गहराइयों में उतर जाता है। ऐसा लगता है जैसे दादा के गीतों को सुनते रहें तो वक्त कम पड़ जाएगा। कुछ और गीतों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं फिलहाल आज के इस कार्यक्रम से। मुझे यानी अपने दोस्त अशोक को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम आज के फनकार। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ज पर। रात्रि के 11 बजने को है हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधा कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30%